मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। श्रोताओं, आज बुधवार का दिन शक संवत 1948 के वैसाख मास की 23वीं तिथि तदनुसार 13 मई 2026 सुबह के 5:56 हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिल वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवीके सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान के दौरे पर रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। कल राज्य में सबसे गर्म स्थान बाड़मेर रहा, जहां अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स की टीम 15वें ओवर में 86 रन पर ही सिमट गई। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम के प्रारंभ में भूदेवी भगवती भारती का वंदन। समूह स्वर में सुनते हैं धर्मपाल अकीरन का लिखा देशगान।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम में आप सुनते हैं लता मंगेशकर और पंडित भीमसेन जोशी की आवाज़ों में ये राम भजन।

पंडित भीमसेन जोशी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आपने सुना ये राम भजन। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम में आप सुनते हैं अनिरुद्ध नीरव का लिखा भक्ति गीत, मंजुला दास गुप्ता और कंचन चटर्जी की आवाज़ों में।

अजीत कड़खड़े की आवाज़ में गुरु वंदना के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना समाप्त हुआ। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विचार बिंदु। राजीव दुबे के वाचन स्वर में सुनते हैं जिज्ञासा विषय का लेख। मनुष्य को यदि अन्य जीवों से अलग और श्रेष्ठ बनाती है तो वह है उसकी जिज्ञासा। यही जिज्ञासा उसे सोचने, समझने, खोज करने और नई नई उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए सदैव प्रेरित करती रही हैं। बचपन में जब कोई बालक बार बार पूछता है, ये क्या है, ऐसा क्यों होता है, आसमान नीला क्यों दिखता है, तभी उसके भीतर ज्ञान का पहला दीपक जलता है। वास्तव में जिज्ञासा केवल प्रश्न पूछने की आदत नहीं बल्कि सत्य को जानने और समझने की तीव्र इच्छा है। यही इच्छा मनुष्य को अंधकार से प्रकाश

की ओर ले जाती है। जिज्ञासा मानव जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। यदि मनुष्य के भीतर कुछ नया जानने की चाह न होती तो न तो विज्ञान का विकास होता, न कला और साहित्य का विस्तार, और न ही सभ्यता इतनी आगे बढ़ पाती। आदिकाल का मनुष्य जब आग, पहिया और खेती की खोज कर रहा था, तब उसके पीछे जिज्ञासा ही कार्य कर रही थी। उसने प्रकृति को देखा, घटनाओं को समझने का प्रयास किया और धीरे धीरे जीवन को बेहतर बनाया। आज अंतरिक्ष में पहुंचने से लेकर समुद्र की गहराइयों तक अनुसंधान करने का आधार भी मानव की यही जिज्ञासा है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के अनेक महान आविष्कार जिज्ञासा ही की देन है। वैज्ञानिक एडिसन हजारों बार असफल हुए, पर उनकी जिज्ञासा और खोज की इच्छा ने उन्हें बल्ब का आविष्कार करने में सफल बनाया। आर्यभट्ट, गैलीलियो, आइंस्टाइन और सीवी रमन जैसे महान वैज्ञानिकों की उपलब्धियों के पीछे भी गहरी जिज्ञासा ही थी। यदि वे सामान्य घटनाओं को देखकर प्रश्न न करते तो संसार अनेक खोजों से वंचित रह जाता। जिज्ञासा केवल विज्ञान तक सीमित नहीं है, साहित्य, संगीत, कला और

घटनाओं को समझने का प्रयास किया और धीरे धीरे जीवन को बेहतर बनाया। आज अंतरिक्ष में पहुंचने से लेकर समुद्र की गहराइयों तक अनुसंधान करने का आधार भी मानव की यही जिज्ञासा है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के अनेक महान आविष्कार जिज्ञासा ही की देन है। वैज्ञानिक एडिसन हजारों बार असफल हुए, पर उनकी जिज्ञासा और खोज की इच्छा ने उन्हें बल्ब का आविष्कार करने में सफल बनाया। आर्यभट्ट, गैलीलियो, आइंस्टाइन और सीवी रमन जैसे महान वैज्ञानिकों की उपलब्धियों के पीछे भी गहरी जिज्ञासा ही थी। यदि वे सामान्य घटनाओं को देखकर प्रश्न न करते तो संसार अनेक खोजों से वंचित रह जाता। जिज्ञासा केवल विज्ञान तक सीमित नहीं है, साहित्य, संगीत, कला और दर्शन के क्षेत्र में भी इसका अत्यंत महत्व है। एक कवि प्रकृति को देखकर उसके सौंदर्य का रहस्य जानना चाहता है, एक चित्रकार रंगों के माध्यम से भावनाओं को व्यक्त करने की जिज्ञासा रखता है और एक दार्शनिक जीवन के सत्य को समझने का प्रयास करता है। इसी कारण जिज्ञासा को सृजन की जननी भी कहा जाता है। विद्यार्थी जीवन में जिज्ञासा का विशेष महत्व होता है। जो विद्यार्थी केवल परीक्षा पास करने के लिए पढ़ता है उसका ज्ञान सीमित रह जाता है। जिज्ञासु छात्र अपने शिक्षकों से प्रश्न पूछते हैं, पुस्तकालय में नई पुस्तकें पढ़ते हैं और हर विषय को गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। यही आदत उन्हें आगे चलकर सफल और आत्मविश्वासी बनाती है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य भी केवल जानकारी देना नहीं बल्कि जिज्ञासा को जागृत करना है। आज के वैज्ञानिक और तकनीकी युग में जिज्ञासा का महत्व तो और बढ़ गया है। इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसी उपलब्धियाँ मनुष्य की असीम जिज्ञासा का परिणाम हैं। चंद्रयान और मंगलयान जैसी परियोजनाएं इस बात का प्रमाण हैं कि जब मनुष्य के मन में कुछ नया जानने की तीव्र इच्छा होती है तो वह असंभव को भी संभव बना देता है। भविष्य की नई खोजें भी उन्हीं लोगों द्वारा की जाएंगी जिनके भीतर प्रश्न करने और सत्य जानने का साहस होगा। हालांकि जिज्ञासा का सही दिशा में होना भी आवश्यक है। यदि जिज्ञासा केवल दूसरों के निजी जीवन में हस्तक्षेप करने या गलत कार्यों की ओर बढ़ जाए तो वह हानिकारक बन सकती है। इसीलिए जिज्ञासा का उद्देश्य ज्ञान, विकास और मानव कल्याण होना चाहिए। संतुलित और सकारात्मक जिज्ञासा व्यक्ति को महान बनाती है जबकि अनुचित जिज्ञासा उसे भटका सकती है। जिज्ञासा मनुष्य को विनम्र भी बनाती है। जब व्यक्ति नई नई बातों को जानता है तब उसे एहसास होता है कि संसार कितना विशाल है और उसका ज्ञान कितना सीमित। यही भावना उसे निरंतर सीखने के लिए प्रेरित करती है। महान विद्वान भी स्वयं को जीवन भर विद्यार्थी मानते हैं। अंततः कहा जा सकता है कि जिज्ञासा ही ज्ञान, प्रगति और सफलता की मूल शक्ति है। यह मनुष्य को आगे बढ़ने, नई राहें खोजने और अपने जीवन को सार्थक बनाने की प्रेरणा देती है। जिज्ञासा के बिना जीवन नीरस और स्थिर हो जाता है, जबकि जिज्ञासा से भरा मन हर दिन कुछ नया सीखने और समझने की कोशिश करता रहता है। राजीव दुबे के वाचन स्वर में आपने सुना जिज्ञासा विषय का लेख। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 6:35 हो रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस का गायन ए हरिहरन की आवाज़ में। संगीत संयोजन सतीश भाटिया का।

तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, साधु संतों में निष्ठा और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे प्रति ममता जगी है। अतः तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो। राजा प्रताप भानु ने मुनि को प्रसन्न जानकर अपनी ओर से ये दुर्लभ वर मांगा कि उसके शरीर को वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख नहीं व्यापे, उसे युद्ध में कोई नहीं जीत सके और वो इस पृथ्वी पर 100 कल्प तक निष्कंटक राज्य करता रहे। तपस्वी ने कहा, ऐसा ही होगा। केवल ब्राह्मण कुल छोड़कर काम भी तुम्हारे सामने झुकेगा।

0: उसका
1: अपना नाम एक तनु बताने वाले कपटी मुनि ने राजा प्रताप भानु का विश्वास जीतने के लिए उसे तप की महिमा बताई, जिसके प्रताप से ब्रह्मा जगत की सृष्टि करते हैं और विष्णु उसका पालन करते हैं। कर्म धर्म की कथाएं कहकर वो वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। ये सुनकर जब राजा प्रताप भानु पूर्ण रूप से उसके प्रभाव में आ गया और उसे अपना नाम बताने को हुआ, तो कपटी मुनि एक तनु ने कहा, हे राजन, मैं तुमको जानता हूँ। अभी तक अपने विषय में तुम्हारा कुछ न बताना मुझे अच्छा लगा। ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं बताते। तुम महाराज सत्यकेतु के पुत्र प्रताप भानु हो,

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस का गायन। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कृषि विषयक सामयिक सुझाव का कार्यक्रम खेती की बात।
1: किसान भाइयों और बहनों, आज की खेती की एक बहुत बड़ी समस्या है कीट और रोग, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या है हमारे समाधान का तरीका। आज हम कीट का जवाब रासायनिक दवा से लेने लगे हैं, पर क्या आपने कभी गौर किया है, हर साल दवा की मात्रा बढ़ रही है, लागत लगातार बढ़ रही है और फिर भी कीट खत्म नहीं हो रहे। इसका मतलब साफ है, हम समस्या को नहीं सिर्फ लक्षण को दबा रहे हैं। अब समय है खेती को प्राकृतिक संतुलन की ओर ले जाने का। इसलिए कीट दुश्मन नहीं है, ये समझना जरूरी है। सबसे पहले हमें एक सोच बदलनी होगी। हर कीट नुकसानदेह नहीं होता, कुछ कीट फायदेमंद भी होते हैं जो दूसरे कीटों को खाते हैं। अगर हम हर कीट को खत्म कर देंगे तो प्राकृतिक संतुलन टूट जाएगा और समस्या बढ़ती जाएगी। इसलिए लक्ष्य होना चाहिए कीट नियंत्रण, ना कि पूर्ण नाश। प्रमुख जैविक उपाय कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि नीम आधारित समाधान, जिसे प्राकृतिक रक्षा कवच कह सकते हैं। नीम को यूं ही प्राकृतिक कीटनाशक नहीं कहा जाता, यह कीटों के अंडे देने की क्षमता को कम करता है, खाने की प्रक्रिया को बाधित करता है और उनके जीवन चक्र को तोड़ देता है। इसके उपयोग का तरीका बड़ा आसान है। 5 मिलीलीटर नीम तेल, उसमें 1 लीटर

0: पानी मिलाइए, हल्का साबुन मिलाकर छिड़काव करें। हर 7 से 10 दिन में एक छिड़काव बहुत प्रभावकारी होता है। दूसरा उपाय है लहसुन मिर्च अदरक घोल, ये तीखा सुरक्षा तंत्र कहलाएगा। यह घोल कीटों के लिए बहुत तीव्र होता है लेकिन फसल के लिए सुरक्षित रहता है। इसकी तैयारी की जा सकती है, लहसुन हरी मिर्च और अदरक को एक साथ मिलाकर पीसें, पानी में मिलाकर 24 घंटे रखें, छान कर छिड़काव करें। यह रस चूसने वाले कीटों पर असर करता है। तीसरा उपाय है छाछ यानी मठा और गौमूत्र। छाछ फफूंद रोगों को रोकता है, गौमूत्र पौधों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, इसलिए 1 लीटर छाछ में 10 लीटर पानी मिलाइए या 1 लीटर गौमूत्र में 10 लीटर पानी मिलाइए। नियमित छिड़काव से पौधे मजबूत होते हैं और रोग कम लगते हैं। जैविक घोल जीवामृत या दशपर्णी अर्क से भी हम समाधान कर सकते हैं। ये सिर्फ कीटनाशक नहीं बल्कि मिट्टी और पौधे दोनों को मजबूत करने वाले घोल हैं। दशपर्णी अर्क बनाने के लिए 10 पत्तियों से बना हुआ अर्क बनाया जाता है। जीवामृत गौमूत्र गोबर गुड़ बेसन से तैयार किया जाता है। ये पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं जिससे कीटों का असर अपने आप कम हो जाता है। पांचवी तकनीक है ट्रैप तकनीक यानी कीटों को फंसाने से। इसमें जो तकनीक उपयोग में लाई जाती है, पहला है पीले स्टिकी ट्रैप, सफ़ेद मक्खी माहू को पकड़ते हैं। दूसरा उपाय है फेरोमोन ट्रैप, नर कीटों को आकर्षित कर प्रजनन रोकते हैं। इससे कीटों की संख्या शुरुआती स्तर पर ही नियंत्रित हो जाती है। छठवां उपाय है मिश्रित खेती और सह फसल। एक ही फसल एक ही तरह का कीट का हमला, ये समझने वाली बात है। लेकिन अगर हम मक्का और दाल या कपास और मूंग जैसी मिश्रित खेती करते हैं तो कीट भ्रमित होते हैं और फैलाव कम होता है। इसके अलावा एक और उपाय है लाभदायक कीटों का संरक्षण। लेडी बर्ड बीटल ट्राइकोग्रामा ये कीट हानिकारक कीटों को खाते हैं, रासायनिक दवा इनको भी मार देती है, इसलिए जैविक खेती में इनका संरक्षण बहुत जरूरी है। किसान भाइयों और बहनों, हर 2 से 3 दिन में खेत का निरीक्षण करें। अगर कीट शुरू में ही दिख जाए तो हल्के उपाय से नियंत्रण हो जाता है, देर होने पर ही महंगी दवाओं की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा नाइट्रोजन देने से कीट ज़्यादा आकर्षित होते हैं, ज़्यादा पानी से भी रोग बढ़ते हैं, इसलिए संतुलन बहुत ज़रूरी है।
1: जैविक कीट नियंत्रण पर आपने सुनी सामयिक जानकारी। आप सुन रहे थे कृषि विषयक सामयिक सुझाव का कार्यक्रम खेती की बात। मीडियम वेव और FM बैंड पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 6:50 हुए हैं। साथियों, आइए जान लेते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

आज सुबह 9 बजे आप सुनेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित कार्यक्रम गांधी चर्चा, जो हम आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित करेंगे। वीर वंदन, शहीदों की गाथा और देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर।

NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे मध्यान्ह के ठीक 12 बजे। सरगुजा संभाग में हाथियों की अद्यतन स्थिति बताता प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ आप सुन पाएंगे शाम 5 बजे।

सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश। सोशल मीडिया आधारित श्रोताओं की पसंद का फरमाइशी कार्यक्रम आप सुन पाएंगे रात्रि के 8 बजे। शाम 7:21 पर आप सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल। कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे कृषि उपयोगी सामयिक चर्चा, आउटडोर ब्रॉडकास्ट आधारित सफलता की कहानी, कुछ चुनिंदा लोकगीत, पोषक अनाजों से समृद्धि विषयक चर्चा। साथ ही साथ कार्यक्रम में आप जानेंगे मंडी भाव, मौसम की जानकारी और मौसम आधारित कृषि परामर्श।

आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित कार्यक्रम चर्चा का विषय है। आप सुन पाएंगे रात्रि में 9:30 पर। ईमेल आधारित कार्यक्रम ईमेल की गूंज का प्रसारण समय है दिन में 1:40 और रात्रि में 10:00। कार्यक्रम मन भवन हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 10:30 पर।

श्रोताओं की पसंद का फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुनेंगे दिन में 11:05 पर। चित्रपट संगीत का प्रसारण समय है 7:05 और 9:15। दोपहर 12:30 पर आप सुन सकेंगे शीर्षक गीतों का कार्यक्रम चयन।

दिन में 1:10 पर आप सुनेंगे ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर गुसाई। कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे समसामयिक चर्चा, कुछ चुनिंदा लोकगीत और गोएठ बात कार्यक्रम। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा।

0: युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युवावाणी आप सुन पाएंगे शाम 5:30 पर। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे युवा सोच, कहानी पाठ और फिल्म संगीत। श्रोता साथियों, ये थी जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। मीडियम वेव और FM पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। अगले कुछ ही पलों में संस्कृत समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन अस्य वर्षस्य राष्ट्रिय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG इत्यस्याः आयोजने प्रश्नपत्रम् अनधिकृतरीत्या बहिरागमन विषयमालक्ष्य प्रकरणं पञ्जीकृतम्। शिक्षा मंत्रालयस्य उच्च शिक्षा विभागात् प्राप्तस्य लिखित परिवादस्य आधारे संस्थया एतत् प्रकरणं पञ्जीकृतम्। संस्थया संसूचितं यत् विशेषाणां केन्द्रीयावेषणाभिकरणदलानां निर्माणं जातं तथा प्रकरणम् अन्वेषणार्थं विभिन्नेषु स्थानेषु एतानि दलानि प्रेषितानि सन्ति। एषा नीट परीक्षा अस्य मासस्य तृतीयदिनाङ्के राष्ट्रियपरीक्षणसंस्थया आयोजिता आसीत्। नवदिल्ल्यां नीट परीक्षायाः निरस्तीकरणविषये वार्ताहरसम्मेलनं सम्बोधयन् राष्ट्रियपरीक्षणसंस्थायाः महानिदेशकः अभिषेक सिंहः अवदत् यत् राष्ट्रियपरीक्षणसंस्था छात्रेभ्यः पुनः परीक्षाम् आयोजयिष्यति, सा च

योगेंद्र सिंह अलबेला और साथियों की आवाज़ों में आपने सुना भोजपुरी लोकगीत। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल। कार्यक्रम में आप सुनते हैं गुलाब सिंह पैकरा और साथियों के स्वर में छत्तीसगढ़ी ददरिया गीत।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कार्यक्रम गूंजे जंगल के आखिर में प्रस्तुत है सरगुजिया की सुन खेल कर्म गीत, गायक कलाकार रामबचन सोनवानी और साथियों के स्वर में।

0: धीरे धीरे। चुबे चुबे चुबे
1: गायक कलाकार रामवचन सोनवानी और साथियों के संयुक्त स्वर में सरगुजिया किसुन खेल कर्मा गीत के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल समाप्त हुआ। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 7:15 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत।

उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की आवाज़ों में आपने सुना अमिक हनफी का लिखा कलाम। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कार्यक्रम सुगम संगीत में आप सुनते हैं रविंद्र की लिखी गजल, भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाजों में।

0: भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाज़ों में आपने सुना रविंद्र का लिखा कलाम। कार्यक्रम सुगम संगीत अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है जनसंपर्क से प्राप्त समाचारों और पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।
0: कार्यक्रम के आज के अंक में मैं हूं राजीव। स्वीकार करें स्नेह अभिवादन, सादर नमस्कार। जंगली हाथियों की गतिविधियों और उनके संभावित विचरण क्षेत्रों की सटीक जानकारी देने वाला विशेष कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट प्रतिदिन शाम 5 बजे आपके अपने 4 आकाशवाणी केंद्रों अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ से प्रसारित हो रहा है। ये कार्यक्रम FM रेडियो चैनलों पर भी उपलब्ध है, जिसे आप आसानी से रेडियो सेट, मोबाइल फ़ोन या गाड़ियों में चलते फिरते भी सुन सकते हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी इसकी पहुँच है, ताकि हर जानकारी हो आपके हाथ में। इस कार्यक्रम से मिली जानकारी के कारण हाथी प्रभावित क्षेत्रों के लोग सुरक्षित रास्ते अपनाकर अपने घर सुरक्षित लौट रहे हैं।

अब जंगल या गांव के किसी भी हिस्से में निकलने से पहले हाथियों की सही स्थिति जानने का सबसे भरोसेमंद माध्यम है हमर हाथी हमर गोठ। सुनते रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। हमर हाथी हमर गोठ, जहां हर सूचना है आपकी सुरक्षा के लिए। समाचारों के क्रम में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले सुनते हैं फिल्म स्टोरी 420 का गीत, आशा भोसले और मन्ना डे की आवाज़ों में। गीत शैलेंद्र का, संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन का।

0: मन्ना डे और साथियों के स्वर में आपने सुना फिल्म श्री 420 का गीत। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा।
1: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
2: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
1: अच्छा, वो कैसे?
2: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
1: ओ, समझ गई। यानी 230, 600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
2: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230, 600।
1: अरे वाह, 07774 230 600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
2: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
0: समाचार मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर से। बौरीडांड अंबिकापुर रेल दोहरीकरण परियोजना के लिए मुआवजा वितरण प्रक्रिया शुरू। 111 भूमि स्वामियों को मिलेगा लाभ। जिले में बहुप्रतीक्षित बौरीडांड अंबिकापुर सरगुजा रेल दोहरीकरण परियोजना को लेकर भू अर्जन एवं मुआवजा वितरण की प्रक्रिया तेज हो गई है। इस महत्वपूर्ण परियोजना के अंतर्गत प्रभावित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रगति पर है और अब पात्र भूमि स्वामियों को मुआवजा राशि वितरण की दिशा में प्रशासन सक्रिय हो गया है। परियोजना से कुल 9 ग्राम उजियारपुर, बरबसपुर, दर्री टोला, सरोला, सेमरा, लाई, उदलकछार, शंकरगढ़ एवं बेलभरा प्रभावित हैं। रेल दोहरीकरण कार्य के लिए कुल 6.980 हेक्टेयर भूमि अर्जित की गई है, जिसमें 111 निजी भूमि स्वामियों की 5.225 हेक्टेयर निजी भूमि तथा 28 प्रकरणों में 1.755 हेक्टेयर शासकीय भूमि शामिल है। समाचारों के क्रम में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले सुनते हैं फिल्म बैजू बावरा का गीत। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में शकील बदायूनी का लिखा नगमा, नौशाद का संगीत निर्देशन।

ये आकाशवाणी अंबिकापुर है, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा। समाचार जनसंपर्क अंबिकापुर से। कलेक्टर के मार्गदर्शन में मंगलवार को जिला पंचायत के सभाकक्ष में जिला प्रशासन एवं स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त प्रयास से नीट और जेई कोचिंग हेतु सरगुजा जिले के शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं हेतु काउंसिलिंग का आयोजन किया गया है। इस दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं काउंसिलिंग समिति के अध्यक्ष ने छात्रों को उत्साहवर्धन किया। उन्होंने अपने छात्र जीवन से जुड़ी ही बातें मुख्य रूप से अनुशासन, मोबाइल का न्यूनतम प्रयोग एवं छात्र छात्राओं की शंकाओं का समाधान करते हुए अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होने कहा। जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित कोचिंग संस्थान एलएन रायपुर के शिक्षकों द्वारा कोचिंग एवं अध्ययन प्रक्रिया के संदर्भ में विस्तार से अवगत कराया गया। समाचार और भी हैं, उससे पहले सुनते हैं सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में फिल्म बेटी बेटे का गीत। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन का।

बेटी बेटे फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा। अब समाचार जनसंपर्क अंबिकापुर से। 13 मई को विकासखंड लखनपुर के पूड़ी में 18 ग्राम पंचायतों एवं नगर पालिक निगम अंबिकापुर में 9 वार्डों हेतु जन समस्या निवारण शिविर का होगा आयोजन। सुशासन तिहार 2026 अंतर्गत 13 मई को जिले के ग्रामीण क्षेत्र एवं में से एक एवं नगरीय क्षेत्र में एक जन समस्या निवारण शिविर आयोजित होंगे। विकासखंड लखनपुर में शिविर स्थल पूड़ी हाईस्कूल मैदान में शिविर लगेगा, जिसमें 18 ग्राम पंचायतों

ओड़ी करई लिपिंगी लोसंगा केनापारा कुन्नी चुड़ैया तुंगा रेमहला सकरिया लब्जी तिरकेला अरगोती विनिया डांडकेसरा डोडाकेसरा पटकुरा मांझा के ग्रामीण अपने मांगों एवं शिकायतों संबंधी आवेदन देंगे। शिविर प्रभारी अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उदयपुर एवं सहायक प्रभारी अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लखनपुर होंगे। कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा का अगला गीत फिल्म लीडर से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, गीत शकील बदायूनी का, संगीत नौशाद अली का।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा। समाचार मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर से। जन दर्शन में उमड़ी भीड़, कलेक्टर ने सुनी 14 गंभीर शिकायतें, त्वरित निराकरण के दिए निर्देश। कलेक्टर के मार्गदर्शन में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जन दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के दूर दराज क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याओं को संवेदनशीलता से सुना गया। कलेक्टर ने मौके पर ही संबंधित विभागीय अधिकारियों को इन आवेदनों के त्वरित और समयबद्ध निराकरण के सख्त निर्देश दिए। कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा का आखिरी गीत फिल्म पड़ोसन से, लता मंगेशकर की आवाज में। गीत राजेंद्र कृष्ण का, संगीत निर्देशन राहुल देव बर्मन का।

0: पड़ोसन फिल्म के गीत के साथ कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा समाप्त हुआ। स्वीकार करें राजीव का नमस्कार।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।
0: मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अगले कुछ ही पलों में समाचार प्रभात हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है।
1: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK से अलग हुए गुट का समर्थन प्राप्त है। इस बीच तमिलनाडु में AIADMK सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडपाड़ी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ नेता एग्री कृष्णमूर्ति ने चेतावनी दी है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने SP वेलुमणि को AIADMK विधायक दल का नेता चुना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
0: वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने

0: राज्य सरकार में आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव एन मुरुगंदम और वित्त सचिव टी उदय चंद्रन शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्योतिषी रिकी राधान पंडित को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने पर गठबंधन सहयोगी ने कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल और ज्योतिमणि ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए, जबकि सीपीआईएम के राज्य सचिव पी शुनगुमुगम ने कहा है कि कदम सरकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एन रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। क्षेत्रवर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह पांचवा कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीपी रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा कल पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। नीट यूजी के एक उम्मीदवार के अभिभावक ने लातूर एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक निजी कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें कथित तौर पर 42 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेनदेन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसिलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री

0: मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री के काफिले में अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वार्षिक और चौथी तिमाही के अनुमानों की प्रकाशन तिथि को संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। युगांडा के राष्ट्रपति यूवेरी मुसवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने 7वें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसवेनी पिछले 40 साल से राष्ट्रपति पद पर हैं। श्री मुसवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के बीच पद की शपथ ली। श्री मुसवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किए। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। इस बीच राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के साथ रातें भी तप रही हैं और कई स्थानों पर रात का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: महाराष्ट्र के सांगली जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सेना के कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार सेना को मिली सूचनाओं के बाद शाम करीब 4 बजे नियंत्रण रेखा के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इस पर सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में फोगाट ने कोरिया के सेंगुमिन ली को पराजित किया। वहीं 8 भारतीय लड़कियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी

0: जीतते हुए फाइनल में जगह बनाई और चार ने कांस्य पदक जीते। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। नीट यूजी 2026 की परीक्षा निरस्त करने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है सीबीआई को पेपर लीक की जांच, एक गिरफ्तार, 20 संदिग्ध हिरासत में। दैनिक भास्कर की खबर है 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़, परीक्षा दोबारा होगी, नई तारीखों की घोषणा जल्द। कल से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की समिट, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है पीएम से भी संयुक्त मुलाकात, खाड़ी संकट के बीच दिल्ली पर दुनिया की निगाहें। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के 30 विधायकों का टीवीके को समर्थन का ऐलान, विजय आज बहुमत साबित करेंगे, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। अमर उजाला ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है नया भारत और बदलती सियासी समझ, संपादक का कहना है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि देश का मिजाज अब राजनीति में किसी तरह की संकीर्णता को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोलकाता से लेकर चेन्नई और तिरुवनंतपुरम तक नए की उम्मीद और पुराने के प्रति गुस्से के चलते मौजूदा व्यवस्था बहती दिखी। दैनिक जागरण ने पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के शब्द प्रकाशित किए हैं, पेट्रोल उत्पादों की दिक्कत नहीं लेकिन कंपनियों का घाटा चिंताजनक। शेयर मार्केट में निवेशकों के 9 लाख करोड़ स्वाहा, आखिरी घंटे और बढ़ी गिरावट, सेंसेक्स 1500 पॉइंट टूटने से मचा हाहाकार। लोकसत्य ने कारोबार पन्ने पर यह खबर प्रकाशित की है। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस बनी लोगों की पहली पसंद, 10 दिनों में करीब 45,000 यात्रियों ने किया सफर, देश बंधु की खबर है। नवभारत टाइम्स ने जनगणना 2027 पर खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है अब क्यूआर कोड से जनगणना कर्मियों की होगी पहचान, फर्जी मैसेजेस को लेकर किया फैसला, मेहनत के बिना जवाब, चैटबॉट खत्म कर रहा रचनात्मकता। राजस्थान पत्रिका ने डिजिटल एडिक्शन शीर्षक से खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। मौसम विभाग का अनुमान, समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Political activities in Tamil Nadu turn hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test today. All India NR Congress leader N. Rangasamy to take oath as Chief Minister of Puducherry today. Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Delhi governments implement measures for fuel consumption following Prime Minister Narendra Modi's austerity appeal. Center increases import duty on gold and other precious metals. IMD predicts early arrival of monsoon this year. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Sunrisers Hyderabad by 82 runs in Ahmedabad. And now the news in detail. In Tamil Nadu, political activities have turned hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test in the assembly today. In a dramatic turn of events, the AIADMK has split into two groups over extending support to the TVK government. Lone AMMK MLA S. Kamaraj has decided to support the TVK government. We have more from our correspondent.
3: The TVK with allies like the Congress, VCK, CPI, CPI-M and IUML had enjoyed a majority of 120 to form the government in Tamil Nadu. After the government was sworn in, now it has the support of 30 AIADMK MLAs from the breakaway faction and one AMMK MLA, having a total of 151 MLAs. TVK will now have to prove the strength of the government today. The AIADMK led by General Secretary E. Palaniswamy has already said that those who do not adhere to the rules of the whip will be expelled from the party. The party founded by MGR will be facing a major political crisis presently. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
2: Meanwhile, Tamil Nadu Chief Minister Joseph Vijay has reshuffled IAS officers

नमस्कार, वीर बंधन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, 13 अप्रैल 1919, अमृतसर का जलियांवाला बाग, बैसाखी का पावन दिन। लेकिन कुछ ही पलों में वो धरती चीखों से कांप उठी। निहत्ते भारतीयों पर गोलियों की बरसात हुई और सैकड़ों निर्दोष लोग शहीद हो गए। उस रक्त रंजित मिट्टी पर एक युवा खड़ा था जिसकी आंखों में आंसू नहीं, प्रतिशोध की ज्वाला थी। और वही युवा आगे चलकर बना अमर क्रांतिकारी शहीद उद्धम सिंह। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले सुनते हैं लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में फिल्म आनंद मठ का लिखा आनंद मठ का देशभक्ति गीत, हेमंत कुमार का संगीत निर्देशन। आइए सुनते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का लिखा देशगीत।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वीर वंदन। साथियों, जलियांवाला बाग के दिन उद्धम सिंह ने उस दिन केवल नरसंहार नहीं देखा, उन्होंने भारत माता की करुण पुकार सुनी थी। उन्होंने संकल्प लिया कि इस अत्याचार का जवाब अवश्य देंगे। वर्षों तक वे देश विदेश में भटकते रहे, कठिनाइयां झेलते रहे, लेकिन उनके हृदय में जलियांवाला बाग के शहीदों की याद कभी धुंधली नहीं हुई। उनका जीवन एक ही लक्ष्य बन गया, अन्याय का प्रतिकार। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले सुनते हैं शंकर महादेवन और साथियों की आवाजों में फिल्म माँ तुझे सलाम का गीत, विक्की नागर की शब्द रचना, साजिद वाजिद का संगीत निर्देशन।

ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वीर वंदन। दोस्तों, 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में इतिहास ने करवट ली। पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रमुख दोषी माना जाता था, सभा में मौजूद था। तभी उद्धम सिंह ने आगे बढ़कर उन पर गोलियां दाग दी। वर्षों पुराना प्रण पूरा हो चुका था। यह केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं था, बल्कि उन लाखों भारतीयों की पीड़ा की आवाज़ थी जिन्हें अंग्रेजी अत्याचार ने कुचलने की कोशिश की थी। कार्यक्रम वीर वंदन का अगला गीत हमने लिया है फिल्म सिकंदर आजम से, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में। गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत निर्देशन हंसराज बहल का।

और प्रेम की बंसी जहां बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग

मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। आप सुन रहे हैं शहीदों की अमर गाथा और देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम वीर वंदन। दोस्तों, गिरफ्तारी के बाद भी उद्धम सिंह के चेहरे पर भय नहीं था। अदालत में उन्होंने निर्भीक होकर स्वीकार किया कि उन्होंने ये कार्य अपने देशवासियों के लिए किया है। उन्होंने दुनिया को बता दिया कि भारतवासी अत्याचार सह सकते हैं लेकिन अपनी आत्मा को मरने नहीं देंगे। उनका साहस उस समय पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना। 31 जुलाई 1940 को लंदन के पेंटनविल जेल में उद्धम सिंह को फांसी दे दी गई, लेकिन फांसी का फंदा उनके विचारों को रोक नहीं सका। वे शहीद होकर अमर हो गए। उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए संदेश बन गया कि देशभक्ति केवल शब्द नहीं बल्कि अपने प्राणों तक का समर्पण है। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म क्रांति से महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में, गीत संतोष आनंद का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

ये आकाशवाणी अंबिकापुर है, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वीर वंदन। साथियों, आज हम जब भी वीरों को नमन करते हैं तो शहीद उद्धम सिंह की गाथा हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता हमें यूं ही नहीं मिली। ये उन वीर सपूतों की अमानत है जिन्होंने अपने सपनों, अपने जीवन, अपनी सांसों तक को भारत माता के चरणों में अर्पित कर दिया। कार्यक्रम का आखिरी गीत फिल्म रंग दे बसंती से, दलेर मेहंदी और चित्रा की आवाज़ों में, गीत प्रसून जोशी का, संगीत निर्देशन AR रहमान का।

0: रंग दे बसंती। फिल्म के इसी गीत के साथ कार्यक्रम वीर वंदन समाप्त हुआ। राजीव का नमस्कार। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 9 बजने वाले हैं। अगले कुछ ही पलों में आप सुनेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित कार्यक्रम गांधी चर्चा, जो हम आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित करेंगे।
1: गांधी चर्चा में महात्मा गांधी के संस्मरण मेरे समकालीन का धारावाहिक पाठ, वाचक स्वर प्रकाश उदय और रमाशंकर के हैं।

0: श्रोताओ, गांधी चर्चा के अंतर्गत पिछले कुछ दिनों से आप सुन रहे हैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर के बारे में गांधी जी के विचार। आज सुनिए इस विचार श्रृंखला का अंतिम भाग।
1: जब गुरुदेव मृत्युशैया पर थे, मैंने उन्हें अपने आखिरी पत्र में लिखा था कि अगर ईश्वर की मर्जी हुई तो मैं दीन बंधु स्मारक की पूरी रकम वसूल कर लूंगा। दीन बंधु को शांति निकेतन की आर्थिक स्थिति की चिंता दिन रात बनी रहती थी। वह चिंता को मेरे पास बतौर धरोहर के छोड़ गए हैं। हिंदुस्तान के और मानवता के इन दो सेवकों की इस पुकार की मैं जरा भी उपेक्षा नहीं कर सकता। जिनके मन में इन दोनों महापुरुषों की स्मृति के लिए आदर है और जो गुरुदेव की सजीव कृति के मूल्य को समझते हैं, उनसे निवेदन है कि वे स्वेच्छा से लिए हुए इस दायित्व को निभाने में मेरी मदद करें। गुरुदेव की देह खाक में मिल चुकी है, लेकिन उनके अंदर जो ज्योत थी, जो उजाला था, जो तब तक बना रहेगा जब तक धरती पर जानदार रहेंगे। गुरुदेव ने जो रोशनी फैलाई वह आत्मा के लिए थी। सूरज की रोशनी जैसे हमारे शरीर को फायदा पहुंचाती है, वैसे गुरुदेव की फैलाई रोशनी ने हमारी आत्मा को ऊपर उठाया है। वे कवि थे और प्रथम श्रेणी के साहित्यिक थे। उन्होंने अपनी मातृभाषा में लिखा और सारा बंगाल उनकी कविता के

झरने से काव्य रस का गहरा पान कर सका। उनकी रचनाओं के अनुवाद बहुत सी भाषाओं में हो चुके हैं। वे अंग्रेजी के भी बहुत बड़े लेखक थे और शायद बिना अंग्रेजी जाने ही वह उस जबान के इतने बड़े लेखक बन गए थे। मदरसे की पढ़ाई तो उन्होंने की थी, लेकिन यूनिवर्सिटी की कोई डिग्री उन्होंने नहीं ली थी। वह तो बस गुरुदेव ही थे। हमारे एक वायसराय ने उनको एशिया का कवि कहा था। उससे पहले किसी को ऐसी पदवी नहीं मिली थी। वे समूची दुनिया के भी कवि थे। यही क्यों, वह तो ऋषि थे। हमारे लिए वह अपनी गीतांजलि छोड़ गए हैं, जिसने उनको सारी दुनिया में मशहूर कर दिया।

तुलसीदास जी हमारे लिए अपनी अमर रामायण छोड़ रहे हैं। वेद व्यास जी ने महाभारत के रूप में हमारे लिए मानव जाति का इतिहास छोड़ा है। वे सब निरे कवि नहीं थे, ये तो गुरु थे। गुरुदेव ने भी सिर्फ कवि के नाते ही नहीं, ऋषि की हैसियत से भी लिखा है।

लेकिन सिर्फ लिखना ही उनकी अकेली खासियत नहीं थी, वह एक कलाकार थे, नृत्यकार थे और गायक थे। बढ़िया से बढ़िया कला में जो मिठास और पवित्रता होनी चाहिए वह सब उनमें और उनकी चीज़ों में थी। नई नई चीज़ें पैदा करने की उनकी ताकत ने हमको शांति निकेतन, श्री निकेतन और विश्व भारती जैसी संस्थाएं दी हैं। अपनी इन संस्थाओं में वह भाव रूप से विराजमान हैं और वे अकेले बंगाल को ही नहीं बल्कि समूचे हिंदुस्तान को उनकी विरासत के रूप में मिली हैं। शांति निकेतन तो हम सब के लिए असल में यात्रा का एक धाम ही बन गया है। गुरुदेव अपने जीते जी इन संस्थाओं को वह रूप नहीं दे पाए जो वह देना चाहते थे, जिसका वह सपना देखते थे। कौन है जो ऐसा कर पाया हो? आदमी के मनोरथ को पूरा करना तो भगवान के हाथ में है। फिर भी ये संस्थाएं हमें उनकी कोशिशों की याद दिलाएंगी और हमेशा हमको यह बताती रहेंगी कि गुरुदेव के मन में अपने देश के लिए कितनी गहरी प्रीति थी और उन्होंने उसकी कितनी कितनी सेवाएं की हैं। उनके रचे कौमी गीत को आप सुन चुके हैं। हमारे देश के जीवन में इस गीत की अपनी एक जगह बन गई है। हजारों लाखों लोग एक साथ इसकी प्रेरणा पहुंचाने वाली कड़ियों को अक्सर गाते रहते हैं। ये सिर्फ गीत ही नहीं है बल्कि भक्ति भाव से भरा भजन भी।

श्रोताओं, ये थी गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में गांधी जी के विचारों की अंतिम कड़ी। गांधी चर्चा के अगले अंक में आप सुनेंगे जलियांवाला बाग नृशंस हत्याकांड के दोषी जनरल डायर के बारे में गांधी जी के विचार।

0: कार्यक्रम गांधी चर्चा में अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी के संस्मरण मेरे समकालीन का धारावाहिक पाठ। वाचक स्वर प्रकाश उदय और रमाशंकर के थे।
1: आप सुन रहे थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित कार्यक्रम गांधी चर्चा, जो हम आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 9:15 हुए हैं। पेश है बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन।

कार्यक्रम गुंजन के आज के अंक में मैं हूं राजीव। स्वीकार करें स्नेह अभिवादन, सादर नमस्कार। साथियों, जब एक देश अपने लोगों को गिनता है तब वह केवल संख्या नहीं लिखता, वह भविष्य की दिशा तय करता है। गांव की पगडंडियों से लेकर महानगरों की रोशनी तक, हर घर, हर भाषा, हर सपना भारत की जनगणना में दर्ज होता है। जरा कल्पना करें, 140 करोड़ से अधिक लोगों वाले देश में यदि सरकार को ये पता ही ना हो कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितनों को रोजगार चाहिए, कितने बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, तो योजनाएं कैसी होंगी। जनगणना एक विशाल राष्ट्रीय डेटा अभियान है। भारत में पहली आधुनिक जनगणना 1872 में शुरू हुई थी, जबकि नियमित जनगणना 1881 से हर 10 वर्ष में की जाती है। जनगणना में केवल लोगों की संख्या गिनी नहीं जाती, बल्कि उम्र, शिक्षा, भाषा, रोजगार, घर, बिजली, पानी, यहाँ तक कि परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति तक दर्ज की जाती है। बातों के क्रम में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले सुनते हैं फिल्म कर्मा का गीत, कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद अजीज और साथियों की आवाज़ों में।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: श्रोता साथियों, जनगणना देश का डेटा दर्पण है जिसमें भारत खुद को देखता है। कभी सोचिए, हिमालय की बर्फीली घाटियों से लेकर राजस्थान के तपते रेगिस्तान तक, अंडमान के द्वीपों से लेकर मुंबई की ऊंची इमारतों तक लाखों गणनाकर्मी घर घर पहुंचते हैं। कोई नाव से जाता है, कोई पहाड़ चढ़कर, कोई जंगलों के बीच से होकर, ताकि देश का एक भी नागरिक छूट न पाए। कार्यक्रम में बातों के क्रम में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले सुनते हैं फिल्म आन मिलो सजना का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी अंबिकापुर है, आप सुन रहे हैं बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन। श्रोता साथियों, स्कूल कहाँ बनेंगे, अस्पताल कहाँ चाहिए, नई सड़कें किस क्षेत्र में बने, कितने युवाओं को रोजगार की आवश्यकता है, इन सभी निर्णयों की नींव जनगणना पर टिकी होती है। जनगणना केवल वर्तमान नहीं बताती। बल्कि आने वाली भारत की योजना तैयार करती है। भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है, ऐसे में सही डेटा ही विकास की सबसे बड़ी शक्ति है। बातें और भी हैं, उससे पहले सुनते हैं फिल्म आंधी का गीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में, गीत गुलजार का, संगीत राहुल देव बर्मन का।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन।
1: खो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
1: खो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्था

0: थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
1: आरबीआई कहता है,
0: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
2: श्रोता साथियों, जब अगली बार कोई गणना कर्मी आपके दरवाजे पर आए तो याद रखिए, वो केवल जानकारी नहीं लिख रहा, वह भारत का भविष्य गढ़ रहा है। जनगणना में दर्ज हर नाम भारत की कहानी का एक अध्याय है। क्या आपने कभी सोचा है, अगर सरकार को सही संख्या ही ना पता हो, क्या एक देश बिना डेटा के कभी आगे बढ़ सकता है? जनगणना केवल गिनती नहीं, ये भारत की पहचान है। ये आंकड़ों का महासागर है जिसमें हर नागरिक की कहानी छिपी है। जनगणना बताती है कि हम कितने हैं, कहाँ हैं और भविष्य में हमें कहाँ पहुँचना है। बातों के क्रम में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले सुनते हैं मोहम्मद अजीज की आवाज़ में फिल्म अमृत का गीत।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन।
1: फैल सकेगा आपका काम और होगा आपका नाम ही नाम।
2: दशकों से घर घर में गूंजती आवाज के साथ जुड़ेगा आपका भी नाम।
1: दीजिए आकाशवाणी अंबिकापुर पर विज्ञापन और बनाइए अपनी पहुंच लाखों करोड़ों दिलों तक।
2: चाहे हो शुभकामना संदेश या हो आपके व्यापार का नाम,
1: उसे दें ऊंची उड़ान और बनाएं अपनी नई पहचान। करवाएं विज्ञापन मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी अंबिकापुर से। संपर्क करें 07774230600। नंबर एक बार फिर 07774230600।
0: श्रोता साथियों, भारत की जनगणना की दस्तक अब घर घर पहुंचने लगी है। देश के कई राज्यों में कर्मचारी दरवाजों तक पहुंच रहे हैं। ये केवल आंकड़े जुटाने का अभियान नहीं, बल्कि आने वाले भारत की रूपरेखा तैयार करने की प्रक्रिया है। 1 अप्रैल 2026 से शुरू हुआ ये पहला चरण सितंबर 2026 तक चलेगा और इसके बाद 2027 में होगी भारत की वास्तविक जनसंख्या गणना। कभी रजिस्टर और कागज पर होने वाली जनगणना अब डिजिटल भारत की नई पहचान बन रही है। कार्यक्रम का आखिरी गीत फिल्म सुहाग से आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 9:55 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर में भारी गिरावट। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान आज से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर। और दल्ली राजहरा में मिट्टी धंसने से 3 मजदूरों की दबकर मौत। और अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर में भारी गिरावट आई है। भारत सरकार के सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS 2025 के आंकड़ों में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी कम होकर 2-3% दर्ज की गई है। यह आंकड़ा प्रदेश की मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगारोन्मुखी नीतियों और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रभावशीलता को दर्शाता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। एजेंसी ने बताया है कि मामले की जांच के लिए विशेष CBI टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान आज से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। अपने प्रवास के दौरान वे ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। साथ ही ग्रामीण विकास से जुड़े जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और हितग्राहियों से भी संवाद करेंगे। श्री पासवान विकसित भारत GRAMJI अधिनियम से संबंधित तैयारियों और ग्राम पंचायतों में संचालित ग्रामीण विकास गतिविधियों की भी जानकारी लेंगे। अपने प्रवास के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री स्वसहायता समूहों की महिलाओं और विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों से भी बातचीत करेंगे। पालो जिले में मिट्टी धंसने से 3 मजदूरों की दबकर मौत हो गई है। मृतकों में 2 पुरुष और 1 महिला शामिल है। मंगलवार शाम दल्ली राजहरा में यह हादसा हुआ। मजदूर सीवरेज पाइप बिछाने के लिए खुदाई कर रहे थे, तभी अचानक मिट्टी धंस गई। बताया जा रहा है कि BSP की सीवरेज पाइपलाइन विस्तार परियोजना के तहत कार्य चल रहा था। इसी दौरान JCB और चेन माउंट मशीन की मदद से खुदाई की जा रही थी। अचानक मिट्टी धंसने से वहां काम कर रहे मजदूर मलबे में दब गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और BSP के वरिष्ठ अधिकारी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू कराया गया। दुर्ग जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र के खपरी में गैस सिलेंडर ब्लास्ट में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। यह राशि शासन के नियमों के तहत दी जाने वाली 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि के अतिरिक्त होगी। घटना की जानकारी मिलने पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पंजीकरण जल्द ही समाप्त होने वाला है। इच्छुक उम्मीदवार 19 मई से पहले यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी

0: के लिए kmy.gov.in पर जा सकते हैं। नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आईपीएल T20 क्रिकेट मैच खेला जाएगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। आईपीएल मैच को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इससे पहले 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मैच खेला गया था। आकाशवाणी रायपुर द्वारा आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा तैयार किए गए इस कार्यक्रम का प्रसारण आज रात 8:15 से होगा। इसे छत्तीसगढ़ के सभी आकाशवाणी केंद्र रिले करेंगे। बलरामपुर जिले के धंधापुर गांव में खनिज विभाग की टीम ने रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन में शामिल 4 वाहनों को जब्त किया है। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र कोंडागांव द्वारा कल 14 मई को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिला रोजगार कार्यालय में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर में भारी गिरावट। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान आज से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर और दल्ली राजहरा में मिट्टी धंसने से 3 मजदूरों की दबकर मौत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। इस वक्त दिन के 10 बजे हैं। पेश है तापमान संबंधी सूचना। स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान शहर अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 38.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान सूचना के बाद साथियों जान लेते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

एनसीईआरटी और सीआईटी द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे मध्यान्ह के ठीक 12 बजे। सरगुजा संभाग में हाथियों की अद्यतन स्थिति बताता प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ आप सुन पाएंगे शाम 5 बजे।

सोशल मीडिया की गूंज, इंस्टा फरमाइश। सोशल मीडिया आधारित श्रोताओं की पसंद का फरमाइशी कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात्रि के 8 बजे। शाम 7:21 पर आप सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल। कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे कृषि उपयोगी सामयिक चर्चा, आउटर ब्रॉडकास्ट आधारित सफलता की कहानी, कुछ चुनिंदा लोकगीत, पोषक अनाजों से समृद्धि विषयक चर्चा। साथ ही साथ कार्यक्रम में आप जानेंगे मंडी भाव, मौसम की जानकारी, मौसम आधारित कृषि परामर्श।

आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित कार्यक्रम चर्चा का विषय है। आप सुन सकेंगे रात्रि 9:30 पर। ईमेल आधारित कार्यक्रम ईमेल की गूंज का प्रसारण समय है दिन में 1:40 और रात्रि में 10:00।

श्रोताओं की पसंद का फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुनेंगे दिन में 11:05 पर। चित्रपट संगीत का प्रसारण समय है 7:05 और 9:15।

दोपहर 12:30 पर आप सुन सकेंगे शीर्षक गीतों का कार्यक्रम चयन। दिन में 1:10 पर आप सुनेंगे ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर गोसाई। कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे समसामयिक चर्चा, कुछ चुनिंदा लोकगीत और गोएठ बात कार्यक्रम।

दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा। कार्यक्रम गोधूली में शाम 6:20 पर आप सुनेंगे कुछ सरगुजिया और सादरी लोकगीत।

श्रोता साथियों, ये थी जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। दिन के 10:05 हुए हैं। अब पेश है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म रॉक स्टार से एआर रहमान, जावेद अली, मोहित चौहान और साथियों की आवाज़ों में इरशाद कामिल का लिखा नगमा, एआर रहमान का संगीत निर्देशन।

0: राम राम हो विष्णु भैया।
1: राम राम विष्णु भैया।
0: ए दे भाई नगत दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया विष्णु भैया, ए दे आगु तो ए दे वर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं।
0: हाँ।
1: बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ये दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: तेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ।
1: ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब यदि विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में।
0: हाँ।
1: आए?
0: हाँ।
1: तेकर में कहन की दे ट्रैक्टर ला बिसोहू बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नहीं बढ़ी नहीं।
0: हाँ।
1: ताहा
0: तो राउर ऐसे कहा थी कि ये दे सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
1: हो
0: ये दे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही। ये तो महू तो सुनू भाई ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्ज पर नहीं। अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 मेगाहर्ट्ज में भी एला है दे सुन सकते हैं।
1: हाँ, अबे दे शुरू है कि साहे।
0: हाँ
1: हुँ?
0: तो नागा तो देखी भाई अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम
1: किसान वाड़ी।

कार्यक्रम नए तराने में आप सुनते हैं फिल्म जन्नत का गीत के की आवाज़ में। गीत लिखा है सईद कादरी ने, संगीत निर्देशन प्रीतम का।

केके की आवाज़ में आपने सुना फिल्म जन्नत का गीत। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम में आप सुनते हैं फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड का गीत, फरहान सईद और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। गीत कुमार का, फरहान सईद का, संगीत निर्देशन।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 077774 और मिला दो 230-600।
0: अरे वाह, 077774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: कार्यक्रम में आप सुनते हैं फिल्म एक विलन रिटर्न्स का गीत, स्वर और संगीत अंकित तिवारी का, मनोज मुंतशिर की शब्द रचना।

शाहपुर केंद्र है। आप सुन रहे हैं नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम में आप सुनते हैं फिल्म हमारी अधूरी कहानी का गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में, गीत रश्मि विराग का, संगीत निर्देशन जीत गांगुली का।

0: हमारी अधूरी कहानी। फिल्म का गीत आपने सुना अरिजीत सिंह की आवाज में, गीत रश्मि विराग का, संगीत निर्देशन जीत गांगुली का। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं नए फिल्म गीतों का कार्यक्रम नए तराने।
1: वो अपनापन, वो भरोसा जो सालों साल आपने दिखाया हम पर,
2: उसे और मजबूत बनाने हम ला रहे हैं एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर अपना प्रसारण।
1: साफ और स्पष्ट आवाज अब और भी बेहतर अंदाज में आपके दिलों तक।
2: तो जुड़िए आकाशवाणी अंबिकापुर से और जोड़िए आपके अपनों को भी।
1: आपका अपना आकाशवाणी अंबिकापुर, मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ के साथ अब एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर भी।
0: कार्यक्रम में आप सुनते हैं फिल्म आशिकी 2 का गीत, पलक मुच्छल और अरिजीत सिंह की आवाजों में, गीत इरशाद काबिल का, संगीत निर्देशन जीत गांगुली का।

कार्यक्रम नए तराने में आप सुनते हैं फिल्म सत्यमेव जयते का गीत, वाजिद की आवाज में। गीत दानिश साबरी का, संगीत निर्देशन साजिद वाजिद का।

0: ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। आप सुन रहे हैं नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए तराने।
1: वो अपनापन, वो भरोसा जो सालों साल आपने दिखाया हम पर,
2: उसे और मजबूत बनाने हम ला रहे हैं FM 100.2 MHz पर अपना प्रसारण।
1: साफ और स्पष्ट आवाज अब और भी बेहतर अंदाज में आपके दिलों तक।
2: तो जुड़िए आकाशवाणी अंबिकापुर से और जोड़िए आपके अपनों को भी।
1: आपका अपना आकाशवाणी अंबिकापुर, मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ के साथ अब FM 100.2 MHz पर भी।
0: कार्यक्रम नए तराने में अब सुनते हैं फिल्म एनिमल का गीत अरिजीत सिंह की आवाज में, सिद्धार्थ और गरिमा का गीत, श्रेयस पुराणिक का संगीत निर्देशन।

कार्यक्रम नए तराने के आखिर में सुनते हैं फिल्म बाहुबली द बिगनिंग का गीत, कैलाश खेर की आवाज़ में। गीत मनोज मुंतशिर का, संगीत M.M. किरवानी का।

बाहुबली द बिगनिंग फिल्म के गीत के साथ कार्यक्रम नए तराने समाप्त हुआ। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। इस वक्त दिन के 11 बजने वाले हैं। अगले कुछ ही पलों में समाचार। हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: ना रंगासामी कड़वलीन पेयराल उरुदी कूरुदावदे नान नेर्मुगमागवो अल्लदे मरेमुगमागवो ओरुवरुक्को अल्लदे पलरुक्को இந்திய ஒன்றியத்தின் புதுச்சேரி ஆட்சி பரப்பின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் என் கவனத்திற்கு கொண்டுவரப்படும் அல்லது எனக்கு தெரியவரும் எந்த செய்தியையும் மேற்கூறிய முதலமைச்சர் என்ற வகையில் என்னுடைய கடமைகளை முறையாக ஆற்றுவதற்கு தேவைப்பட்டவரன்றி தெரிவிக்கவோ அல்லது வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன்.
0: अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के ए नमस्सीवेयम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, भाजपा नेता अध्यक्ष वीपी रामलिंगम अधिकारी और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वित्री कड़गम टीवीके के सरकार को विधानसभा में आज बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वासमत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की उनकी हालिया यात्राओं के दौरान लागू की गई थी। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की है। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। वे आज चिली के विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोपहर बाद वे दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। शाम को डॉ जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मिलेंगे। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नाशिक पुलिस के क्राइम ब्रांच यूनिट ने कल महाराष्ट्र के नाशिक से शुभम को हिरासत में लिया। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बीच कल रद्द कर दी गई थी। सरकार ने सीबीआई को अनियमितताओं की व्यापक जाँच के निर्देश दिए हैं। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का 38 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतीक यादव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन

भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार से पहले मामूली रूप से बढ़त नजर आई और फिर इसमें गिरावट दर्ज की गई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 75 अंक की अधिक की वृद्धि के साथ खुला और बाद में 180 अंक गिरकर 74,360 पर आ गया। निफ्टी 41 अंक की गिरावट के साथ 24,350 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी अंबिकापुर से बोल रहे हैं मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आप सभी श्रोताओं का नाम लेते हैं जिन्होंने इस गाने की फरमाइश की है। आप हैं पंचायत ग्राम बठेना से बलकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा, सारागांव से सुजान वर्मा, सहोद्रा वर्मा, आयुषी और कृति वर्मा। इसी गीत को सुनना चाहते हैं चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की, विकी, नानू और रविंद्र सेन, खुशी, रौनक सेन। इसी गीत की फरमाइश भेजी है आप सभी श्रोताओं ने सुरेश कुमार सारथी, भाई कमलकांत सारथी, वीरेंद्र को ब्रिजकांत सारथी बेमित्रा से। नवागढ़ कटई से हमें पत्र लिखते हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा। इसी गीत की फरमाइश भेजी है हमारे श्रोता हैं बेलर गांव के मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन। आप सभी की फरमाइश पर श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म विजयपथ से। गीतकार हैं जमीर काजमी और संगीतकार हैं आनंद मिलिंद। इस गीत को आवाज़ दी है अलका याग्निक और कुमार शानू ने। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अब हम आपको सुनवाते हैं कुमार शानू और संजीवनी की आवाज में फिल्म करीब का गीत। गीतकार हैं राहत इंदौरी और संगीतकार हैं अनु मलिक। इस गीत की फरमाइश भेजी है आप सभी ने देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार निभवानी, संगीता निभवानी, आकाश निभवानी, पप्पू जायसवाल, सुमैया राजवाड़े, पूजा, सीता, सागर, आयुषी, हनी और उनके परिवार के सभी सदस्य। कन्या परिसर रोड अंबिकापुर से राखी श्रीवास्तव, महिमा, नितिन, सोनू वंदना और श्रीवास्तव परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत को सुनना चाहते हैं मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत ग्वांडकर, सरिता, प्रिंस एकांश, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत ग्वांडकर, प्रणीता, नागपुर से वैशाली, शैलेश ग्वांडकर, श्वेता, सुमित, कुमारी ध्वनि और टुक टुक ग्वांडकर। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं फिल्म करीब का ये गीत।

धरसीवा से छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना अरुणा और अनुराधा अल्पना यादव, दुर्गा पारा संतोषी नगर रायपुर से छनूलाल यादव, अनुराग अभिषेक, अलका अनामिका, बलदाऊ यादव, कुमारी रानी खुशी प्रवीण और सीएल यादव, गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या करिश्मा कामले, जरूर वड़ूर महाराष्ट्र से बाबा साहेब पड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी, कार्तिक युवराज, एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से कुमारी वंदना मराठा, कुमारी देविका चौधरी, गणेश दादा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना मराठा।

था मालती चौधरी, स्वाति और ललित नारायण खर्चे, आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्म सिर्फ तुम का ये गीत। गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
0: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद का अगला गीत आप सबकी फरमाइश पर है। बलौद अकलतरा से दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल। बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री, वैष्णवी, चंचल, अर्जुन और धीरज। चारमीनार चौक गड्डई पंडरिया से दरियाना मल, अनीता मोटवानी, राजेश रेशम, अनिल राज। झूलेलाल चौक तेलधा से हरीश कमल सेतपाल, भूमिका सुशीला। इसी गीत की फरमाइश भेजी है सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौण और मोहम्मद शादाब खत्री ने। आप सब सुनना चाहते हैं सर फिल्म का गीत कविता कृष्णमूर्ति और कुमार शानू की आवाज़ में। शब्द रचना कतील शिफाई की है और धुन तैयार की है अनु मलिक ने।

0: है नहीं बेरा हर ज्यादा लगे मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने
1: कौन कार्यक्रम ला
0: ये दे किसान वाणी
1: हाँ
0: तेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी अब यदि विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में आए तेकर में कहन की दे ट्रैक्टर ला बिसोह बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नहीं बढ़ी नहीं ताहा
1: तो राउर ऐसे कहा थी कि ये दे सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
0: हो
1: ये दे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही ये तो महू तो सुनू भाई ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्ज पर नहीं अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 मेगाहर्ट्ज में भी एला है दे सुन सकते
0: हैं। हाँ, अबे दे शुरू है कि साहेब।
1: हाँ। तो नागा तो देखी भाई अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम
0: किसान वाड़ी।

0: राम राम हो विष्णु भैया,
1: राम राम विष्णु भैया।
0: ए दे भाई नगद, ए दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में, ए दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया विष्णु भैया, ए दे आगू तो ए दे बर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।

फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद आप आकाशवाणी अंबिकापुर से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आप सुनेंगे सलामी फिल्म का गीत कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ में। गीतकार हैं समीर, संगीतकार हैं नदीम श्रवण और इस गीत की फरमाइश भेजी है आप सभी ने हनुमानगढ़ से सुल्तान सिंह तरड़, मुकेश रामचंद्र, कांता चौधरी, कपिल देव और सिरसा खुर्द से बलवंत जाखड़, ममता जाखड़, प्रिया नैना, हिमानी, शिवम और उनके बहुत सारे साथी। अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हरिया खान, आसमा सालिया, शुएब खान, मुश्ताबा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई। अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। रेलवे कॉलोनी बठिंडा से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जीएस नायक, शोभा नायक और उनके परिवार के सभी सदस्य। इस गीत की फरमाइश भेजी है पथरिया के हमारे श्रोता है नरे नेताम, कुसुम प्रोनिका और प्रोनामिका उत्कर्ष नेताम। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं ये सलामी फिल्म का गीत।

अब हम आपको सुनवाते हैं दिल चाहता है फिल्म का गीत, शान और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। बोल जावेद अख्तर के हैं और संगीत दिया है शंकर एहसान लोए ने। और इस गीत को सुनने की फरमाइश भेजी है आप सभी ने शिवपुरी से अरुण जैन, मोनिका जैन।

इंदौर से वंदना, पुणे से अर्चना सानी, नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से डॉक्टर राकेश मधुलता प्रांजल, सूरतगढ़ से पिंकी शोभा, अनिल कौशिक, पारितोष आशुतोष और उनके बहुत सारे साथी, कोटा से कविता शर्मा, हरिओम और बेबी प्राहिता, इसी गीत की फरमाइश भेजी है। औरंगाबाद से हमारे श्रोता हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। गांधी चौक रोपड़ से हरदेव मिका, बलविंदर बिरक, जयतेक बिगर बिरक और मिका बिरक, इसी गीत की फरमाइश भेजी है। अमरपुर पिंडरा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशीलाल और लवि श्रीवास्तव, आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत शान और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में।

0: इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद समाप्त होता है। ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर में भारी गिरावट। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान आज से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। और दल्ली राजहरा में मिट्टी धंसने से 3 मजदूरों की दबकर मौत। और अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर में भारी गिरावट आई है। भारत सरकार के सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS 2025 के आंकड़ों में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी कम होकर 2-3% दर्ज की गई है। ये आंकड़ा प्रदेश की मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगारोन्मुखी नीतियों और जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावशीलता को दर्शाता है। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान आज से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। अपने प्रवास के दौरान वे ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। साथ ही ग्रामीण विकास से जुड़े जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और हितग्राहियों से भी संवाद करेंगे। श्री पासवान विकसित भारत जीराम जी अधिनियम से संबंधित तैयारियों और ग्राम पंचायतों में संचालित ग्रामीण विकास गतिविधियों की भी जानकारी लेंगे। अपने प्रवास के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री स्व सहायता समूहों की महिला और विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों से भी बातचीत करेंगे। राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम के क्रियान्वयन के लिए पत्र लिखा है। पत्र में सभी नगरीय निकायों में ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, परिवहन और प्रसंस्करण की स्थिति की नियमित समीक्षा करने को कहा गया है। विभाग ने इन कार्यों की निगरानी के लिए निकायों द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी के स्वच्छतम पोर्टल पर स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति और स्वच्छता गतिविधियों से संबंधित प्रविष्टियों की भी जिला स्तर पर समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। बालोद जिले में मिट्टी धंसने से 3 मजदूरों की दबकर मौत हो गई है। मृतकों में 2 पुरुष और 1 महिला शामिल हैं। कल शाम दल्ली राजहरा में ये हादसा हुआ। मजदूर सीवरेज पाइप बिछाने के लिए खुदाई कर रहे थे, तभी अचानक मिट्टी धंस गई। बताया जा रहा है कि BSP की सीवरेज पाइपलाइन विस्तार परियोजना के तहत कार्य चल रहा था। इसी दौरान JCB और चेन माउंट मशीन की मदद से खुदाई की जा रही थी। अचानक मिट्टी धंसने से वहां काम कर रहे मजदूर मलबे में दब गए। आकाशवाणी रायपुर द्वारा आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा तैयार इस कार्यक्रम का प्रसारण आज रात 8:15 से होगा। इसे छत्तीसगढ़ के सभी केंद्र रिले करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। एजेंसी ने बताया कि मामले की जांच के लिए विशेष CBI टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच IPL T20 क्रिकेट मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 से शुरू होगा। IPL मैच को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। दुर्ग जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र के खपरी में गैस सिलेंडर ब्लास्ट में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। ये राशि शासन के नियमों के तहत दी जाने वाली 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि के अलावा होगी। घटना की जानकारी मिलने पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। बीजापुर जिले में डायल 112 आपातकालीन सेवा का शुभारंभ किया गया है। इस सेवा के शुरू होने से नागरिकों को आपात स्थिति में तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध हो सकेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर में भारी गिरावट। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान आज से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे और दल्ली राजहरा में मिट्टी धंसने से 3 मजदूरों की दबकर मौत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

हम आकाशवाणी अंबिकापुर से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 12 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं एनसीईआरटी और सीआईईटी द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जल संरक्षण के सारे काम सुख समृद्धि के रचे आयाम।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गर्मी के इस मौसम में आपके विचार की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है। जी हाँ श्रोताओ, जल अमूल्य है, इसे बूंद बूंद बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, अनीता जाटव और राधिका रानी जयपुरिया जी ने लिखा है, मिठाइयों का सम्मेलन कहानी बहुत पसंद आई, आपको बधाई।
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: तो श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के कुछ उपायों पर।
1: जी।
2: और ये भी जाना था कि 12 बजे से 4 बजे तक खास तौर से हमें गर्मी के मौसम में बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए। तो अजीत जी, जरा श्रोताओं को ये भी जानकारी दे दें कि आज की चर्चा किस विषय पर होगी।
1: विमलेश जी, आज हम ये चर्चा करेंगे कि गर्मी के मौसम में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए।
2: जी।
1: लेकिन श्रोताओं, इससे पहले कि हमारी चर्चा आगे बढ़े, एक रोचक लेकिन महत्वपूर्ण बात आपको हम बताना चाहते हैं। और वो ये कि परंपरागत धारणाओं के अनुसार गर्मी के मौसम में सबसे कठिन दिन कब आते हैं।
2: जी अजीत जी, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो समय अब आने ही वाला है। आज 13 मई हो गई, बस कुछ दिन और। जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं नवतपा की। उत्तर और मध्य भारत में इसका प्रभाव विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। इन दिनों हमें अपना बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए। अजीत जी, नवतपा किसे कहते हैं ये तो बताइए जरा।
1: जी विमलेश जी, नवतपा का अर्थ है 9 दिनों तक तपना, यानी 9 दिनों तक भयंकर ताप।
2: जी।
1: ये वो अवधि है जब हमारे परंपरागत खगोल ज्ञान और मान्यता के अनुसार सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, और इन दिनों में लगभग 9 दिनों तक प्रचंड गर्मी पड़ती है।
2: तो श्रोताओं, आइए अब जानते हैं कि सामान्यतः ये समय कब आता है। आमतौर पर मई महीने के अंत यानी लगभग 25 मई से जून महीने की शुरुआती यानी 2 जून तक। जलवायु परिवर्तन के कारण ये समय थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इस समय विशेषकर उत्तर भारत में लू चलती है और आसमान साफ होता है, इसलिए छाया की भी गुंजाइश नहीं होती है।
1: जी, बता दें श्रोताओं कि यह प्राचीन अनुभवों के आधार पर परंपरागत मान्यता है। वैसे नवतपे में गर्मी बड़ी खतरनाक हो जाती है, लेकिन इसे वरदान भी माना गया है। क्यों?
2: नवतपे में जितनी गर्मी पड़ेगी, माना जाता है कि मानसून उतना ही अच्छा आएगा।
1: जी।
2: आइए अब करते हैं चर्चा गर्मी के मौसम में खान पान की।
1: तो विमलेश जी, आपसे ही शुरुआत करें।
2: जी अजीत जी, श्रोताओ, गर्मी के मौसम में खास ध्यान ये रखना चाहिए कि हमारा आहार पौष्टिक लेकिन हल्का हो।
1: और हाँ, इस मौसम में नींबू पानी, छाछ, दही जैसे प्राकृतिक उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें।
2: सबसे जरूरी बात तो ये है श्रोताओ कि खाली पेट घर से न निकलें।
1: जी।
2: अब बात करते हैं मौसमी फलों के बारे में। अजीत जी, मुझे लगता है कि प्रकृति को सचमुच हमारी बहुत चिंता रहती है।
1: जी बिल्कुल, इसलिए तो प्रकृति को माँ भी कहा गया है।
2: जी सही कहा, जैसे माता को हमारी चिंता रहती है वैसे ही प्रकृति भी हमारी चिंता करती है। श्रोताओ जरा सोचिए ना, गर्मी के मौसम में ही खरबूजे, तरबूज जैसे फल प्रकृति क्यों उगाती है, खीरे और ककड़ियाँ क्यों उगाती है, आम और दूसरे मौसमी फल क्यों होते हैं, ये फल सर्दियों में क्यों नहीं उगते।
1: विमलेश जी, आम

0: तौर पर लोग कहेंगे कि इसमें भला सोचने की क्या बात है, ये गर्मी के फल हैं तो गर्मी में तो होंगे ही।
1: जी जी जी आम लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ फल जैसे खरबूज, तरबूज, ककड़ी और खीरे में 80-90% तक पानी होता है।
0: जी
1: इन्हें खाने से हमारे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहती है। इतनी अधिक पानी की मात्रा होने के कारण ये पचने में भी आसान होते हैं।
0: जी विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। प्रकृति को सचमुच हमारी चिंता रहती है, तभी तो वो ऐसे फल उगाती है जिनसे कि हम स्वस्थ रहें। हमें प्रकृति माता को जरूर धन्यवाद देना चाहिए।
1: जी।
0: लेकिन दुखद है कि प्रकृति हमारे स्वास्थ्य की जितनी चिंता करती है ना, उतनी प्रकृति के स्वास्थ्य की चिंता हम नहीं करते।
1: तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी ये जानकारी, जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न।
0: तो आज का प्रश्न है, प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है गर्मी।
1: ये कार्यक्रम गर्मी के मौसम की जानकारी देते हुए बताता है कि गर्मी के मौसम में हमें अपना ध्यान किस तरह से रखना चाहिए और गर्मी के मौसम में पैदा होने वाली साग सब्जियाँ और फल कौन कौन से होते हैं जिनका हमें भरपूर सेवन करना चाहिए।
2: बहुत पुरानी बात है, दो बहनें थी, सोना और रूपा। दोनों अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। गर्मी का मौसम था, दोनों बाग में खेल रही थी।
3: अकर बकर बम्बे वो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा।
4: अब तेरी बारी है, तेरी
5: तुम्हारी बारी, तुम सुना, तुम सुना।
4: अच्छा ठीक है, मुझे तो कहानी आती है,
5: तो कहानी सुना दो भाई।
4: अच्छा ठीक है। गर्मी का दिन था, एक कौआ प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था। कौआ लाया कंकड़, घड़े में डाले कंकड़, पानी आया ऊपर, कौए ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी।
5: अच्छी कहानी थी भाई। कौए ने तो पानी पी लिया, पर अब मुझे बहुत प्यास लग रही है।
4: हाँ, प्यास तो मुझे भी लग रही है। वो सामने घड़ा रखा है, चलो वहाँ चलकर देखते हैं।
5: हाँ चलो चलो, वहाँ पे पानी
4: चलो,
5: होगा।
4: चलते हैं।
2: सोना और रूपा ने घड़े का ढक्कन हटाकर देखा तो उसमें पानी था। दोनों बहुत खुश हुई। रूपा पीने के लिए पानी निकाल ही रही थी कि तभी एक आवाज आई।
6: कौन है
5: दीदी?
6: कौन है
5: दीदी?
4: अम्मा जी, मैं हूँ सोना और ये है मेरी बहन रूपा।
5: अम्मा जी, हमें बहुत प्यास लगी है,
4: हम थोड़ा पानी पी लें?
7: हाँ हाँ, क्यों नहीं, पी लो पानी। बच्चों पानी पी लो, ढक्कन ठीक से लगा देना। पी लिया पानी? प्यास बुझी?
5: हाँ, हाँ पर ठंडा पानी था।
4: लेकिन अम्मा, आप कौन है?
7: मैं एक मौसम हूँ। मेरे आने से तुम्हें बहुत प्यास लगती है और बहुत गर्मी भी लगती है, पर मैं अपने साथ तरह तरह के फल भी लाती हूँ, जैसे खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी और भी बहुत सारी चीजें। अच्छा भला बताओ तो मैं कौन हूँ?
5: कौन है आप?
7: नहीं समझे?
5: नहीं।
7: अच्छा तो फिर ये पहेली सुनो।

0: जलते हैं
1: और सारा दिन पानी भी पीते हैं।
0: ऐसा मौसम
1: अब
2: गर्मी अम्मा है।
3: बिल्कुल ठीक समझी। मैं गर्मी यानी गर्मी का मौसम ही तो हूँ।
0: गर्मी अम्मा, आप कब आती हैं पता ही नहीं चलता।
3: सीधी सी बात है, सर्दी जब जाने की तैयारी करती है गर्म कपड़ों में तुम्हें गर्मी लगती है, तो बस समझ लो कि मेरा मौसम शुरू यानी यानी
1: हाँ, जब होली आती है तो गर्मी भी तो लगनी शुरू हो जाती है।
3: हाँ
0: अम्मा, मुझे तो धूप में बहुत गर्मी लग रही है।
3: भाई मेरे मौसम में गर्मी ही तो लगती है। चलो ऐसा करते हैं, उस पेड़ की छाया में बैठते हैं, ठीक है?
1: हाँ चलो अम्मा, चलते हैं।
0: चलो।
4: सोना और रूपा गर्मी अम्मा के साथ जाकर पेड़ की छाया में बैठ गईं। इतने में पेड़ से दो आम गिरे।
1: अरे ये क्या गिरा?
3: मैं देखती हूँ, तुम लोग यहीं बैठो।
4: वहां दो आम गिरे थे, बच्चे भी दो और आम भी दो, लेकिन अम्मा ने वो आम छिपा लिए।
0: अम्मा आप क्या छुपा रही हैं?
1: अम्मा ये आपके हाथ में क्या है?
3: मेरे ही मौसम का एक फल है।
1: दिखाओ ना। अम्मा दे
3: दूंगी तुम्हें, दूंगी, पर पहले तुम्हें इसका नाम बताना पड़ेगा।
1: इसका नाम
3: सोचो, मेरे मौसम का सबसे स्वादिष्ट फल जो बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद है, खट्टा मीठा रसदार फल। सोचो।
1: स्वाद है,
0: पसंद है,
1: सबसे अच्छा भी है।
0: कौन सा फल है?
3: नहीं समझी?
1: नहीं।
3: अच्छा तो फिर सुनो,

0: झट से तुम बोलो ये क्या है, बोलो ना।
1: आ,
2: आ, आ, तुम तो बड़ी समझदार हो।
3: आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम कुल्फी वाला, बर्फ का गोला ले लो, चुस्की ले लो,
2: आइसक्रीम। बच्चों, मेरे मौसम में तुम लोग खूब आइसक्रीम खाते हो, बर्फ के गोले खाते हो, है ना, कुल्फी भी खाते हो ना। अरे तुम्हारा बस चले तो तुम दिन भर आइसक्रीम ही खाते रहो, है ना।
1: अरे कोई खाने को दे तब ना।
2: अरे लगता है बहुत तेज आंधी आने वाली है, तुम लोग जल्दी से घर चले जाओ। और हाँ, ये आम तो लेती जाओ।
1: लाओ अम्मा,
4: लाओ अम्मा,
2: लो।
1: गर्मी अम्मा, आप बहुत अच्छी हैं।
2: तुम्हें मीठे मीठे आम जो खिलाती हूँ।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गर्मी, और श्रोताओं आइए अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। और हमारा अगला कार्यक्रम है कारगिल की शौर्य गाथा।
1: ये कार्यक्रम कारगिल युद्ध से ठीक पहले की परिस्थितियों की जानकारी देता है और वर्णन करता है कि कारगिल युद्ध के दौरान विपरीत और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के होते हुए भी किस प्रकार से भारतीय सेना ने अपार धैर्य और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए विजय की पताका फहराई।
2: मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। सुप्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां कितनी जीवंतता से उन पराक्रमी युद्ध सैन्य महानायकों के प्रति असीम श्रद्धा की भावनाओं को जगाती हैं।
3: विजयश्री उन्हीं के लिए निर्धारित होती है जो कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के साथ अविचलित और अडिग खड़े रहते हैं। आज का कार्यक्रम हम श्रद्धा सहित समर्पित करते हैं उन पराक्रमी योद्धाओं को जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
2: जी हाँ, आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध की, जो नियंत्रण रेखा के पास जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये ऐसी पहली लड़ाई थी जिसे संचार माध्यमों के द्वारा निरंतर प्रसारित किया गया, और परिणाम स्वरूप इस युद्ध का आंखों देखा हाल भारत की जनता के घर घर तक पहुंचाया गया।
4: What you heard right behind you was the sound of Bofors guns directly targeting the top of Tiger Hill, the prelude to the final assault.
5: We just had a shell land very close to us. I doubt if you were able to see anything.
3: देश के विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से पत्रकारों ने इस युद्ध का जीवंत रिपोर्ट आज प्रस्तुत किया, जिसके कारण जनता द्वारा सेना को अपार समर्थन मिला और फलस्वरूप भारतीय सेना का मनोबल और अधिक बढ़ा, जिसने इतिहास रच दिया। एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ याद करेंगी। कारगिल का युद्ध 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक लड़ा गया।

0: इस युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से स्थल और वायु सेना द्वारा लड़ा गया। उल्लेखनीय है कि इस दौरान भारत की समुद्री सीमाओं पर भी भारतीय नौसेना ने शत्रुओं पर कड़ी निगरानी रखी।
1: दिन था 6 मई 1999 का। समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम बर्फीले पर्वतों के बीच एक भारतीय चौकी पर सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे।
2: बहुत ठंडी आज तो। वैसे भी ये एक ऐसी जगह है जहां लगता है कि हम दुनिया के किसी और ही कोने में हैं, है ना?
3: ठीक कहते हो तुम। अभी मई महीने में ही इतनी ठंड है, तो पता नहीं सर्दियों में क्या हाल होता होगा।
2: वैसे तुम्हारी पोस्टिंग तो अभी हाल ही में हुई है ना? अरे मैंने तो यहाँ की 2 सर्दियां देख ली हैं।
3: जरा उधर देखो।
2: अब किधर?
3: वहां लगता है कोई इधर ही आ रहा है।
2: कोहरा काफी घना है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूँ मैं कि कोई सैनिक नहीं है। उसका पहनावा तो देखो।
3: पहनावे से तो कोई कबायली लगता है। लेकिन इधर क्यों आ रहा है? कोई जासूस तो नहीं? वार्निंग दो इसे।
2: आने दो।
4: ए! कौन हो तुम? रुको, रुको! जाओ वहीं रुक जाओ, रुको!
5: कौन हो तुम?
6: साहब मैं एक चरवाहा हूँ साहब, मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है। अपने बड़े साहब से मुझे मिलवाओ।
5: क्या?

0: हाँ सोचना
1: शाब शाब दुश्मनों के बारे में।
0: अच्छा यहीं रुको, चलो कमांडेंट साहब ने बुलाया तुम्हें।
1: नमस्कार सर, मेरा नाम ताशी नामग्याल है।
2: नमस्कार, कहो क्या कहना चाहते हो?
1: सर हम एक चरवाया है।
2: आगे बताओ।
1: सर ये 3 मई की बात है, कुछ दिनों पहले मेरा याक खो गया था। उसे खोजते हुए मैं पहाड़ों पर काफी ऊंचाई में चला गया था। एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर मैंने दूरबीन से नीचे देखा तो एक बड़ा अजीब सा नजारा मुझे दिखाई पड़ा।
2: क्या देखा तुमने?
1: शब मैंने देखा कि पठानी कपड़ों में बहुत से लोग एक जगह पर जमा हैं।
2: क्या?
1: उनमें बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक भी हैं। वे बंकर खोद रहे थे और उनके पास बहुत सारे हथियार भी थे। हाँ
2: कितने लोग रहे होंगे?
1: शब पूरी गिनती तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना पक्का है कि वो बॉर्डर के उस पार से आए हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं।
2: ये तो बड़ी जरूरी बात बताई तुमने। हो सकता है कि हमें तुम्हारी फिर से जरूरत पड़े। तुम्हारा घर कहाँ है?
1: साहब मेरा गांव है घर कौन, ये कारगिल शहर से 60 किलोमीटर दूर बटालिक शहर के पास है।
3: तो साथियों, इस स्थानीय सजग चरवाहे की सूचना से सेना सतर्क हो गई। जब सेना ने इस बात की छानबीन की तो बात सच निकली। उन्हें पता चला कि सीमा पार से बहुत बड़ी घुसपैठ हुई है।
4: सही स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए भारतीय सेना ने मेजर सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक गश्ती दल भेजा, लेकिन वो दल कभी वापस ही नहीं आया। 10 जून को पाकिस्तानी सेना ने उनके बुरी तरह से क्षत विक्षत शव वापस भेजे।
3: अब इस बात में कोई संदेह नहीं था कि पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई थी। सेना द्वारा गहन जांच में पता चला कि मई 1999 की शुरुआत में ही पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा पार करके मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों में लगभग 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी और पाकिस्तानी सेना के लगभग 2000 से अधिक पैदल सैनिकों और कमांडो ने यहां अपनी चौकियां बना ली थी।
4: यद्यपि पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा कहा गया कि ये घुसपैठिए कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेकिन छापेमारी में पकड़े गए लोगों और हल्की गोलाबारी में मारे गए सैनिकों के पास मिले सारे दस्तावेजों ने साबित कर दिया कि ये काम पाकिस्तान के अलावा किसी और का नहीं था।
3: दरअसल पाकिस्तान का उद्देश्य था सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन क्षेत्रों में अपनी सेना भेजकर श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर कब्जा करके लद्दाख को कश्मीर से अलग करना और कारगिल व सियाचिन पर कब्जा करना।
4: ये भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर सीधा प्रहार था और इसलिए भारत को बड़े पैमाने पर कारगिल में एक सैनिक अभियान प्रारंभ करना पड़ा, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस सैन्य अभियान का नाम था ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना समझ चुकी थी कि विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में शत्रुओं से युद्ध करना एक बेहद कठिन और दुष्कर कार्य होगा। भारत सरकार द्वारा नियंत्रण रेखा को पार न करने के निर्णय ने भारतीय सेना के कई सामरिक विकल्पों पर अंकुश लगा दिया।
3: भारतीय सीमा में घुसे हुए पाकिस्तानी पूरी तरह से सुरक्षित और अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। उन्हें पहाड़ों की ऊंचाइयों पर होने का प्राकृतिक लाभ था, जबकि भारतीय सेना घाटी में खुले होने के कारण बेहद असुरक्षित थी। लेकिन युद्ध अवश्यम भावी था और भारतीय सेना ने युद्ध छेड़ दिया।
4: दिन में किए गए हमले खतरनाक हो सकते थे क्योंकि देख लिए जाने का जोखिम था, इसलिए भारतीय सेना द्वारा आक्रमण मुख्य रूप से रात को 0 डिग्री से भी कम तापमान में किए गए। सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र तल से 18,000 फीट की खड़ी चढ़ाई को चढ़ना।
5: साथियों, हमारे सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो है इन पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना।
2: लेकिन सर, एक और बहुत बड़ा खतरा है।
3: और वो है दुश्मन।

0: द्वारा देख लिए जाने का।
1: ठीक कहते हो, अगर हम चढ़ने की कोशिश भी करें तो वो बड़ी आसानी से हमें अपने निशाने पर ले सकते हैं।
2: जी सर, इसलिए दिन की रोशनी में आक्रमण करना बिल्कुल संभव नहीं है। हमारे पास मात्र रात को ही आक्रमण करने का विकल्प बचता है।
1: सही बात। सुनो, सब इधर आओ।
0: जी, यस सर।
1: ये मेज के चारों ओर।
0: जी सर।
1: उधर से। हाँ जी। तुम्हें याद होगा कि अभी 3 दिन पहले हमारी वायुसेना के विमान इस क्षेत्र में आक्रमण करने आए थे।
0: जी सर।
1: वायुसेना ने हमले के दौरान इस क्षेत्र के चित्र भी खींचे हैं और उन्हें हमारे पास भेजा है।
0: जी सर।
1: इन चित्रों के आधार पर मैंने ये नक्शा बनाया है।
0: जी सर।
1: इस नक्शे के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि दुश्मनों की चौकी जहां है उसकी विपरीत दिशा से हमें पर्वत पर चढ़ना होगा, यानी दाहिनी ओर से।
0: जी सर, आप ठीक कहते हैं सर। इस तरफ से सर, यहां से पहाड़ की दाहिनी ढाल भी ज्यादा कठिन है सर। दुश्मन सोच भी नहीं सकता कि हम इस तरफ से चढ़ भी सकते हैं।
1: बिल्कुल ठीक। तो साथियों,
3: यस सर।
1: अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मेरा अंदाजा है कि इस चढ़ाई में हमें कम से कम 5 घंटे तो लगेंगे, तो क्यों ना रात 11 बजे से इस अभियान को शुरू किया जाए।
0: जी जी सर।
1: चढ़ाई करने वाली हल्की रस्सियां तैयार कर ली जाएं। हथियारों में राइफल्स, हल्की मशीन गन और हथगोले होंगे।
0: सर, जी सर।
1: कोई शक?
0: नो सर।
1: बी प्रिपेयर्ड फॉर द मिशन।
3: यस सर।
0: सर, अब हम चोटी के बिल्कुल पास आ गए।
4: धीमे बोलो, धीमे।
0: जी,
4: उन्हें पता ना चल जाए।
0: जी सर।
4: चोटी पर पहुंचते ही हम सभी रेंगते हुए उनके तंबुओं की ओर बढ़ेंगे।
0: जी।
4: और हथियारों के साथ अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे।
0: ठीक है सर।
4: और फिर तुम विपरीत दिशा में एक हथगोला फेंकना।
0: जी सर। जी सर।
4: बम के फटने की आवाज सुनकर अपने तंबुओं से कुछ सैनिक बाहर जरूर निकलेंगे और तुम्हें उन पर फौरन फायरिंग करनी होगी।
0: जी सर।
4: ठीक है, आगे बढ़ो। बहुत धीरे, आवाज नहीं निकलनी चाहिए। धीरे, बहुत धीरे,
0: धीरे।
4: तबे पाओ, तबे। बस अब हम चोटी पर आ गए हैं तो अब रेंगना शुरू करो।
0: रेंगेंगे। जी सर।
4: कोई भी उठकर नहीं जाएगा, सब रेंगेंगे। आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं। हर कोई अपनी पोजीशन ले ले।
0: हाँ सर।
4: Everybody ready?
0: Yes sir.
4: Yes sir. अब हथगोला फेंको।
1: Good. वो अपने बंकरों से बाहर आ रहे हैं।

0: इस मिशन में भारतीय सेना को भारी सफलता मिली। दुश्मन के अधिकांश लोग मारे गए और कारगिल की इस चोटी पर भारतीय सेना ने अपना परचम लहरा दिया। ऑपरेशन विजय में भारतीय वायुसेना की बहुत ही अहम भूमिका रही। इस युद्ध में सामरिक महत्व के मुख्य क्षेत्र थे मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक।
1: भारतीय सेना ने एक अपूर्व गरिमामय इतिहास रच दिया था।
0: 3 मई से 26 जुलाई 1999 के बीच लड़ी गई इस लड़ाई में 25 सैनिक अधिकारियों और 436 जवानों की शहादत हुई। इसके अलावा 54 सैनिक अधिकारी और 629 जवान घायल हुए।
1: इस युद्ध में 2 सैनिक अधिकारियों और 2 जवानों को परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। ये पराक्रमी योद्धा हैं कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव।
0: देश इन रणवीरों को उनके असीम शौर्य हेतु श्रद्धा से नमन करता है। कारगिल युद्ध की गौरवशाली विजय की स्मृति में 26 जुलाई

0: मई को अब देश भर में विजय दिवस मनाया जाता है।
1: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे एक ही शीर्षक पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम चयन।

एक ही शीर्षक पर आधारित फिल्म संगीत के कार्यक्रम चैन में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूं आपकी सखी चरणजीत कौर सिद्धू। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शीर्षक की जिसे रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों में इस्तेमाल करते हैं, और इसमें रोशनी हवा घर के दरवाजे रोशनी हवा और धूप को नियंत्रित किया जाता है, साथ ही घर की सजावट के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन शायरी की दुनिया में पर्दा सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं बल्कि एक गहरा प्रतीक है हया और खूबसूरती का, जुदाई और तड़प का, और ये प्रतीक है रूहानियत और खुदा का। कई बार पर्दा प्रेमी और प्रेमिका के बीच की उस दीवार को दिखाता है जो उन्हें मिलने नहीं देती। ऐसे में शायर प्रेम धवन लिखते हैं, आप भी सुनिए।

जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ हाँ।

अभी आपने मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में फ़िल्म अमर अकबर एंथोनी की यह कव्वाली सुनी। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। श्रोताओं, प्यार एक ऐसा एहसास है जो कभी खामोश निगाहों से छुप जाता है तो कभी चांदनी रात में दिल की धड़कन बनकर उतर आता है। इसी अदा को समेटे हुए फिल्म फना का ये प्यारा सा गीत, जो प्यार की मासूमियत, शर्मो हया पर पर्दा गिराता चाहत की गहराई और दिल की मीठी बेचैनी को बखूबी बयां करता है, आइए सुनें।

0: अभी आपने प्रसन्न जोशी के शब्दों को ललित जतिन ललित के संगीत पद के इस गीत को सुना। फना के इस गीत को आवाज़ दी थी कैलाश खेर और शान ने।
1: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
2: वही तो परेशानी है रिया, कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
1: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
2: क्या 230-600?
1: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
2: पक्का?
1: हाँ, बस कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
3: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।
0: आकाशवाणी अंबिकापुर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चयन और आज का शीर्षक है पर्दा। मोहब्बत जब आंखों से बातें करने लगे तो लफ्जों को भी पर्दों में रहना पड़ता है। आज का अगला गीत भी कुछ ऐसी ही मीठी शरारत और नाजुक अदाओं से सजा हुआ है, जहां कोई है जो सामने होकर भी सामने नहीं, जो पर्दे में रहकर भी दिल की धड़कनों पर दस्तक दे रहा है। तो आइए हया के इन नर्म पर्दों के पीछे छुपी मोहब्बत को महसूस करते हैं।

अभी आपने दादा फिल्म का गीत सुना, मोहम्मद रफ़ी और शैलेंद्र की आवाज़ में। शब्द रचना असद भोपाली की थी और संगीत उषा खन्ना का था। श्रोताओं, कभी कभी कुछ चेहरे सिर्फ आँखों से नहीं, एहसासों से भी पहचाने जाते हैं, और कुछ राज ऐसे होते हैं जो पर्दों में ही खूबसूरत लगते हैं। हर राज को राज रहने दो तो बेहतर है, कुछ चेहरों पर पर्दा रहने दो तो बेहतर है।

0: फिल्म शिखर के इस गीत के साथ ही एक ही शीर्षक पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम चयन समाप्त होता है। श्रोताओं, आज का शीर्षक था पर्दा। हम आकाशवाणी अंबिकापुर से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन का एक बजने वाला है। अब हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वित्री कड़गम सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। 144 विधायकों ने सरकार के पक्ष में मतदान किया, जबकि 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। प्रमुख विपक्षी दल डीएमके ने कार्यवाही के दौरान विधानसभा से वॉकआउट किया। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने विजय को सदन में अपना बहुमत साबित करने का आदेश दिया था। विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी को 108 सीटें मिली थीं। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के एन नमस्सिवियम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। वैश्विक ईंधन

0: कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली की मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैकेना से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने वांछित भगोड़े प्रभदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। CBI ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस के समन्वय से ये कार्य किया। CBI ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रभदीप वांछित था। नीट UG परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह SOG द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत SOG ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया है कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,881 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। सेंसेक्स 201 अंक बढ़कर 74,760 पर, जबकि निफ्टी 77 अंक के साथ 23,457 पर पहुंच गया। IPL क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी अंबिकापुर से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे खेती की बात का पुनः प्रसारण।
2: किसान भाइयों और बहनों, आज की खेती की एक बहुत बड़ी समस्या है कीट और रोग, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या है हमारे समाधान का तरीका। आज हम कीट का जवाब रासायनिक दवा से लेने लगे हैं, पर क्या आपने कभी गौर किया है, हर साल दवा की मात्रा बढ़ रही है, लागत लगातार बढ़ रही है और फिर भी कीट खत्म नहीं हो रहे। इसका मतलब साफ है, हम समस्या को नहीं सिर्फ लक्षण को दबा रहे हैं। अब समय है खेती को प्राकृतिक संतुलन की ओर ले जाने का। इसलिए कीट दुश्मन नहीं है, ये समझना ज़रूरी है। सबसे पहले हमें एक सोच बदलनी होगी। हर कीट नुकसानदेह नहीं होता, कुछ कीट फायदेमंद भी होते हैं जो दूसरे कीटों को खाते हैं। अगर हम हर कीट को खत्म कर देंगे तो प्राकृतिक संतुलन टूट जाएगा और समस्या बढ़ती जाएगी। इसलिए लक्ष्य होना चाहिए कीट नियंत्रण, ना कि पूर्ण नाश। प्रमुख जैविक उपाय

0: कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि नीम आधारित समाधान जिसे प्राकृतिक रक्षा कवच कह सकते हैं। नीम को यूं ही प्राकृतिक कीटनाशक नहीं कहा जाता, यह कीटों के अंडे देने की क्षमता को कम करता है, खाने की प्रक्रिया को बाधित करता है और उनके जीवन चक्र को तोड़ देता है। इसके उपयोग का तरीका बड़ा आसान है। 5 मिलीलीटर नीम तेल, उसमें 1 लीटर पानी मिलाइए, हल्का साबुन मिलाकर छिड़काव करें। हर 7 से 10 दिन में एक छिड़काव बहुत प्रभावकारी होता है। दूसरा उपाय है लहसुन मिर्च अदरक घोल, ये तीखा सुरक्षा तंत्र कहलाएगा। यह घोल कीटों के लिए बहुत तीव्र होता है लेकिन फसल के लिए सुरक्षित रहता है। इसकी तैयारी की जा सकती है। लहसुन हरी मिर्च और अदरक को एक साथ मिलाकर पीसें, पानी में मिलाकर 24 घंटे रखें, छान कर छिड़काव करें। यह रस चूसने वाले कीटों पर असर करता है। तीसरा उपाय है छाछ यानी मठा और गौमूत्र। छाछ फफूंद रोगों को रोकता है, गौमूत्र पौधों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, इसलिए 1 लीटर छाछ में 10 लीटर पानी मिलाइए या 1 लीटर गौमूत्र में 10 लीटर पानी मिलाइए। नियमित छिड़काव से पौधे मजबूत होते हैं और रोग कम लगते हैं। जैविक घोल जीवामृत या दशपर्णी अर्क से भी हम समाधान कर सकते हैं। ये सिर्फ कीटनाशक नहीं बल्कि मिट्टी और पौधे दोनों को मजबूत करने वाले घोल हैं। दशपर्णी अर्क बनाने के लिए 10 पत्तियों से बना हुआ अर्क बनाया जाता है। जीवामृत गौमूत्र गोबर गुड़ बेसन से तैयार किया जाता है। ये पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं जिससे कीटों का असर अपने आप कम हो जाता है। पांचवी तकनीक है ट्रैप तकनीक यानी कीटों को फंसाने से। इसमें जो तकनीक उपयोग में लाई जाती है, पहला है पीले स्टिकी ट्रैप, सफ़ेद मक्खी माहू को पकड़ते हैं। दूसरा उपाय है फेरोमोन ट्रैप, नर कीटों को आकर्षित कर प्रजनन रोकते हैं। इससे कीटों की संख्या शुरुआती स्तर पर ही नियंत्रित हो जाती है। छठवां उपाय है मिश्रित खेती और सह फसल। एक ही फसल एक ही तरह का कीट का हमला, ये समझने वाली बात है। लेकिन अगर हम मक्का और दाल या कपास और मूंग जैसी मिश्रित खेती करते हैं तो कीट भ्रमित होते हैं और फैलाव कम होता है। इसके अलावा एक और उपाय है लाभदायक कीटों का संरक्षण। लेडी बर्ड बीटल, ट्राइकोग्रामा, ये कीट हानिकारक कीटों को खाते हैं। रासायनिक दवा इनको भी मार देती है, इसलिए जैविक खेती में इनका संरक्षण बहुत जरूरी है। किसान भाइयों और बहनों, हर 2 से 3 दिन में खेत का निरीक्षण करें। अगर कीट शुरू में ही दिख जाए तो हल्के उपाय से नियंत्रण हो जाता है। देर होने पर ही महंगी दवाओं की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा नाइट्रोजन देने से कीट ज़्यादा आकर्षित होते हैं, ज़्यादा पानी से भी रोग बढ़ते हैं, इसलिए संतुलन बहुत ज़रूरी है।
1: जैविक कीट नियंत्रण, इस विषय पर अभी आप खेती की बात सुन रहे थे। हम आकाशवाणी अंबिकापुर से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ पर और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर को साइन।

संगयूर और स्वागत है हमार घर गोसाइन कार्यक्रम में। आज संगे रही रमा बहिन, जय जोहार, राम राम। देखिए हमार बहनी मन मारे काम बोता करत रहते हैं और आजकल तो मारे घामा भी आया है, तो घामा में भाई घरों कर काम बोता होता है, संगे संगे देखिया कि खेती बाड़ी सब जाता है। और ऐसा में अब लड़का मन कर छुट्टी हो चाहिए तो हमार थोड़ा सा काम बोता हर बाढ़ गई सा है। एमे लड़का मन ला भी देखना है कि एकति ओकति बदबदाए झेन, काबर कि आमा हर हो सा है तो खाए बर यहाँ वहाँ जाता है, कच्चा आमा खाता है और आए के जब पानी ला पी देता है तो मारे सर्दी खांसी भी होता है और लू भी लाग जाही, एहूला हमन ला देखना है। तो ऐसा में अपन तिहा जतन जरूर करी और लड़का मन ला भी थोड़ा सा घरे राखी और समझाए बुझाए के राखी, घूमे लड़का मन, खेले लड़का मन, बाकी

फिर ऐसा बेरा में कि जे में ओमन कर तबियत हर खराब नहीं हो, अपन बहन मन जो है वो हमार बहन मन ला भी कहना चाहती कि अपन तिहा ला भी करे। अब ऐसन में देखी जैसे हमार खाना दाना तो रोजे बनाता है, तो ऐसन में हमार जो उज्ज्वला योजना चलाता है ओकर देखी बहुत लाभ भेटाता है। हमार गांव गोई में भी देखत रहन कि पहले भाई चूल्हा ला जलाता है और ये घामा कर बेरा में तो भाई चूल्हा ला जलाए तो मारे घामा भी होए परेशानी भी होए। अब ये परेशानी से निपटे भर ये योजना हर चलाल गई सा है। और अब ये योजना में जैसे हमन पहले मारे देर लगत रही कि भाई हमन ला दाल बनाना है, भात बनाना है, सब्जी बनाना है, चाहे सब्जी हो भात ला बनाना है तो थोड़ा सा हमन ला परेशानी हो, बाकी अब देखिए जब गैस की व्यवस्था हमन ला मिलता है भेटाता है चूल्हा ही भेटाता है तो ऐसन में हमन ला थोड़ा सा परेशानी जो देखी कि कम हो गई सा है। अब धुआं ले हमन दिखत रहन कि भाई धुआं ले आखी हर तुम्हारे जले और खोले भी नहीं बने, तो ऐसन में वो परेशानी से भी हमन ला थोड़ा सा देखब कि निकल गए ही वो परेशानी से हमन। आओ जैसे दमा के कोनो मरीज है भाई खांसी वोंसी के ज़्यादा है, हमर जो सियान मना है ओमन हो गए तो ओमन ला भी मारे परेशानी होत रहीस कि भाई खांसे तो भाई खांसते जाए नान कौन लड़का मना है लड़को रिहा दाई मना है कोनो भी तरीका से देखब कि धुआं जब हो जाए तो इमें से सबे कोई परेशानी होत रहें। तो भाई अब ये सब परेशानी से हमन ला छुटकारा भेटाता है ये उज्ज्वला योजना कर माध्यम से। और खाना भी हमन ला ताज़ा भेटाता है कि भाई जब हमन चाहती तब हमन बना ले हती और जल्दी भी भेटाता है। तो ये जो सुविधा है एक लाभ हमन ला जरूर उठाना चाहिए और जब हमन देखिए कर लाभ उठाब तो सब परेशानी से हमन बाज जाब। ऐसने देखी जब परेशानी की कोई ठाल तो हमन सोचती कि भाई कोनो भी चीज़ है तो घर में जैसे कोनो भी झगड़ा झंझट कम होता है। आजकल तो देखिए कि संयुक्त परिवार नहीं दिखे ज़्यादा, आओ भाई दाई दाऊ मन में ही रहीं और लड़का छुआ मन रहीं। और ऐसन में भी कभी जो बड़खा परिवार में संयुक्त परिवार में रहती तो कुछ हमन ला सोच रखना जरूरी है जब सब झेला मिलजुल के रहना है कि भाई कोनो भी चीज़ के हमन बात करती तो ओमें सब जन के विचार ला हमन ला सुनना चाहिए। सब जन के जब विचार ला गोठ ला हमन सुन के चलब तो भाई आगू हमार परिवार हर अच्छा रह सकत है। और सब जन के भलाई कर बारे में भी सोचना चाहिए कि भाई एक ठो हमन काम करत ही तो कर ले दूसर कर कोनो परेशानी मत होए। जैसे दो तीन भाई जैसे एक घर में रहते हैं तो भाई कोनो कर कोनो काम चलता है तो वो हमार कोनो भी फैसला हमन ले हती ओकर ले ओला परेशानी झेन होए। और सब जन के बात विचार ला सुन के और हमन ला आगू अपन काम ला करना चाहिए। आओ चाहे लड़का छुआ हो चाहे सियान हो चाहे हमार घर के बहनी मन हो सब जन के बात विचार ला सुनना चाहिए। ऐसे झेन होना चाहिए कि भाई अब घर में बहनी मन जो महिला मना है तो ओमन के बात ला हमन काबर सुनब, ऐसे नहीं आ है। सब जन ला हमन ला बराबर महत्व देना चाहिए और हर किसी से जो घर में जितना भी आ है मन से तो सब जन के बात विचार करके और कोनो ही फैसला ले और कोनो ही बात में हमन मिले रहब और भाई जुटे रहब तो हमार घर जो है बढ़िया चली। देखिए अब भाई हमार कार्यक्रम भी बढ़िया चलता है कि हमार जो संगी मना है ओमन कर हमार जग मारे चिट्ठी आत रहे और ई मेल आत रहे कि जेकर ले हमार गोठ बात ये हमार कर्म चलते और ए में हमार संगी मन कर हमन आज भी विचार सुनब। और आज सबले पहले ये जो गोठ बात क्रम है में तो जितना हमार सुने या संगी मना है सब जेकर हमन स्वागत करत हन। और जो पहला हमार ये ई मेल है ये है रिंगनी छत्तीसगढ़ ले करुणा वर्मा प्रियंका बंछोर दिनेश शर्मा और ग्राम पंचायत खोनला उदयपुर सरगुजा ले आए हैं करिश्मा पैकरा जीवधन सिंह पैकरा घुरनी पैकरा सोमार साय कलेश्वर सिंह सुखराम पैकरा हीरामणि पैकरा ऐश्वर्या पैकरा ये सब जो हमार संगी मना है ये हमार कार्यक्रम के नियमित श्रोता हैं। और एमन कर ईमेल हमन ला भेटात रहे और कार्यक्रम कर बारे में लिखत रहते हैं सुनत रहते हैं और भाई पसंद भी करते हैं। तो आज इनकर पसंद करा है एक ठन छत्तीसगढ़ी गीत तो लगी सुनी।

0: अब जो हमारी ईमेल है ए या है तारकेश्वरपुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ ले सुखमनिया प्रजापति मधुसूदन प्रजापति झिलमिल प्रजापति दक्ष प्रजापति कुंती मंगलराम और रिद्धि सिद्धि प्रजापति संगे संगे बंजारी डांड बैकुंठपुर ले लिखता है अनीता राहुल पारुल ऋतु लिखता है कि 1 मई श्रमिक दिवस में बातचीत हमन सुनें घर गुसाइन कार्यक्रम में हमला बढ़िया लागिस और हमार धरोहर में छत्तीसगढ़ राज्य के धरोहर मल्हार कर बारे में हमन जानें जो हमार बर बहुत नवा रहिस हमन नहीं सुने रहें और हमार धरोहर में ऐसे ऐसे जानकारी लान था कि अच्छा नवा नवा रहल जिला हमन ने जानत रथी वैसने जगह जगह के और मंदिर मन के जानकारी हमन सुनथी तो हमन ला बढ़िया लागिल और ऐसन जो भी जानकारी हमन नवा जानती तो लग कहूँ हमन लिखियो लेथी और बढ़िया लागिल कि नवा नवा जानकारी हमन ला एक कार्यक्रम कर मारे भाई भेटा आता है एक कार्यक्रम कर माध्यम से हमन ला भेटा आता है और लोकगीत ही बढ़िया बढ़िया सुना था तो यू हर बढ़िया लागिल तो लाली दीदी जो हमार धरोहर में जानकारी दे रहीन तो एक बार ढेरे ढेरे धन्यवाद इसने घर को साइन कार्यक्रम ले भाई गीत हमन सुनत रहब जुड़े रहब एला कहती और हमार पसंद के ये गीत हवे भोजपुरी तो एला सुनई हाँ
1: मोला तोरे बिन भावे नहीं।

0: बढ़िया हमन छत्तीसगढ़ी गीत सुनेन विजय सिरदार और संगता कर गाल रहीस। और देखिए अब जो ईमेल आई सा है ये आ है भगवान पुर अंबिकापुर ले उर्मिला बबलू सुभी केदारपुर अंबिकापुर ले रेखा रजनी आदि साधना और इनकर परिवार के जमोझे लिखता है कि 1 तारीख 4 तारीख और 6 तारीख के घर गोसाइन ला हमन सुनेन हमन ला बढ़िया लागिस ये कार्यक्रम ला हमन सुनथी। और सरगुजिया बोली में सब जे गुरतुर अपन गोटी आते और रिकिम रिकिम के जानकारी ला भी लानते हमन ला बहुत बढ़िया लागेल। और हमार गांव गवई कर भी जो बहनी मन सुनत होही तो मन ला भी बढ़िया लागत होही कि भाई अपन सरगुजिया बोली में कार्यक्रम ला सुनत है। और जानकारी भी जो रथे तो रिकिम रिकिम के रथे कभो भाई वकील बहनी जग तो कभी डॉक्टर बहनी जग हमन गोट सुनथी और कभों कभों भाई और नवा नवा जानकारी भी सुनथी। और गोट बात ये जो कार्यक्रम रहले में बढ़िया बढ़िया गीत भी रहते तो हमन ला बढ़िया लागते तो ये इतना बढ़िया कार्यक्रम पर सब झेला हमन धन्यवाद देहती। तो भाई हमर कति ले भी ढेर धन्यवाद है कि कार्यक्रम ला सुनत हन और अपन विचार ला लिखत हन लेगी अपन पसंद कर गीत सुनी।
1: मैं ना कहाँ भुलाए मुर्मा।

अब हमर जो संगी मन आए हैं, अजय तो हमन सुनन भोजपुरी गीत हमर संगी मन कर पसंद का। अजय और संगी मन आए हैं थोड़कुन बेरा बाची सा है, बोरी पारा ले आए हैं शशि कमल रीना और बोरी पारा अंबिकापुर ले ही आए हैं हमर संगी मन रंजना श्वेता लिखता है कि 8 तारीख के कार्यक्रम में हमर धरोहर में हमन सरगुजा के पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य कला के ऊपर जानकारी सुनन और ये जानकारी हमन ला बढ़िया लगी कि भाई हमन यही सरगुजा में रथी और बहुत सारा ऐसा जानकारी आ है सांस्कृतिक, चाहे तो नाच गान के हो चाहे आओ हो, गोदना कर बारे में भी बताया रहा और यहाँ कर बांस से जो बनाते हो कर बारे में भी हमार धरोहर में हमन सुने रहन और जम्मू जात के बारे में हमन ला सुन के बढ़िया लागल कि हमार सरगुजा के बहुत अच्छा अच्छा पारंपरिक चीज़ है जिला हमन सुनती जानती तो बढ़िया लागते और गीत भी हमन ला बहुत बढ़िया लागी। सो 11 मई के हमन ला आराधना बहन से जो सुनें पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर भेंटवार्ता बहुत अच्छा जानकारी बताई ना, एक ठन गोट बहुत अच्छा कहिन कि भाई हमन ला अपन से खुद से पहल

हमर संगी मन कर पसंद करे बढ़ियन हमन देवी भजन सुनें अब एक संगे संगे हमर जाए कर बेरा हुआ है तो बस यही कहब कि हमर कार्यक्रम ला सुनत रही और कार्यक्रम में अपन विचार ला भेजत रही। अब रमा बहनी है चलत है फिर भेटबो। राम राम जय जोहार।

अभी आप ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर गोसाइन सुन रहे थे। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी अंबिकापुर से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। श्रोताओं, ईमेल की गूंज कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे गायक मनहर उदास की। आज उनके जन्मदिन पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इनके गाए फिल्म आप तो ऐसे न थे कि इस गीत से। इसे लिखा है निदा फाजली ने और संगीत उषा खन्ना का है। इस गीत की फरमाइश भेजी है आप सभी श्रोताओं ने टैगोर नगर नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। इसी गीत को सुनना चाहते हैं धरसदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा, श्रीमती सुनीता पटवा, हर्ष कुमार।

पटवा, विनीत कुमार, सुमारी कृष्टि पटवा, सावरगांव महाराष्ट्र से रघुनाथ नारे, जिला अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, ऐशा, सबिया, अनस और रेहान। इसी गीत की फरमाइश भेजी है विक्रम नगर दिल्ली से सौरभ शाह और नीलिमा शाह, दुर्गा कॉलोनी हासी से राजमिगलानी, बबीता, सुभाष योगी, बब्लू डब्लू। महाराष्ट्र से हमें मेल किया है पी एस नावकर, निर्मला, विशाल और उनके बहुत सारे साथियों ने, नीतीश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, लखन लाल, आप सब ने मेल किया है पलारी से, कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, मन्नत, गुरकिरत राहुल, गुरशबद सिंह राहुल, नई दिल्ली से श्रुति और किरण, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराजा, आज़ाद नगर लक्सर से हमें मेल करते हैं। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर कार्यक्रम का ये गीत मनहर उदास की आवाज़ में।

श्रोताओं, आकाशवाणी अंबिकापुर से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। ईमेल की गूंज कार्यक्रम में आप हमें मेल कैसे कर सकते हैं, इस विषय में हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। ईमेल की गूंज में अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर जाएं। वहां प्रोफाइल में सबसे पहले ऊपर पिन किए गए पोस्ट को देखें। उस पोस्ट में दिए गए लिंक पर क्लिक करते ही गूगल फॉर्म खुल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपनी फरमाइश हम तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। आपके द्वारा भेजे गए फरमाइश को हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके लिए ज़रूर प्रस्तुत करेंगे। पर ध्यान रखिएगा कि ये लिंक सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही चालू रहेगा और इसी बीच आप अपनी फरमाइश हमें भेज सकते हैं। और अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं मनहर उदास और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म अभिमान का गीत। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और संगीत SD बर्मन का है। इसे फरमाइश किया है आप सभी ने देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार निभवानी, संगीता आकाश निभवानी, सागर, याशी, हनी, पूजा, सीता और उनके परिवार के सभी सदस्य। इंदिरा चौक तखतपुर से मिश्रीलाल

विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, मजनू का टीला से कमल बलूजा, मधु बलूजा, सागर, उमंग मलिक, आकाश और माही मलिक, तेलंगाना निजामाबाद से हमें मेल करने वाले हमारे श्रोता हैं शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीमुन्ना और दानिश आसिफ शेख, मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति कुमार, डिकेश साहू ने हमें मेल किया है रसेड़ा से, गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र रौनक सेन, रायपुर से नीलू मेघ, नीलम, डॉक्टर वंदना और कुमार बिट्टू कुमार। इसी गीत की फरमाइश भेजी है दिल्ली शहर से आसमा परवीन, आसमा और वली भाई अंसारी, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर ये अभिमान फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मनहर उदास की आवाज़ में।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अगले गीत की फरमाइश भेजी है आप सभी श्रोताओं ने। नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से डॉक्टर राकेश मधुलता और प्रांजल, सूरतगढ़ से पिंकी शोभा, अनिल कौशिक, पारितोष आशुतोष, हनुमानगढ़ राजस्थान से सुल्तान सिंह, भूपेंद्र सिंह, यहीं से नरेश वर्मा, कुंदन कटारिया, रोहिताश और श्रीपाल शर्मा, कोटा से कविता शर्मा, हरिओम शर्मा और बेबी प्राहिता, शिवपुरी से अरुण जैन, मोनिका जैन, पुणे से अर्चना साने। इसी गीत की फरमाइश भेजी है नंद कुमार ठाकुर, प्रमीला ठाकुर, प्रियंका, दीपक, खुशबू, ज्योति ठाकुर ने नवापारा से, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, रानीगंज बंगाल से रवि और इंदर, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार, भगत, श्वेता, किसु, तासु, अर्णव और सत्यम, बलकरण वर्मा, अंजलि, ज्योति, प्रहलाद वर्मा, ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला से, नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल, छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप और टुकटुक जाटव। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं त्रिदेव फिल्म का ये गीत मनहर उदास और अलका याग्निक की आवाज़ में। बोल आनंद बख्शी के हैं और संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: साथियों, आज की ईमेल की गूंज की इस महफिल में उस आवाज को हम आपको सुनवा रहे हैं जिसने गजलों को नरमी दी, गीतों को मिठास दी और दिलों को एहसासों से भर दिया। जी हाँ, मनहर उदास के गाए कुछ गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। मनहर उदास एक ऐसा नाम जिनकी आवाज़ में अपनापन है, दर्द है और एक अद्भुत सुकून भी है। आज इन्हीं के गाए कुछ गीत हम आपको सुनवा रहे हैं और अगला गीत भी इन्हीं की आवाज़ में है। इनके साथ गाया है आनंद कुमार और सी कंचन ने। सुनते हैं कुर्बानी फिल्म का गीत, बोल इंदिवर के हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। और इस गीत को सुनने के लिए हमें ईमेल किया है आप सभी ने, देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश कमलेश, गन्नूलाल रजक, मुरली छत्री, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह और कुशल शाह ने हमें मेल किया है। नेपानगर मध्य प्रदेश से, बुड़गहन छत्तीसगढ़ से, राम दुलारी प्रजापति, राम शरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला और शशिकांता प्रजापति, अनुजनगर जिला सूरजपुर से चंद्रभान राजवाड़े, बबीता धिया राजवाड़े, काव्या और मंजू राजवाड़े। इस गीत की फरमाइश भेजी है दुल्हापुर के हमारे श्रोता हैं मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष, सोनी, मोहिनी, रीतिक और बलबीर सिंह। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर ये गीत।

कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं अमृत फिल्म का गीत। मनर उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज में आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और इसे सुनने के लिए हमें ईमेल किया है आप सभी ने। महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला और ओम, दतेंगी से हीरामणि पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि नोखीलाल वर्मा, आदर्श सार्थक, अलौकिक चंसौलिया, जिला जालौन उत्तर प्रदेश से, जेल रोड से लाल बाबू दीवाना, उमर राज और दिव्या भारती, आप सबने मेल किया है दिल्ली से, लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू, पंकज और तिरुपति साहू, इस गीत की फरमाइश भेजी है उदयपुर से जीवनधर सिंह पैकरा, घूर्णी पैकरा, करिश्मा पैकरा, सोमार से कलेश्वर सिंह, सुखराम पैकरा, हीरामणि पैकरा और ऐश्वर्या पैकरा ने।

0: इसी गीत के साथ फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल की गूंज समाप्त होता है। ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी देर में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। CBSE ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और IPL क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगढ़

0: गठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्वास मत हासिल कर लिया है। एडप्पाडी पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। एक रिपोर्ट।
1: लोक निवास में आयोजित एक सादे समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने मुख्यमंत्री और आज शपथ लेने वाले दो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव शरद चौहान ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को पढ़कर सुनाया जिसमें मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। समारोह के बाद श्री रंगासामी पुदुचेरी विधानसभा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुदुचेरी को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी। रंगासामी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी है। अन्य मंत्रियों, विभागों और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सरकारी सचेतक की नियुक्ति को लेकर एनडीए में विचार विमर्श जारी है। बिबिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के 5 अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौदा सीट से विजयी आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रजीनगर सीट से भी जीत हासिल की है। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। राज्य में फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान होना है। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव ने मंत्री परिषद के सदस्यों से राष्ट्रीय हित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष CBSE की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकीय विषयों की परीक्षाएं

0: 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। सीबीएसई ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
1: श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये लेख दर्शाता है कि पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देश भर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर भी निर्णायक समाधान प्रदान करना है, जिसमें पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े, उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रभदीत वांछित था। इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सह आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय, सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। वे प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,821 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर

0: बाजार के आज दोपहर के कारोबार में आधा प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली। सेंसेक्स 403 अंक बढ़कर 74,962 जबकि निफ्टी 146 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर हर साल पहली जून के आसपास केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के पांचवें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में 21-9, 21-12 से सिर्फ 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली शुल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदाम्बी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो केन यू को आसानी से 21-14, 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे की सू ली योंग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराउका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की सेंगमिन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। अन्य चार मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। CBSE ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी अंबिकापुर से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ पर और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे गैर फिल्मी गीतों और गज़लों का कार्यक्रम गीत गंधा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हिना त्रिपाठी के गाए इस गीत से। इसे लिखा है माया शर्मा ने।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: गीत गंधा कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं यह पारंपरिक गीत पंकज उधास की आवाज में।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: गीत गंधा कार्यक्रम आप आकाशवाणी अंबिकापुर से सुन रहे हैं। कार्यक्रम के अगले पायदान पर आपको सुनवाते हैं अदनान सामी की आवाज में ये गीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: गीत गंधा कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे चंदन दास की गाई गजल। शायर हैं डॉक्टर बशीर बद्र। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की।

अभी आपने चंदन दास की गई गजल सुनी, शायर थे डॉक्टर बशीर बद्र। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं चित्रा सिंह की गई गजल

चित्रा सिंह की गाई इस गजल के साथ ही गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सभा समाप्त करने से पहले हम आपको आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में बता दें। रात 9:30 पर कार्यक्रम चर्चा का विषय है, हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन सुनेगा रात्रि 10:30 पर और फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल की गूंज आपके लिए लेकर आएंगे रात्रि 10 बजे। सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात 8 बजे। किसान अपना कार्यक्रम चौपाल सुनते हैं शाम 7:20 पर। इसमें आज आप सुनेंगे सामयिक चर्चा के अलावा किसानों और कृषि विशेषज्ञों के स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम किसान संध्या। लोकगीतों के कार्यक्रम गोधुली में शाम 6:20 पर सुनेगा साधारण दास और साथियों के गाए कुछ सरगुजिया गीत और सादरी गीत का आनंद आप ले सकते हैं अमृत मिंज और साथियों के गाए। ये कार्यक्रम गोधुली है। युवाणी में शाम 5:30 पर सुनेगा कहानी पाठ और फिल्म।

संगीत प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ आप सुन सकते हैं शाम 5 बजे। ये तो थी जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। श्रोताओं, दोपहर के 3 बज चुके हैं। हमारी आज की सभा मीडियम वेव पर यहीं संपन्न होती है। अपनी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव पर और एफएम बैंड पर हम आपसे शाम 5 बजे फिर मिलेंगे। अभी आप दिल्ली एफएम गोल्ड के कार्यक्रमों को सुन सकते हैं एफएम बैंड पर।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गुट।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये गणेशपुर, दलदली, मदनगर, धर्मपुर, गौरा, भरदा, सिंघरा, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर, रामानुजगंज और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 27 है। ये मिंढारी, प्रेमनगर, भगवानपुर, नवापारा, चिनिया, महावीरगंज, रामपुर, कनक कुंदीकला, जामदोहर, अखोरा, बदौली, जवा खाड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के उदयपुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 16 है। ये लक्ष्मणगढ़, जगन्नाथपुर, सायर, ससकालो, कंडराजा, बैरडांड, दातीढाब, घटगांव, उरंगा, बरिमा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव और कांसाबेल में हाथियों की कुल संख्या 34 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, चरईमारा, रानी कोम्बो, खड़ा माचा, कुकुरगांव, कुदराझरिया, साजा पानी, तीता पाकेर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बाकारुमा, कापू और बोरो में हाथियों की कुल संख्या

0: संख्या 136 है। ये गिरसा, पोटिया, आमगांव, रुपुंगा, तेजपुर, बेहरामार, बनहर, औरानारा, पुरुंगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वनमंडल के कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये कलमी टिकरा, गिरारी, गीत कुंवारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वनमंडल के जडगा और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, डंग बोरा, कोदवारी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये बंगूरसिया, नवागांव, चक्रधरपुर, जुनवानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़ बिलाईगढ़ वनमंडल के गोमरडा अभ्यारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये आमाकोनी, नवापारा, सरायपाली, गंधरा चुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये कोठारी, पकरीत, ताल दादर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट, तौरेंगा और सीता नदी में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मुहकोट, बहीगांव, लिखमा, जोगी बिरदो, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमार हाथी हमार गोट।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमार हाथी हमार गोट। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5:06 हुए हैं। पेश है भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अनुराधा पौडवाल की गाय इस भजन के साथ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। कार्यक्रम में आप सुनिए अनुराधा पौडवाल के स्वर में ये भजन। शब्द रचना है आशीष चंद्र और सूरज उज्जैनी की। संगीत बनाया है शंकर सेन और दुर्गा प्रसाद ने।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कार्यक्रम भजन संध्या में अब सुनिए अनूप जलोटा के स्वर में ये भजन। शब्द रचना है पंडित किरण मिश्रा के और धुन बनाया है शंख नील ने।

इसी भजन के साथ कार्यक्रम भजन संध्या आज यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रागिनी एक बार फिर से हाजिर हूँ आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी लेकर, जहाँ बातें होती हैं आपकी, हमारी और आज की जनरेशन की। दोस्तों, आज का विषय शायद हर उस इंसान से जुड़ा है जो दिन में कम से कम एक बार सोशल मीडिया ज़रूर खोलता है। कंपैरिजन कल्चर, सुबह उठते ही फ़ोन, रात को सोने से पहले फ़ोन, और बीच में पूरी दुनिया की ज़िंदगी हमारी स्क्रीन पर। किसी का फॉरेन ट्रिप, किसी की परफेक्ट बॉडी, किसी की लग्जरी लाइफ, किसी के रिलेशनशिप गोल्स, और फिर अचानक अपनी ज़िंदगी छोटी लगने लगती है। कभी नोटिस किया है, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते हम अननोइंगली अपनी ज़िंदगी की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। हम सोचते हैं उसके पास इतना सब है, मेरे पास क्यों नहीं, वो इतना खुश कैसे है, मैं पीछे क्यों रह गया। लेकिन दोस्तों, जो हम स्क्रीन पर देखते हैं वो पूरी ज़िंदगी नहीं होती, वो बस कुछ सेलेक्टेड मोमेंट्स होते हैं जिन्हें फ़िल्टर और एडिटिंग के साथ दुनिया के सामने दिखाया जाता है। आज कंपैरिजन इतना बढ़ गया है कि लोग अपनी खुशी इन्जॉय करने से ज़्यादा दूसरों की खुशी देखकर दुखी हो जाते हैं। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, सेल्फ डाउट बढ़ने लगता है और इंसान खुद को इनफ समझना छोड़ देता है। सबसे डेंजरस बात जानते हैं क्या है? अब लोग ज़िंदगी जीने से ज़्यादा उसे ऑनलाइन परफेक्ट दिखाने में लगे हैं। डिनर से पहले फ़ोटो, ट्रैवल से पहले रील, खुश होने से पहले स्टोरी, और इस रेस में कहीं ना कहीं मेंटल पीस खोती जा रही है। दोस्तों, हर इंसान की ज़िंदगी का टाइमिंग अलग होता है। किसी की सक्सेस जल्दी आती है, किसी की थोड़ी देर से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे हैं। सोशल मीडिया इंस्पिरेशन देने के लिए बना था, लेकिन कंपैरिजन ने उसे प्रेशर बना दिया है।

याद रखिए, आपकी वैल्यू फॉलोअर्स, लाइक्स या व्यू से तय नहीं होती। असल ज़िंदगी में आपका व्यवहार, आपकी मेहनत और आपकी सोच ही आपकी पहचान है। इसीलिए कभी कभी फ़ोन साइड में रखिए, खुद के साथ टाइम बिताइए, अपनी प्रोग्रेस देखिए और ख़ुद को अप्रिशिएट करना सीखिए। क्योंकि ज़िंदगी कॉम्पिटिशन नहीं है दोस्तों, हर इंसान अपनी अलग कहानी लिख रहा है। कंपैरिजन छोड़िए, कॉन्फिडेंस अपनाइए और ख़ुद को किसी फिल्टर से नहीं, अपने दिल से देखिए। दूसरों से खुद को तौलते तौलते हम अपनी पहचान भूल गए, सोशल मीडिया की चमक में दिल के सपने धुल गए। हर चेहरा यहाँ मुस्कुराता है, पर हर कोई खुश हो ये ज़रूरी नहीं। तुलना छोड़ो, खुद को अपनाओ, क्योंकि तुमसे बेहतर कोई और नहीं। जी हाँ दोस्तों, मुस्कुराते रहिए, रियल रहिए और याद रखिए, आप जैसे हैं वैसे ही काफ़ी हैं। तो बातों के साथ साथ समय हो चुका है एक प्यारे से गीत का, तो आइए सुनते हैं अभिजीत भट्टाचार्य और श्रेया घोषाल की आवाज़ में फिल्म बेशरम से ये प्यारा सा गीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए चलते हैं हमारे अगले क्रम समय की दास्तान की ओर।

दोस्तों, इतिहास के पन्नों को पलटकर एक बार फिर से हाजिर हैं हम समय की दास्तान में। आज के इस क्रम में हम बात कर रहे हैं उस स्थान की जो अपने आप में सुकून है। गंगा की लहरों में बहती शांति, मंदिरों की घंटियों में घुली आस्था और शाम की गंगा आरती में जगमगाता हरिद्वार। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं हरिद्वार की। ये सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक एहसास है। दोस्तों, हरिद्वार वो जगह है जहाँ आस्था और मोहब्बत दोनों साथ चलते हैं, और शायद इसीलिए ये गीत यहाँ के माहौल से इतना जुड़ा हुआ महसूस होता है। तो आइए गंगा की लहरों और पहाड़ों की वादियों के बीच महसूस करते हैं वही खूबसूरत एहसास और सुनते हैं अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाज़ में फिल्म केदारनाथ से ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं क्रम समय की दास्तान में हरिद्वार के बारे में। हरिद्वार का नाम आते ही सबसे पहले याद आता है वो मनमोहक हर की पौड़ी, जहां शाम की गंगा आरती देखने दूर दूर से लोग आते हैं। हजारों दियों की लौ, गंगा की बहती धारा और हर हर गंगे की गूंज, ऐसा लगता है जैसे समय कुछ पल के लिए थम गया हो। इतिहास की बात करें तो हरिद्वार हिंदू धर्म के साथ सबसे पवित्र तीर्थों में से एक माना जाता है। कुंभ मेले का सबसे बड़ा आयोजन भी यहीं होता है, जहां करोड़ों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं। लेकिन दोस्तों, हरिद्वार सिर्फ मंदिरों और घाटों तक सीमित नहीं, यहां की सुबह सुकून देती है। यहां की हवा में एक अलग ही शांति महसूस होती है। कई लोग यहां खुद को खोजने आते हैं और शायद खुद से मिलकर लौटते हैं। तो दोस्तों, हरिद्वार के बारे में और भी बातें करेंगे, पर उससे पहले आइए सुनते हैं मोनाली ठाकुर की आवाज़ में फिल्म दम लगा के हईशा से ये खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, आज हम समय की दास्तां में चल पड़े हैं उस नगरी की ओर जहां हर सांस में आस्था बहती है, देवभूमि उत्तराखंड की पावन नगरी हरिद्वार। कहते हैं हरि का द्वार यानी भगवान तक पहुंचने का रास्ता, और शायद इसी वजह से हरिद्वार सिर्फ एक शहर नहीं, एक एहसास है, एक विश्वास है। हरिद्वार के खूबसूरत नज़ारों को देखकर दिल खुद ब खुद गीत गुनगुनाने लगता है, और जब बात हो हरिद्वार की तो मन में एक गीत बड़ी नरमी से उतरता है, ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमान। तो दोस्तों, इसी के साथ आइए सुन लेते हैं SP बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की आवाज़ में फिल्म रोज़ा से ये खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, हरिद्वार सिर्फ गंगा का शहर नहीं, ये भगवान शिव की भक्ति में डूबी हुई वो पावन नगरी है जहां हर गली में हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। कहते हैं हिमालय की गोद से निकलकर जब माँ गंगा धरती पर आती है तो हरिद्वार में उनकी धारा शिव की ऊर्जा और आस्था से और भी पवित्र महसूस होती है। दोस्तों, हरिद्वार से आगे केदारनाथ की यात्रा भी शुरू होती है जहाँ हर कदम पर शिव का एहसास मिलता है। इसीलिए यहाँ आने वाला हर इंसान कुछ पल के लिए दुनिया की भागदौड़ भूल जाता है और खुद के भीतर की शांति से मिल पाता है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम के अंत में अरिजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू से ये गीत।

दोस्तों, समय बदलता रहता है, सदियां गुजर जाती हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जो हर दौर में लोगों को सुकून देती है, और हरिद्वार उन्हीं में से एक है। इसी खूबसूरत एहसास के साथ समय की दास्तान में आज बस इतना ही। अगले क्रम में हम होंगे हाजिर एक नई जगह और नई कहानी के साथ। तो इसी के साथ आज का क्रम समय की दास्तान बस यहीं तक।

समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। जाते जाते आपको बताते हैं कल की युवाणी के मुख्य आकर्षण। कल आप सुनेंगे युवा सोच एक नए विषय पे और फरमाइशी क्रम महफिल। इसी के साथ आज की युवाणी से दीजिए इजाजत अपनी दोस्त रागिनी चौबे को। नमस्कार।

0: अभी युवा श्रोताओं के लिए युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6 बजने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। ग्रेड ए धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,461 रुपए प्रति क्विंटल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4,023 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा के लिए 2,900 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर दाल के लिए 8,400 रुपए प्रति क्विंटल होगा। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
2: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नॉन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 5,000 रोजगार सृजित होगा। ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल को भी सशक्त करेगी। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए एक क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव CV जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने वांछित नार्को आतंकवादी इकबाल सिंह उर्फ शेरा को गिरफ्तार कर लिया है। लंबे राजनयिक और कानूनी प्रयासों के बाद पुर्तगाल से उसके प्रत्यर्पण में सफलता हासिल की गई है। 2020 से फरार इस आतंकवादी को पाकिस्तान समर्थित नार्को आतंकी

0: मामले में गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतरराज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में आज शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं बेंगलुरु जीत दर्ज कर शीर्ष पर आना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विचार बिंदु का पुनः प्रसारण। विषय है जिज्ञासा। संकलन एवं वाचन स्वर है राजीव दुबे के।
2: मनुष्य को यदि अन्य जीवों से अलग और श्रेष्ठ बनाती है तो वह है उसकी जिज्ञासा। यही जिज्ञासा उसे सोचने, समझने, खोज करने और नई नई उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए सदैव प्रेरित करती रही हैं। बचपन में जब कोई बालक बार बार पूछता है, ये क्या है, ऐसा क्यों होता है, आसमान नीला क्यों दिखता है, तभी उसके भीतर ज्ञान का पहला दीपक जलता है। वास्तव में जिज्ञासा केवल प्रश्न पूछने की आदत नहीं बल्कि सत्य को जानने और समझने की तीव्र इच्छा है। यही इच्छा मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। जिज्ञासा मानव जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। यदि मनुष्य के भीतर कुछ नया जानने की चाह न होती तो न तो विज्ञान का विकास होता, न कला और साहित्य का विस्तार, और न ही सभ्यता इतनी आगे बढ़ पाती। आदिकाल का मनुष्य जब आग, पहिया और खेती की खोज कर रहा था तब उसके पीछे जिज्ञासा ही कार्य कर रही थी। उसने प्रकृति को देखा, घटनाओं को समझने का प्रयास किया और धीरे धीरे जीवन को बेहतर बनाया। आज अंतरिक्ष में पहुँचने से लेकर समुद्र की गहराइयों तक अनुसंधान करने का आधार भी मानव की यही जिज्ञासा है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के अनेक महान आविष्कार जिज्ञासा ही की देन है। वैज्ञानिक एडिसन हजारों बार असफल हुए पर उनकी जिज्ञासा और खोज की इच्छा ने उन्हें बल्ब का आविष्कार करने में सफल बनाया। आर्यभट्ट, गैलीलियो, आइंस्टाइन और सीवी रमन जैसे महान वैज्ञानिकों की उपलब्धियों के पीछे भी गहरी जिज्ञासा ही थी। यदि वे सामान्य घटनाओं को देखकर प्रश्न न करते तो संसार अनेक खोजों से वंचित रह जाता। जिज्ञासा केवल विज्ञान तक सीमित नहीं है, साहित्य, संगीत, कला और दर्शन के क्षेत्र में भी इसका अत्यंत महत्व है। एक कवि प्रकृति को देखकर उसके सौंदर्य का रहस्य जानना चाहता है, एक चित्रकार रंगों के माध्यम से भावनाओं को व्यक्त करने की जिज्ञासा रखता है और एक दार्शनिक जीवन के सत्य को समझने का प्रयास करता है। इसी कारण जिज्ञासा को सृजन की जननी भी कहा जाता है। विद्यार्थी जीवन में जिज्ञासा का विशेष महत्व होता है। जो विद्यार्थी केवल परीक्षा पास करने के लिए पढ़ता है उसका ज्ञान सीमित रह जाता है। जिज्ञासु छात्र अपने शिक्षकों से प्रश्न पूछते हैं, पुस्तकालय में नई पुस्तकें पढ़ते हैं और हर विषय को गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। यही आदत उन्हें आगे चलकर सफल और आत्मविश्वासी बनाती है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य भी केवल जानकारी देना नहीं बल्कि जिज्ञासा को जागृत करना है। आज के वैज्ञानिक और तकनीकी युग में जिज्ञासा का महत्व तो और बढ़ गया है। इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसी उपलब्धियां मनुष्य की असीम जिज्ञासा का परिणाम हैं। चंद्रयान और मंगलयान जैसी परियोजनाएं इस बात का प्रमाण हैं कि जब मनुष्य के मन में कुछ नया जानने की तीव्र इच्छा होती है तो वह असंभव को भी संभव बना देता है। भविष्य की नई खोजें भी उन्हीं लोगों द्वारा की जाएंगी जिनके भीतर प्रश्न करने और सत्य जानने का साहस होगा। हालांकि जिज्ञासा का सही दिशा में होना भी आवश्यक है। यदि जिज्ञासा केवल दूसरों के निजी जीवन में हस्तक्षेप करने या गलत कार्यों की ओर बढ़ जाए तो वह हानिकारक बन सकती है। इसीलिए जिज्ञासा का उद्देश्य ज्ञान, विकास और मानव कल्याण होना चाहिए। संतुलित और सकारात्मक जिज्ञासा व्यक्ति को महान बनाती है।

0: जबकि अनुचित जिज्ञासा उसे भटका सकती है। जिज्ञासा मनुष्य को विनम्र भी बनाती है। जब व्यक्ति नई नई बातों को जानता है, तब उसे एहसास होता है कि संसार कितना विशाल है और उसका ज्ञान कितना सीमित। यही भावना उसे निरंतर सीखने के लिए प्रेरित करती है। महान विद्वान भी स्वयं को जीवन भर विद्यार्थी मानते हैं। अंततः कहा जा सकता है कि जिज्ञासा ही ज्ञान, प्रगति और सफलता की मूल शक्ति है। यह मनुष्य को आगे बढ़ने, नई राहें खोजने और अपने जीवन को सार्थक बनाने की प्रेरणा देती है। जिज्ञासा के बिना जीवन नीरस और स्थिर हो जाता है, जबकि जिज्ञासा से भरा मन हर दिन कुछ नया सीखने और समझने की कोशिश करता रहता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु। विषय था जिज्ञासा। संकलन एवं वाचन स्वर थे राजीव दुबे के। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक छत्तीसगढ़ी समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के
2: कुछ ही पलों में आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
3: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग मीनल तिवारी के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। पश्चिम एशिया संघर्ष ले पैदा हुए वैश्विक ऊर्जा संकट ला देखत प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ह अपन काफिला मा करिन कटौती। केंद्रीय मंत्रिमंडल ह 14 खरीफ फसल के न्यूनतम समर्थन कीमत मा बढ़वार ला दे है मंजूरी। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE है आज कक्षा 12 के बोर्ड परीक्षा के नतीजा करिस घोषित। अब समाचार विस्तार ले। पश्चिम एशिया संघर्ष ले पैदा हुए वैश्विक ऊर्जा संकट ला देखत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकार मन है ईंधन बचत उपाय तेज कर दे है। वैश्विक ईंधन कीमत में बढ़वार के सेती प्रधानमंत्री है हाले में घरेलू दौरा पर अपन काफिला के आकार छोटा कर दे है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के जरूरी सुरक्षा व्यवस्था बरकरार रही। उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घलो अपन काफिला के आकार घटा के आधा ले कमती कर दे हैं। एति छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका हा अपन आधिकारिक काफिला मा चलैया गाड़ी के संख्या कमती करीन है। श्री डेका हा आम लोगन ले मितव्ययता बरते के आह्वान करीन है। राज्यपाल हा किहिन की सामूहिक जिम्मेवारी और संसाधन के संतुलित उपयोग ले ही हमर देश भविष्य के चुनौती के प्रभावी ढंग ले सामना कर सकी। इही बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय घलो प्रदेशवासी मन ले ईंधन और संसाधन के कमती उपयोग करे के अपील करीन है। उमन किहिन की सबो सरकारी गाड़ी ला चरणबद्ध तरीका ले इलेक्ट्रिक गाड़ी मा बदले के काम शुरू करे जाही। मुख्यमंत्री है बतइन की उमन अपन काफिला मा गाड़ी के संख्या मा कटौती करे के फैसला ले ही। केंद्रीय मंत्रिमंडल है विपणन सीजन 2026-27 बर 14 खरीफ फसल के न्यूनतम समर्थन कीमत में बढ़वार ला मंजूरी दे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के बैठका के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हकीन की सरकार है किसान मन ला उखर उत्पाद के लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करे बर खरीफ फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दे हैं। उमन किहिन की खरीफ सीजन पर किसान मन ला अनुमानित 2,60,000 करोड़ रुपया के भुगतान करे जाही। उमन यहू किहिन की ये सीजन में 824 लाख मीट्रिक टन ज्यादा के फसल बिसाए जाही। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE है आज कक्षा 12 के बोर्ड परीक्षा के नतीजा घोषित कर दे है। SO CBSE के कक्षा 12 के विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी विषय परीक्षा 17 फरवरी ले 10 अप्रैल तक राखे गई रही। CBSE है बताया है कि 17,68,000 ले ज्यादा विद्यार्थी परीक्षा में संघरीन, जेमा 15,07,000 ले ज्यादा विद्यार्थी पास हुए हैं। एसओ के कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्र अपन परिणाम CBSE के आधिकारिक वेबसाइट और उमंग ऐप में देख सकते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय CBSE 12वीं बोर्ड के परीक्षा में सफल हुए विद्यार्थी मन ला बधाई और शुभकामना दिन है। केंद्र सरकार है सोना और आने कीमती धातु में आयात शुल्क बढ़ा दे है, जो उन आज ले प्रभावी हो गए है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय है कहे है कि सोना और चांदी में 5% और प्लेटिना में 5.4% आयात शुल्क लगी। एक पहली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है पश्चिम एशिया में चलत संकट ला देखा लोगन ले सोना बिसाले बाँचे के अपील करे रहीन। रायपुर के प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के बैठका राखेगी। बैठका में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री

श्री शिवप्रकाश, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव समेत कतकुन बड़का अधिकारी मौजूद रहीन। बैठक मान नक्सल उन्मूलन मा प्रस्ताव पारित करेगी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग कोती ले आवास और पर्यावरण विभाग के सहायक संचालक योजना के 21 पद मा भर्ती बर अंतिम चयन परिणाम जारी कर दे गए है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी यकीन कि ये भर्ती सिर्फ खाली पद के पूर्ति नो है, भलुक छत्तीसगढ़ के सुव्यवस्थित वैज्ञानिक और दूरदर्शी शहरी विकास के दिशा मा एक महत्वपूर्ण कदम हरे। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो। अब आगू बढ़बो बांचे समाचार कोती। बालोद जिला में मिट्टी धसे ले 3 झीन मजदूर के दबके मौत हो गए, जिमा एक महिला घरों शामिल है। ये हादसा काली संझा दल्ली राजहरा नगर में वो बेरा हुई जब मजदूर बीएसपी के सीवरेज पाइप बिछाए बर खुदाई करत रही ने। इस दौरान औचक माटी के धसे ले वहां काम करत मजदूर मलबा में दबके उखर मौत हो गए। घटना के बाद गुस्साए लोगन मन आरोप लगाए हैं कि काम के दौरान सुरक्षा के बने व्यवस्था नहीं करेगे रहीस। प्रशासन मामला के जाँच शुरू कर और दोषी मन के खिलाफ उचित कार्रवाई करे के भरोसा देवाइन है। दुर्ग जिला के कुम्हारी थाना क्षेत्र के खपरी में गैस सिलेंडर ब्लास्ट में एक परिवार के 4 जन के मौत के मामला में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मृतक के परिजन मल्ला 5-5 लाख रुपया के सहायता राशि दे के घोषणा करी है। ये रकम शासन के नियम के तहत मिलैया 4-4 लाख रुपया के सहायता रकम ले अलग हो ही। घटना की जानकारी मिले में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव मौका में पहुंच के वहां के स्थिति ला देखी। लोक शिक्षण संचालनालय है महासमुंद जिला के भंवरपुर के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय परीक्षा केंद्र के अध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष समेत 5 जिन कर्मचारी मल्ला निलंबित कर दे हैं। ये सब ऊपर परीक्षा संचालन में कोताही बरते के आरोप है। खबर के मुताबिक हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा के दौरान सुरक्षा और जाँच नियम के उल्लंघन पाएगी, जेखर से एक छात्र डिजिटल कैमरा लेके परीक्षा कक्ष के भीतरी प्रवेश करे मा सफल रहीस। छात्र परीक्षा कक्ष के भीतरी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया में प्रसारित कर दीस। निलंबन के बिरा ये सबो के मुख्यालय महासमुंद के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रही। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सूबेदार उप निरीक्षक संवर्ग और प्लाटून कमांडर पद के प्रारंभिक लिखित परीक्षा 12 जुलाई के होए के घोषणा करे है। ये परीक्षा इतवार के बिहनिया 10 बजे ले मंझनिया 12 बजे तक राज्य के सबो 33 जिला में होही। ये पद पर 1,37,000 ले ज्यादा अर्जी मिले रहीस। दस्तावेज और शारीरिक माप परीक्षण के बाद 63,342 उम्मीदवार परीक्षा पर पात्र पाए गए हैं। प्रवेश पत्र परीक्षा ले 15 दिन पहली आयोग के वेबसाइट मा जारी करे जाही। बीजापुर जिला में सुरक्षा बल मन माओवादी मन कोती ले लुका के राखे करीबन 65,65 लाख रुपया नकदी समेत बड़ मात्रा में हथियार गोला बारूद विस्फोटक जिनिस बरामद करे हैं। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव बताएं कि अभी तक जिला में 7 करोड़ रुपया ले ज्यादा के नगद रकम के संगे संग 8 किलो 200 ग्राम सोना घलो बरामद करे जा चुके है। नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आईपीएल T20 क्रिकेट मैच खेली जाही। ये मैच संजा 7:30 बजे ले शुरू हो ही। एकर पहले 10 मई के नवा रायपुर में खेले गए एकाने मुकाबला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मुंबई इंडियन ला हराए रहीस। आकाशवाणी रायपुर कोतिले आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में विशेष कार्यक्रम प्रसारित करे जाही। प्रादेशिक समाचार एकांश कोतिले तैयार ये कार्यक्रम के प्रसारण आज रतिया 8:15 ले हो ही। इला छत्तीसगढ़ के सबो आकाशवाणी केंद्र रिले कर ही। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पर नामांकन के काम चलत है। ये पुरस्कार खातिर 5 से 18 बच्चर आयु वर्ग के लड़का 31 जुलाई तक अर्जी दे सकत है। महिला और बाल विकास विभाग ले मिले जानकारी के मुताबिक अर्जी सिर्फ राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल ले ऑनलाइन मंजूर करे जाही। राज्य शासन प्रदेश के प्रतिभाशाली लड़का मन ले ज्यादा संख्या में अर्जी करे के अपील करी ने। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हर बच्चर राष्ट्रपति कोती ले वो लड़का मन ला दे जाते जौन मन आने आने क्षेत्र में बने प्रदर्शन करके देश के गौरव बढ़ाए हैं।
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव

सचिव संजय कुमार हा बताइन कि एनसीईआरटी और सीबीएसई हा मिलके तीसरी ले आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थी मन बर कंप्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आधारित एक ठी नवा पाठ्यक्रम शुरू करे है। उमन बताइन कि शिक्षक मन ला गर्मी के छुट्टी के दौरान प्रशिक्षण दे जाही और छुट्टी सिराए के बाद स्कूल खुले मा ये विषय के पढ़ाई शुरू हो जाही। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। पश्चिम एशिया संघर्ष ले पैदा हुए वैश्विक ऊर्जा संकट ला देखत प्रधानमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और मुख्यमंत्री हा अपन काफिला मा करिन कटौती। केंद्रीय मंत्रिमंडल हा 14 खरीफ फसल के न्यूनतम समर्थन कीमत मा बढ़वार ला दे है मंजूरी और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई हा आज कक्षा 12वीं के बोर्ड परीक्षा के नतीजा करिस घोषित। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यहीं सिरावत है। जय जोहार।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम गोधूली। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं साधारण दास और साथी के आवाज में ये धेबी भजन से,

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम गोधूली आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। कार्यक्रम में आप सुनिए अमृत मिंज और साथियों की आवाज में ये रिंजा कर्मा गीत।

इसी के साथ कार्यक्रम गोधूली आज यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में इस गीत के साथ। गीतकार हैं रश्मि सिंह और संगीतकार हैं जीत गांगुली।

कार्यक्रम माधुरी में अब सुनिए श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म हैप्पी न्यू ईयर का ये गीत। गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीतकार हैं विशाल शेखर।

कार्यक्रम माधुरी के अंत में सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म हमारी अधूरी कहानी का ये गीत। गीतकार है रश्मि विराग और संगीतकार है जीत गांगुली।

0: अरिजीत सिंह की गाई इसी गीत के साथ कार्यक्रम माधुरी आज यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:45 होने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
2: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
1: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
2: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
1: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
2: क्यों?
1: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
3: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
4: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
5: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
4: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
5: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
4: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
5: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
6: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
5: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
6: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
5: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
6: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
6: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
5: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
0: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री की ईंधन बचत से संबंधित अपील के बाद प्रदेश में राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित विभिन्न मंत्रियों ने अपने काफिले के वाहनों की संख्या में कटौती की। सीबीएसई ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि वीबी ग्राम जी विकसित ग्राम से विकसित भारत की दिशा में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। और बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए करीब 65.5 लाख रुपए नगद सहित बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार

0: भी कम कर दिया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। इधर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने भी अपने आधिकारिक काफिले में चलने वाले वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री डेका ने आम जनता से भी मितव्ययता बरतने का आह्वान किया है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी प्रदेशवासियों से ईंधन संरक्षण और संसाधनों का संयमित उपयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी शासकीय वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने की दिशा में कार्यवाही शुरू की जाएगी।
1: प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि डीजल पेट्रोल की भी खपत कम करें, सोना वगैरह की खरीदी भी कम करें, विदेश यात्रा वगैरह भी कम करें, तो उसका पालन हमने भी किया है। हमने भी अपने कारकेट में कटौती की है। आने वाले समय में हम लोग ईवी पर विशेष जोर देंगे।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। श्री वैष्णव ने कहा कि इस सीजन में 824 लाख मीट्रिक टन से अधिक फसल की खरीद की जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। इस वर्ष सीबीएसई की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थीं। सीबीएसई ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनमें 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्र अपने परिणाम सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट और उमंग ऐप पर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा है कि वीबी ग्राम जी विकसित ग्राम से विकसित भारत की दिशा में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने नवा रायपुर अटल नगर में आयोजित सेमिनार और समीक्षा बैठक में बताया कि ये व्यवस्था 1 जुलाई से देशभर में लागू की जाएगी। श्री पासवान ने कहा कि इससे ग्रामीण विकास योजनाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनभागीदारी बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि मनरेगा और पंचायत कार्यों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग, समय पर भुगतान और सामाजिक अंकेक्षण को मजबूती मिलेगी, जिससे में विकास कार्यों में तेजी आएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री आज से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर हैं। रायपुर में भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाव ठाकरे परिसर में आज भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पारित करते हुए कहा गया कि जनता ने विधानसभा, लोकसभा और नगरीय निकाय चुनावों में भाजपा को ऐतिहासिक जनादेश दिया है। पार्टी ने दावा किया कि राज्य सरकार ने मोदी गारंटी के कई प्रमुख वादे पूरे किए हैं। बैठक में नक्सल उन्मूलन पर भी प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सुरक्षा बलों की भूमिका की सराहना की गई। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सूबेदार, उपनिरीक्षक संवर्ग और प्लाटून कमांडर पदों की प्रारंभिक लिखित परीक्षा 12 जुलाई को आयोजित करने की घोषणा की है। ये परीक्षा रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक राज्य के सभी 33 जिलों में होगी। प्रवेश पत्र परीक्षा से 15 दिन पहले आयोग की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। इधर वन विभाग में वन रक्षक के 1484 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की सूची छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल को भेज दी गई है। लिखित परीक्षा की तिथि जल्द घोषित की जाएगी। इस बीच छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आवास और पर्यावरण विभाग के अंतर्गत सहायक संचालक योजना के 21 पदों पर भर्ती के लिए अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
2: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। बालोद जिले में मिट्टी धंसने से 3 मजदूरों की दबकर मौत हो गई है। मृतकों में एक महिला भी शामिल है। यह हादसा कल शाम दल्ली राजहरा नगर में उस समय हुआ जब मजदूर बीएसपी की सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के लिए खुदाई कर रहे थे। इसी

0: दौरान अचानक मिट्टी के धंसने से वहां काम कर रहे मजदूर मलबे में दब गए, जिससे उनकी मौत हो गई। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। दुर्ग जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र के खपरी में गैस सिलेंडर ब्लास्ट में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। ये राशि शासन के नियमों के तहत दी जाने वाली 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि के अतिरिक्त होगी। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा छिपाकर रखा गया करीब 65.5 लाख रुपए नगद सहित बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की हैं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि अब तक जिले में 7 करोड़ रुपए से अधिक की नगद राशि के साथ ही 8 किलो 200 ग्राम सोना बरामद किया जा चुका है। ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा और उससे जुड़े आर्थिक अपराधों पर कार्रवाई करते हुए रायगढ़ पुलिस ने एक संगठित सट्टा सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस की संयुक्त टीम ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1.2 करोड़ रुपए से अधिक की नगद राशि बरामद की है। साथ ही नोट गिनने की मशीन, मोबाइल फोन और अन्य सामग्री सहित 1.3 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति भी जब्त की गई है। आकाशवाणी रायपुर द्वारा आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा तैयार इस कार्यक्रम का प्रसारण आज रात 8:15 से होगा। इसे छत्तीसगढ़ के सभी आकाशवाणी केंद्र रिले करेंगे। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू ने सीएसएमसीएल में हुए ओवरटाइम भुगतान मामले में सीडीएल कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट एन उदय राव को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पहले ही 7 आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजे जा चुके हैं। उदय राव पर फील्ड संचालन में बिलिंग समन्वय और भुगतान की व्यवस्था की जिम्मेदारी थी। आरोप है कि वर्ष 2019 से लेकर 2023 के बीच ओवरटाइम बोनस, 4 अतिरिक्त दिवस भुगतान और सर्विस चार्ज के रूप में मैन पावर एजेंसियों को लगभग 183 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया गया था। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में कल 1-2 स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। वहीं आज शाम राजधानी रायपुर सहित कुछ जिलों में बारिश होने के समाचार मिले हैं, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से कुछ राहत मिली है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्र सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2025 के आंकड़ों में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी कम होकर 2.3% दर्ज की गई है। एनसीईआरटी और सीबीएसई ने मिलकर 3री से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए कम्प्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इच्छुक उम्मीदवार 19 मई से पहले यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा आज बिलासपुर स्थित जिला और सत्र न्यायालय में सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोक शिक्षण संचालनालय ने महासमुंद जिले के भंवरपुर स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय परीक्षा केंद्र के अध्यक्ष और सहायक केंद्र अध्यक्ष सहित 5 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। इन सभी पर परीक्षा संचालन में लापरवाही बरतने का आरोप है। महासमुंद जिले में महतारी वंदन योजना के तहत ईकेवाईसी के एवज में हितग्राहियों से राशि मांगने के आरोप में 4 सीएससी संचालकों की आईडी ब्लॉक कर दी गई है। बीजापुर जिले में डायल 112 आपातकालीन सेवा का शुभारंभ किया गया है। इस सेवा के शुरू होने से नागरिकों को आपात स्थिति में तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध हो सकेगी। और जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र कोंडागांव द्वारा कल 14 मई को कलेक्टोरेट परिसर स्थित जिला रोजगार कार्यालय में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री की ईंधन बचत से संबंधित अपील के बाद प्रदेश में राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित विभिन्न मंत्रियों ने अपने काफिले के वाहनों की संख्या में कटौती की। सीबीएसई ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि वीबी ग्राम जी विकसित ग्राम से विकसित भारत की दिशा में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। और बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए करीब 65.5 लाख रुपए नगद सहित बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडिया वेव 305.81 मीटर।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं। श्रोताओं, आइए आपको अवगत करा दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से। शाम 7:05 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। शाम 7:20 पर लगेगी ग्रामीण श्रोताओं की चौपाल, जिसमें आज आप सुनेंगे जल जीवन मिशन और धरती बचाने के पहल पर बातचीत। रात्रि 8 आप सुनेंगे सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश। रात्रि 8:15 पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर विशेष कार्यक्रम हम प्रसारित करेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। रात्रि 8:20 पर कार्यक्रम सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश का अगला भाग हम आपके लिए प्रसारित करेंगे। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। रात्रि 9:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 10 हम आपके लिए लाएंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। साथ ही रात्रि 10:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम मनभावन। श्रोताओं, ये तो थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आइए आपको अवगत करा रहे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की

कल प्रातः 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विचार बिंदु। विषय होगा बहस बनाम विवाद। संकलन एवं वाचन स्वर होंगे मृदुल गुप्ता के। कार्यक्रम रामचरितमानस का गायन आप सुनेंगे प्रातः 6:35 पर। सामूहिक सुझाव पर आधारित कार्यक्रम खेती की बात का प्रसारण होगा प्रातः 6:45 पर। जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा आप सुनेंगे कल प्रातः 7:30 पर। साहित्यिक पत्रिका कविता पाठ इस कार्यक्रम का प्रसारण हम करेंगे कल सुबह 8:30 पर। बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन आप सुन सकेंगे सुबह के 9:00। कार्यक्रम गांव कर गीत का प्रसारण होगा दिन के 10:00। श्रोताओं की फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद का प्रसारण होगा दिन के 11:05 पर।

एनसीईआरटी और सीआईईटी द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग का प्रसारण होगा दोपहर के ठीक 12 बजे। कार्यक्रम चयन आप सुन सकेंगे दिन के 12:30 पर। शहरी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन आप सुनेंगे दिन के 1:10 पर। बातचीत होगी परिवार, मजबूत रिश्ते और आधार पर, आत्मनिर्भरता महिलाओं हेतु कितनी जरूरी। ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज आप सुनेंगे दिन के 1:40 पर। प्रायोजित कार्यक्रम दीदी के गोठ आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से, जिसे हम प्रसारित करेंगे दिन के 2:00। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ के साथ आरंभ होगी हमारी सांध्यकालीन सभा 5:00। युवा श्रोताओं के लिए युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा 5:30 पर। श्रोताओं, ये तो थी जानकारी हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण आज यहीं तक।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7:05 हो चुके हैं। पेश है सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।

अभी आपने सुना गुलाम अली की आवाज़ में ये गज़ल, अब सुनिए जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल कार्यक्रम रजनीगंधा में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम के अंत में सुनिए जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल। शायर हैं पयाम सईदी।

जगजीत सिंह की गाई इसी गजल के साथ कार्यक्रम रजनीगंधा आज यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल।

चौपाल सुनने वाला जम किसान भैया बहनी मनला तीजई का जय जोहार, राम राम और स्वागत हमारे कार्यक्रम में। भैया बहनी हो, बुईत कर दिन है और बुईत कर दिन हमन कोशिश करती कि आज कर जो कार्यक्रम है उमर महिला कृषक बहनी मनला समर्पित रही। देखी कोशिश तो करती कि भई महिला कृषक बहनी मन भी भेटाए जाए, उमन कर जग बात गुड बात हो जाए, लेकिन अगर उमन नहीं भेटाते तो हमन कृषक भैया मन जग सफलता कर कहानी जो हमारे बस थे ओला हमन गोट करती। नवा नवा मने युवा कृषक भी होते हैं और युवा बहनी मन भी होते हैं तो ओ गोट बात ला तू रौरे मनला सुना थी। देखिए भारत सरकार कर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा देश कर छह जो अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय है इमन पर सामाजिक आर्थिक विकास खातिर प्रधानमंत्री कर 15 सूत्री कार्यक्रम और प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना चलाता है। भैया बहनियों रौरी सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री का जो नया 15 सूत्री कार्यक्रम है उसमें कितना बगरा मने कार्यक्रम शामिल करल गई से है, मने रिकिम रिकिम कर विकास कार्यक्रम शामिल करल गई से, चाहे पढ़े लिखे वाला जो लड़का मन है उमन बर, चाहे सुरक्षित जो रहे बर, एकर अलावा स्वस्थ रहे बर और सफाई वाला सफाई के साथ रहे बर, साथ ही साथ स्कॉलरशिप कर कार्यक्रम है, माने बगरा योजना लागू करल गई से है। ये एक तरह का देखब तो एक बड़ा व्यापक कार्यक्रम है जेकर तहत भारत सरकार कर विभिन्न मंत्रालय में कल्याणकारी योजना कर तहत 15% लक्ष्य और वित्तीय बजट भी अल्पसंख्यक भैया बहनी मन बर निर्धारित करल जाते। अब जो हमने कर 15 सूत्री जो वाला कार्यक्रम कहा था, तो जो पहला कार्यक्रम है हमने देखब तो शिक्षा के अवसर ला बढ़ावा देना जो सबले जरूरी है। भैया बहनियों हमन जानते कि अगर शिक्षित कोई भैया बहनी मन हो जाते हैं तो कोई भी चीज़ कर दृष्टिकोण देखे कर दृष्टिकोण विचार करे कर जो वैचारिक दृष्टिकोण है वो भी बदल जाते, माने कि जब समझ हरो कर विकसित हो जाए। अब देखिए कोई भी क्षेत्र हो, हमन खेती पत्ती का क्षेत्र भी देखब तो ओमे भी आजकल बहनी मन प्रशिक्षण लेके और बढ़िया ड्रोन चलाते हैं हमारे बहनी मन। माटी परीक्षण में भी आगू आगू बहनी मन अपन प्रयोगशाला खोलते हैं। तो इतना बगरा जब जिला कथी हमारे डिजिटलीकरण हो गई सा है, सब कति भाई बगरा विकास होता है, तो शिक्षा कर प्रचार प्रसार होना और शिक्षित होके सब विषय ला जानना, सब चीज ला समझना बेहद जरूरी है। अब देखब तो देखिए जो एकीकृत बाल विकास सेवा कर उपलब्धता कर आधार पर आंगनबाड़ी केंद्र कर माध्यम से बच्चा और माता मनला पोषण और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, शिक्षा का अवसर जो बढ़ावा देना है वो तो शुरुआत होगी, लेकिन जब शिशु अभी 2 साल 3 साल कर हुई तो आंगनबाड़ी कर माध्यम से ओला शिक्षित कर, माने खेल खेल में शिक्षा। अब स्कूली शिक्षा कर बात आई तो स्कूली शिक्षा तक बेहतर पहुंच, समग्र शिक्षा और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कर जरिए प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करना। एकर अलावा उर्दू शिक्षण खातिर संस्थान और जो मदरसा शिक्षा कर भी आधुनिकीकरण करते हैं। मेघा

ये छात्रमन छात्रवृत्ति प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप योजना भी इनमें चलाता है। मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान कर अंतर्गत शैक्षणिक बुनियादी ढांचा ला मजबूत करल जाता है। अब आर्थिक गतिविधि और रोजगार में उचित हिस्सेदारी भी इनमें दहल जाता है। कैसे दहल जाता है? गरीब मन पर स्वरोजगार और मजदूरी राष्ट्रीय ग्रामीण व शहरी आजीविका मिशन के तहत इनमें अल्पसंख्यक कल्याण कर जो भैया बहनी मन है उमन कर कल्याण खातिर उमन कर भागीदारी सुनिश्चित करल जाता है। एकर अलावा हमन देखब तो तकनीकी प्रशिक्षण कर माध्यम से कौशल विकास कर कार्यक्रम चलता है। कैसे हमन देखब तो कि कई भैया बहनी मन रहते बहुत हस्तकला में माहिर रहते एकदम सिद्ध हस्त रहते। अब समय आते कि भाई जब इतना बढ़िया हस्तकला कर काम करत है इतना बढ़िया अपन कौशल जानत है करत है तो मल्ला बाजार कैसे उपलब्ध कराई नवीनीकरण मल्ला कैसे करी तो प्रशिक्षण कर माध्यम से कौशल विकास उन्नयन कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण दिया जाते तो जेकस जेकस भैया बहनी मन अपन हस्तकला में माहिर रहते अपन काम में माहिर रहते तो मल्ला मार्जित करके और उमन कर कला ला उभार के और बाजार उपलब्ध कराल जाते हैं। उमला भैया बहनियों रवड़े जान था कि हमर कति कर जो हस्तकला में माहिर भैया बहनी मन है और जो क्षेत्रीय हम कहल जा सकते एक तरह का जो हमर क्षेत्रीय पहचान है तो भाई बांस कर होएगी इस माटी कर होएगी और भाई केतरा रिकिम रिकिम कर खेल खिलौना बनेल तो वो सब कर जो पहचान है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो लागी से है। कैसे कि जब सरकार प्रशिक्षण देता है और कौशल उन्नयन कर माध्यम से उमर और ओला सीखता है समझाता है और केकस ओला बाजार कर अनुरूप बनाना है ये भी उनमें शामिल है। अल्पसंख्यक क्षेत्र खातिर आईआईटीज और पॉलिटेक्निक संस्थान में भी इमला जो संस्थान कर उन्नत बनाना और उनमें भी उमला शिक्षा कर अवसर प्रदान करना। आर्थिक गतिविधि खातिर ऋण सहायता। अब देखिए जब कोई भी कार्य करते हैं तो सबले महत्वपूर्ण बात यह आती है कि भाई किसे पैसा कैसे आई तो ऋण कर जो प्रावधान है उसमें सरकार इतना आर्थिक मदद करते कि जो अल्पसंख्यक विकास एवं निगम है एकर माध्यम से कम ब्याज दर में लोन उपलब्ध हो जाते जेकर से भैया बहनी मन आराम से अपन कार्य ला सुचारू रूप से शुरू कर सकते हैं। एकर अलावा सरकारी नौकरी में भर्ती राज्य और केंद्र सरकार कर सेवा में अल्पसंख्यक युवा मन कर जो भर्ती है उल्हा बढ़ाना ये योजना कर अंतर्गत शामिल है। जैसे मैं कह रहे हैं कि जीवन स्तर में सुधार और बुनियादी सुविधा ग्रामीण आवास योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पक्का मकान का आवंटन करना झुग्गी बस्ती कर स्थिति में सुधार और शहरी बस्ती में नागरिक सुविधा प्रदान करना झुग्गी बस्ती में सुधार जिसे मलिन बस्ती मन में होते तो भाई स्वास्थ्य और जल कर एकर अलावा शौचालय कर सुविधा और नगरी जो बस्ती में है नागरिक सुविधा प्रदान करल जाते। सांप्रदायिक दंगा का रोकथाम और नियंत्रण सांप्रदायिक घटना में रोक संवेदनशील क्षेत्र में निष्पक्ष पुलिस अधिकारी कर तैनाती और गंभीर अपराध कर त्वरित अभियोजन और एकर जो ये है इनमें कानूनी कार्यवाही भी है और विशेष अदालत का गठन भी है और दंगा पीड़ित मन कर पुनर्वास भी इनमें शामिल है। अब जो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम है भैया बहनी हूँ ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय कर एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है। एकर पहले एला बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम कर नाम से जानल जात रही और वही लैला संशोधित करल गई है। इमें अवसंरचना विकास होते कर मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्र में सामुदायिक संपत्ति कर निर्माण करना है। एकर तहत मुख्य रूप से शिक्षा स्वास्थ्य कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण से जुड़ल परियोजना ला स्वीकृति दिहल जाते। अब जो इमें PIB कर रिपोर्ट कर अनुसार एक अंतर्गत जैसे जो बुनियादी ढांचा निर्मित होते अतिरिक्त कक्षा स्कूल भवन हॉस्टल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो PSC होते जो भाई छोटे क्षेत्र में भी खुलते एक अलावा हुनर हब ITI और कौशल प्रशिक्षण केंद्र और सद्भाव मंडप सामुदायिक हॉल पेयजल और स्वच्छता सुविधाएं। ये योजना मांग आधारित है एकर तहत सामान्य राज्य खातिर केंद्र राज्य और वित्तीय अनुदान और इमें दहल जाते। अब पूरा भारत कर इमें अलग अलग तरह का अनुदान है जैसे जो पहाड़ी इलाका है चाहे जो हमारे पूर्वोत्तर हिमालय क्षेत्र है उकर खातिर अलग है और बाकी भारत भर अलग है। तो भैया बहनियों अल्पसंख्यक
जो कल्याण मन खातिर प्रधानमंत्री कर 15 सूत्री कार्यक्रम

0: में एकर से जुड़कर योजना का लाभ उठाना चाहिए और अधिक से अधिक जो एमे भैया बहनी मन इस योजना में शामिल है ओमन ला बगरा रिकिम रिकिम कर केतरा जो योजना मन चलाते हैं कल्याण योजना मन ओमन सबकर जानकारी लेकर और अपन जीवन ला विकसित सुविकसित करना चाहिए। लगी एगो हमन लोकगीत सुनब भाई गोट बात तो करब लेकिन अब ढेरे हमन गुठिया ही देकर कहता हूँ कि चटी के लोकगीत सुन लेते ही भारत सिंह भारती और संगता करगार फिर आगो गोट करब।
1: अरे घर के सफाई नहीं होला बिना झाड़ू के, घर के सफाई

पान बिना लाली के अरे होठवा उदास लागे

कटल पातावा अरे कुल परिवार हित नाता से कटल पातावा भई राकट से तेज चले ई सढ़ुआरा नातावा अरे लागल ससुरार से नाता

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिले।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान मित्रों, देखिए गर्मी का मौसम जो जायद सीजन होते इनमें कद्दू, तरबूज और खीरा जैसा जो कद्दू वर्गीय फसल होते इला तेज धूप, लू, गर्मी

और पानी कर कमी ले बचाना बेहद ज़रूरी है। देखिए अधिक पैदावार गुणवत्ता खातिर कुछ जो नियम है वाला पालन जरूर करना चाहिए। सिंचाई का प्रबंधन जैसे कोनो कोनो कैसे करते हैं कि सिंचाई तो करते हैं लेकिन बगरा घाम चढ़ गई से तो करते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। सुबह जल्दी माने 6 से 8 और चाहे शाम के 5 बजे कर बाद सिंचाई करना चाहिए। और जीवन ड्रिप लेते हैं चाहे फव्वारा पद्धति कर रहते हैं वो तो भाई उमन तो वैसे हिसाब से भी चालू कर सकते हैं, लेकिन पारंपरिक पद्धति में भी इस समय का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। काहे कि देखिए अगर बगरा धूप हर ककड़ाए थे रथे तो भाई पानी हर मैंने उड़ जाकर ज़्यादा संभावना रहते। सिंचाई कर अंतराल कर भी ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। माटी कर नमी कर अनुसार 4 से 6 दिन कर अंतराल में नियमित सिंचाई किसान भैया बहनी मंडला करना चाहिए। अब जो टपक सिंचाई करते हैं देते हैं और संभव हो तो ड्रिप विधि एला अपनाना चाहिए। और संभव का है अब तो भाई देखिए बगरा सरकार में मदद देता है और किसान मन भैया बहनी मन भी जागरूक हो गई ना है कि कितना जो जल कर है वो में बचत होते। 40 से 50

करना चाहिए। अब जो टपक सिंचाई करते हैं देते हैं और संभव हो तो ड्रिप विधि एला अपनाना चाहिए। और संभव का है अब तो भाई देखिए बगरा सरकार में मदद देता है और किसान मन भैया बहनी मन भी जागरूक हो गई ना है कि कितना जो जल कर है उसमें बचत होते 40 से 50% तक कर बचतों में देखल जाते तो एक खेत एक फसल में। तो भैया बहनी हो अगर अभी भी ड्रिप पद्धति में रौड़े नहीं आया है तो जरूर ए बार योजना ला जरूर शामिल करिए अपन खेती किसानी में। एक साथ साथ जैसे फल कर सड़े कर भी खतरा कम रहते में कहे कि जितना पानी कर जरूरत होते ना वो माटी में भाई उतना ही प्रवेश करते माटी में नमी रहते और बगरा पानी उन्हें पारंपरिक विधि ले करते तो अति अति पानी चल दे और मने फल कर सड़े गले कर भी समस्या देखे पर मिलते। मल्चिंग कर जो है जो प्रयोग है वो नमी संरक्षण रखते और अभी तो प्लास्टिक चाहे जैविक मल्च भी बढ़िया है। कतार कर बीच में धान कर पुआल सूखा घास 25 से 30 माइक्रोमेन के प्लास्टिक मल्च कर उपयोग कर सकते हैं। एगो भैया जग भेंट करे रहन ना तो बढ़िया खेती किसानी का करत रहन और कहीं कि मोर हेले 2-3 सीजन होएगी इसमें ला इला वो जो प्लास्टिक का उपयोग करत रहन माने वो माइक्रो जो जो माइक्रोन प्लास्टिक रहते कहीं कि 2-3 हेयर में फसल एकर ले डाले हों वही खोखरो करके ओकर बीच में बीजा ला बोए देते हों तो आसपास खरपतवार भी नहीं होए और बढ़िया मोर काम हो चलता है। तो क्या होते कि मिट्टी का तापमान नियंत्रित रहते वाष्पीकरण रुकते और फल कर सीधा जो फल मन सीधा गीला मिट्टी के संपर्क में आए ले बसते जेकर से सड़ते नहीं तो ये बहुत बहुत बढ़िया माने विधि है। पोषण तत्व और उर्वरक प्रबंधन बेहद जरूरी है। फूल और फल आते आते समय एला ध्यान रखना चाहिए। NPK 0:52:34 कर 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ मिला के छिड़काव करना चाहिए। फल कर विकास खातिर आकार बढ़ाए खातिर NPK 13:00:45 कर कैल्शियम नाइट्रेट गुड़ाई कर समय देना चाहिए। सूक्ष्म पोषण तत्व कर बात करब तो फल कर फटे से बचाए खातिर चमक बढ़ाए खातिर बोरान 20% तक 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। देखिए फसल अनुसार भी किसान भैया बहनी मन ये तय करना चाहिए कि उकर ओला कैसे देखभाल करना है। जैसे तरबूज होगी तो फल कर नीचे सूखा घास चाहे जो प्यावल रख देना चाहिए ताकि माटी कर नमी से फल नीचे खराब मत हो और उसमें मिठास जो है वो बरकरार रहे। पके में 5-7 दिन पहले तक पानी दे बर कम कर देना चाहिए धीरे धीरे ओला कम करना चाहिए। खीरा में लगातार नमी कर आवश्यकता होते पानी कर जो स्ट्रेस है वो होने में खीरा हर कड़ुआ हो जाते तो ये भी ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। और कद्दू में बेल बहुत फैलते माने ओकर फैलाव ज़्यादा होते और जगह कम होए ले लताला बांस कर मचान में चढ़ाना चाहिए ताकि फल ला उचित धूप और हवा मिल सके। अब कीट रोग नियंत्रण कर बात करब तो लाल कद्दू बीटल जो है पत्ती में लखाते नियंत्रण खातिर नीम कर तेल जैविक खेती और प्राकृतिक खेती करे या किसान भैया बहनी मन जानते हैं कि जितना रसायन हमन उपयोग करत ही वो ना तो हमार भूमि खातिर ना हमार भोजन खातिर अच्छा है और लगातार भूमि कर जो मृदा शक्ति है और क्षरण हो जाता है और रिकिम रिकिम कर जो बीमारी सुना तहन हमन कहीं ना कहीं अगर करता है जाके देखब भैया बहनी हो तो जो रसायन कर लगातार उपयोग होता है हमार खेती में वो कहीं ना कहीं ओकर पूरा पूरा एकर जो भोजन से हमर सीधे हमर शरीर में प्रवेश करता है। तो कोशिश करना चाहिए कि प्राकृतिक खेती जैविक खेती करवाइया भैया बहनी मतलब नीम कल तेल से 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी मिलकर के ओला छिड़काव करना है लाल कद्दू बीटल में। फल मक्खी और ये जो फल मक्खी है तरबूज होगी चाहे खीरा होगी से मत सब में फल छेद करके अंडा दे देते फल कर नुकसान हो जाते और पूरा मने फल हर सड़ के खराब हो जाते तो एरा फोरोमन ट्रैप कर माध्यम से एकर बचाव करना चाहिए। चूंडली तसीता देखब तो पत्ती में सफ़ेद पाउडर जैसे जम जाते एकर नियंत्रण खातिर घुलनशील गंधक 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के छिड़काव करना चाहिए। तो यही ध्यान रखना है भैया बहनियों पत्ता पीला होता है यदि मान ला तो जैसे कद्दू तरबूज चाहे खीरा में पीला पड़े भी एक गंभीर समस्या है। मुख्य रूप से पोषण तत्व कर कमी गला सिंचाई और वायरस कर हमला का कारण ऐसा होते तो एक उपचार खातिर पहले समझना है कि जो पीला पत्ती मन है उसमें नाइट्रोजन कर कमी कर संकेत दिखाता है और प्रति एकड़ 20 से 25 किलोग्राम यूरिया का छिड़काव
एनपीके 19 अनुपात

0: अनुपात 19 कर 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के स्प्रे करना चाहिए। अब देखिए आज कर जो हमारे किसान हैं गिरीश प्रसाद यादव, और जो गिरीश प्रसाद यादव हैं खैर बार कर रहे हैं, युवा किसान हैं, और अग्नु भैया संग गोट करीन है, रिकिम रिकिम कर खेती पाती कर काम करते हैं, तो लेकिन का बतियाते हैं ला सुने चाहिए।
1: शहर ले लगा लेको गांव है, ग्राम पंचायत खैरबार, और बढ़िया यहाँ खेती पाती हो। और हमन देखा थे कि यहाँ एगो युवा किसान, नवा किसान है, नया दौर कर नवा किसान, और बढ़िया खेती पाती करीन है। धेरे बगरा तो नहीं है, लेकिन सब चीज़ इनकर खेत बाड़ी में दिखता है। मक्का भी दिखता है, लहसुन भी दिखता है, प्याज भी दिखता है, और भी बहुत सारा खेती में करीन है। टमाटर की तैयारी करते हैं। रौरे तो पहले अपना नाम ला बताइए।
2: मोर नाम गिरीश प्रसाद यादव है और मैं खैर बार कर
1: गिरीश जी, देखा हमन देखा था कि तुम्हार जो खेती पाती है बड़ा बढ़िया है, और मैं देखता हूँ कि सवेरे शाम तू लगे रहता पूरा, और भी एक दो को काम करता, लेकिन खेती ला प्राथमिकता देता। अभी का कर उरे लगाई?
2: मैं अभी टमाटर, मक्का, भिंडी और उर्दा लगाया।
1: उर्दा कौन वाला उर्दा लगाया?
2: हाइब्रिड।
1: और मक्का ला मैं देखा था कि तैयार हुए की स्थिति में है, कब लगाए रहने ला?
2: ये मैं दिसंबर लास्ट में लगाए रहे।
1: कैसे खेती पाती करती रुझान करो इसकी, सब खेती लग करते हैं तनी तनी?
2: तो खेती मैं 11वीं में एग्रीकल्चर ले रहे हैं, तो एग्रीकल्चर ले रहे हैं तो ही मैं खेती का प्रति रुचि बढ़त गई, तो ओकरे लगन और मन से खेती बाड़ी कर रहे शुरू करें।
1: तो मक्का ला कैसे लगाया? हाइब्रिड मक्का है?
2: हाँ हाइब्रिड मक्का है, दाना वाला।
1: कब लगाया रहे ला?
2: ये दिसंबर में 15 तारीख के बाद।
1: तो उस समय तो ठंडा ज़्यादा रही सोई।
2: हाँ
1: तब वो जाएंगी सोहर
2: तब वो जाएंगी।
1: तो बढ़िया दिक्कत है, कब तैयार होई का लागत है तुके?
2: ये अभी मई तक में तैयार हो जाएगी।
1: और मई में तैयार हुई तो ये गादा वाला है, खाए वाला?
2: दाना वाला।
1: और संगे संगे मैं देखता हूँ कि प्याज और लहसुन तो बड़ा महंगा रहे बाजार। हाँ। में देखिए 400-500 रुपये किलो तक पहुँच जाए, तो अच्छा ठीक ठाक तुम्हार लहसुन दिखत है, ये कैसे इतना सेवा करा?
2: ये सब मेहनत और लगन है।
1: और कब लहसुन हर लगी, कैसे लगाया है?
2: लहसुन वही दिसंबर का शुरू में लगे रही, फिर लाइन से क्यारी में लगाल है, एक एक 6-6 इंच का दूरी में।
1: तो एग्रीकल्चर पढ़े रह रहे कृषि संकाय के, तो उनमें भी कुछ कुछ सीखे हुई है खेती बारे?
2: हाँ मैं बहुत कुछ सीखे।
1: कहाँ पढ़ाई करे रहा?
2: ये नगर पालिका स्कूल अंबिकापुर।
1: तो वहाँ तो प्रैक्टिकल भी होत हो कि कैसे? हाँ। खेती करते हैं, कहाँ करते हैं? तो वो लाभ खेत में प्रयोग करा था।
2: हाँ
1: तो पढ़ाई से फायदा मिले बढ़िया खेती करे पर?
2: हाँ मिले,
1: जानकारी मिले,
2: जानकारी मिले सब।
1: मैं देखा था कि उर्दा लगाया है, तो ये गर्मी वाला उर्दा है?
2: गर्मी वाला है।
1: कितना दिन में तैयार हो गया?
2: ये लगभग 1 महीना में हो जाए।
1: तो तोड़ना पड़ेल कि एक ही बार काटना?
2: तोड़ना पड़े, फलत जाहि और पकत जाहि, टूटत जाहि।
1: सब जायत कर खेती ला एक संगे करे ही, मकई ला भी लगाए ही, लहसुन प्याज भी है रहो खेत में। एकर अलावे हम देखा था कि प्याज और टमाटर के भी तैयारी करा था।
2: हाँ टमाटर अगला महीना में निकले वाला है।
1: कितना में लगाए है?
2: लगभग वही 50-60 डिसमिल में।
1: तो कौन वाला है यार?
2: वो भी हाइब्रिड, सुहाना कंपनी का।
1: तो सीधे ग्राफ्टिंग पद्धति वाला लगाया है कि
2: जो बीज? बीज वाला,
1: थरा करके?
2: नहीं वहाँ से नर्सरी से लाके।
1: तो ये पहले भी टमाटर लगाया रहा कभी?
2: नहीं
1: पहले
2: पहला बार है।
1: तो एगो प्रयोग भी कर जाता संगे संगे की का खेती
2: अनुभव।
1: पानी कर का साधन है जी?
2: पानी का नहर चला थे और बोर है, तो वहीं से सिंचाई चला थे।
1: तो हमन देखते हैं कि जो नया युवा लड़का मन है उन खेती पाती कति ज़्यादा ध्यान नहीं दें, लेकिन रौरे कर मन हरा है कि भाई खेती कति जाते हैं, काम करते हैं, तो खेती में फायदा दिखेल तुमके?
2: हाँ
1: बढ़िया दिखेल,
2: बढ़िया फायदा दिखेल।
1: एकर से पहले और का का लगाया है, कब से खेती पाती में भीड़ा?
2: एकर से पहले प्याज और लहसुन लगात रहे, ओकर बाद ये पहला बार है मक्का टमाटर लगाए, भिंडी।
1: भिंडी ला देखती कि बड़ा लंबा समय तक चले। हाँ, अगर भिंडी कर खेती
2: 3-4 महीना तक निकले।
1: हाँ निकलते जाए, और ओला अगर तोड़ाई में लापरवाही बरत दिया तो गड़बड़ हो
2: गड़बड़ दवाई सिंचाई कमी हुई तो फिर वो गड़बड़ है।

0: हमने देखते कि भिंडी का खेती हर ऐसा है कि ज़्यादा दवाई भी, ज़्यादा खाद भी, ज़्यादा
1: ज्यादा नहीं लगे उसमें,
0: मेहनत कम लागे
1: मेहनत कम लगे।
0: और फल ज़्यादा दे। तो
1: हाँ
0: रोल पता हुई कि हम उनका जो अंबिकापुर है और आसपास एगो जगदीशपुर गांव है, वहाँ सबसे ज़्यादा भिंडी लगाते हैं।
1: हाँ
0: और उधर भिंडी लगाए कर एगो हब बन गई से, जब बाजार में जगदीशपुर कर भिंडी आयल तो सस्ता हो जाए,
1: हाँ
0: कहे कि हर घर में हर किसान
1: हर
0: लगाए।
1: किसान में लगे।
0: तो कभी लोग देखे ना आसपास की केकर खेती है इतना बढ़िया है, महू करते हैं, से विचार मन में आई।
1: हाँ इसे लगाई नहीं, बहुत खराब है ना, तो वहीं देखे रहे।
0: युवा साथी मतलब का कहना चाहता कि खेती पाती कती।
1: मैं तो सब युवा साथी मतलब कहना चाहता हूँ कि सब खेती से जुड़े, खेती करें और अच्छा लाभ लें और अगला नया किसान ला प्रेरित करें।
0: मक्का में कौन कौन सा बीमारी देखत है अभी? जैसे अभी तो ठीक है ठाक दिखत
1: मक्का
0: है।
1: में तो अभी बीमारी नहीं लगी से,
0: कहीं कीड़ा उड़ा?
1: नहीं अभी तक नहीं आई से।
0: खाद पानी कौन सा प्रयोग करता?
1: खाद में यूरिया, पोटाश और सागरिका और राखड़,
0: और गोबर खाद का उपयोग,
1: गोबर खाद का उपयोग।
0: जोताई कोड़ाई के का
1: हाँ
0: साधन है? गाय
1: वो
0: बैल
1: ट्रैक्टर
0: से,
1: से। हाँ
0: ट्रैक्टर से जोताई करा था? रोले खुद ट्रैक्टर आया कि?
1: नहीं गांव का।
0: इतकर माटी है कौन का सा है? जैसे खैरबर गांव में तो देखा खेती बहुत हो, टमाटर पर भी जानल जाए लेला, टमाटर सबसे ज़्यादा पैदा करते हैं यहाँ कर किसान मन। तो यहाँ कर माटी है तुमके का लगेल कि कौन कस
1: यहाँ का
0: माटी है?
1: माटी चिटकाही माटी है और वह टमाटर भिंडी ये सब बढ़िया लाभदायक मिट्टी है।
0: तो मैं शुरू में का खाद डाले रहा है? जैसे मक्का होगी, चाहे टमाटर होगी, चाहे लहसुन होगी, समय।
1: मैं शुरू में DAP और यूरिया डाले रहन, ओकर से पहले गोबर खाद करके जोतवाए रहन, ओकर बाद फिर सागरिका पोटाश और राखड़ यूरिया डाल के फिर दोबारा वाला मादा दे रहन।
0: और लहसुन में कितना मेहनत लागे?
1: लहसुन में एक बार लगाए न, ओकर बाद फिर वही जुताई के बाद लगाए के बाद फिर निंदाई गुड़ाई, ओकर बाद मादा दे फिर पानी दे।
0: लहसुन और प्याज दोनों हर एक ही नियर खेती है,
1: हाँ एक ही नियर,
0: दोनों में एक ही नियर
1: दोनों
0: मेहनत
1: में एक ही
0: लागे।
1: नियर मेहनत लगे।
0: और खरपतवार नियंत्रण पर का करता? बहुत सारा घास वन भी देखता हूँ
1: ओला
0: कि।
1: निराई गुड़ाई करके ओला निकाल देती।
0: और रासायनिक भी तो एगो दवाई आयल
1: हाँ
0: ओमला डाल था।
1: ओकर उपयोग नहीं करी, खाली जैविक।
0: हाँ, मतलब निराई गुड़ाई से ही जितना खरपतवार
1: हाँ
0: निकल
1: खरपतवार
0: जाए।
1: निकल जाए।
0: तो बड़ा अच्छा लगन मेहनत से खेती करता। खेती का संगे संगे वो का काम है रोरे कर?
1: दुकान है किराना का। बस वही।
0: तो यही गाँव में
1: हाँ गाँव में
0: बढ़िया चले दुकान?
1: हाँ दुकान बढ़िया चले। हाँ
0: मैं देखा तो भी टेंट टूंट कर भी काम करता।
1: टेंट का काम है।
0: तो कैसे सब ला समेटे है इतना कम उम्र में? खेती पाती ला भी मस्त करा था और दिखता है सुंदर खेती है। उत्पादन कितना हो तो अलग बात है, लेकिन राहुल कर मेहनत हर दिखता है। और संगे संगे टेंट कर भी काम करा था, गांव में कोई जरूरत पड़ी तो कर उपलब्धता सुनिश्चित करा था, फिर किराना दुकान भी चला था। तो कैसे सब इतना काम रो समेट धारे के धाय?
1: सब मान और लगन है और थोड़ा थोड़ा टाइम सबका निकालना पड़े।
0: बाकी तुम्हारे संगता मन नहीं कहे कि सब काम रो तही करता?
1: नहीं ऐसे तो बोलते हैं, लेकिन अब मन और लगन है तो सब करे पड़े।
0: हाँ, देखा किसान भाइयों, मन और लगन अगर रहे तो कोई भी काम और आसान हो जाए। और हमने देखा थी कि खैरबर गांव में युवा लड़का है गिरीश, बड़ा बढ़िया काम करता है। और अच्छा बात यह है कि कृषि कर पढ़ाई करें, उकर बाद खेती पाती में रुझान दिखाई। बहुत सारा युवा मन सोचते हैं कि कहीं सरकारी नौकरी पाए जाते हैं, कहीं कोई दुकान में काम कर लेते हैं, मजदूरी कर लेते हैं, लेकिन खुद से अपन व्यवसाय ला आगे बढ़ाएं, टेंट कर सामान कर काम शुरू करें, किराना दुकान, फिर खेती पाती हर बीन कर देखे ले, मन हर गदगद हो जाए कि सब काम लोग कोई आदमी कैसे कर सकता है। तो गिरीश प्रसाद यादव कर सकता है, बात हर ये जगह फिट बैठता है इनकर, शायद गोल बात हुई। इनकर हम बहुत बहुत धन्यवाद करत हन।
1: धन्यवाद।
2: देखिए अग्नु भैया गोठियात रहिन, हमर गिरीश प्रसाद यादव खैरबार कर रहे हैं, युवा साथी आए हैं, युवा कृषक हैं। और भैया बहनियों, आज कर जो मंडी भाव है वो मैं ले लेता हूँ। आज कर अगर अंबिकापुर कर मंडी भाव हम देखब तो गेहूँ है 2430 रुपया प्रति क्विंटल, मूँगफलिया है 5300 रुपया प्रति क्विंटल, मक्का है 2400 रुपया प्रति क्विंटल, वही कसंग सरसों है 6000 रुपया प्रति क्विंटल। तापमान कर कोट कर तो

मैं बहनी हूँ। आज कर अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। काल कर जो अनुमानित तापमान है अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहकर संभावना है। देखिए आज कर सवाल से पाछू मैं बुध कर दिन जो पूछे रहे सवाल उला लेहत हूँ, तो बीजोपचार कर चार लाभ बताई जो हमारे पाछू बुध कर पूछल गए सवाल रहीस। तो एक जवाब है मिट्टी जनित रोग से सुरक्षा मिलते, बेहतर अंकुरण होते, जड़ कर विकास भी बेहतर होते और शुरुआती कीट में नियंत्रण भी मिलते। अब आज कर सवाल पूछे से पहले मैं हमारे जो सुनने वाला समस्त श्रोता जो भैया बहनी मन है और खासकर महिला बहनी मन मैं कहना चाहता हूँ कि जो जो लिखी कर माध्यम से चाहे जो चिट्ठी पत्री कर माध्यम से चाहे मेल कर माध्यम से जवाब हमें लिख भेजना चाहिए। कहे कि अगर कोई महिला बहनी अगर जवाब भेजते तो भाई मैं चिट्ठी ला जरूर शामिल करूँ, कोशिश करूँ कि अगर मेल भी है तो ला भी शामिल करूँ, भैया मन कर चिट्ठी पत्री ला भी मैं शामिल करता हूँ, ऐसा नहीं है। तो मेल में तो हमारे जो भैया मन रहते हैं मतलब शामिल करता हूँ। तो अब देखिए आज कर जो बुध कर दिन हमारे सवाल है कि कद्दू खीरा तरबूज में लगे वाला कद्दू बीटल का नियंत्रण कैसे करना है, मैं अभी बता रहे हैं। तो वो सवाल है, जवाब लिख भेजिया मेल कर द्वारा चाहे चिट्ठी पत्री कर द्वारा। देखिए मेल करिया तो जोग लिखी AIR@gmail.com कर जो पता है उमें मेल कर सकता है। अब देखिए अब चटिक बेरा बची से लेकिन हम मुके लगता है गीत नहीं सुनल जा सकता है, तो मैं थोड़ा सा अमृत सरोवर योजना ला जो हमारे सरकार कर भारत सरकार कर की बेहद महत्वपूर्ण योजना है एला ले आता हूँ। तो देखिए क्या है भैया बहनी हो कि जो अमृत सरोवर योजना है जल संरक्षण और भू स्तर ला सुधारे पर बेहद महत्वपूर्ण योजना है। देखिए एक तरह से देखा तो हमन ला ये एक राष्ट्रीय अभियान है। कैसे कि जब 24 अप्रैल 2022 का प्रधानमंत्री ने इला शुरू करी तो वो दिन आज़ादी कर अमृत महोत्सव कर जो बेला चलत रही सो में उला शुरू करी और वो यही संकल्प कर साथ कि जो भूजल स्तर है भारत का उला कहीं स्तर ला बढ़ाना है और हर नागरिक ला अपन अपन कर्तव्य कर रूप में बात ला समझना है कि केकस ओ ए में जोड़ सकता है। देखिए लगातार हम देखब तो भूजल जो है स्तर उधर कम हो जाता है और अगर यही कसर रही तो आए वाला जो पीढ़ी है ओकर खातिर हमन का विरासत में संजो कर देव। कहे कि वही डब्बा बंद बोतल बंद पानी ला पियब तो केतरा बगरा वही पीठ में धर धर के मास्क लगा लगा के हमन ऑक्सीजन ले लेब तो का विरासत में ही ले देबो, पैसा कौड़ी ले कहीं नहीं हो वाला है भैया बहनी हो। जब तक सुरक्षित संरक्षित और सुखद धरती सुखद पृथ्वी ला हमन ला विरासत में नहीं देबो तो ये सब जो बगरा रुपया पैसा है चाहे संपत्ति है ये कोई काम नहीं आई। अब देखिए योजना कर जो मुख्य उद्देश्य है विशेषता है ओला हमन देखती प्रति जिला 75 तालाब ला चिन्हांकित करके देश कर प्रत्येक ग्रामीण जिला में कम से कम 75 अमृत सरोवर तालाब का निर्माण और जो पुराना तालाब मन है वन ला जीर्णोद्धार करना एक जो मुख्य विशेषता है। अगर देखब जा तो प्रत्येक अमृत सरोवर में न्यूनतम क्षेत्रफल 1 एकड़ मैंने सुने दोस्तों 4 हेक्टर रखल गई है ताकि बढ़िया से उकर निर्माण हो जाए और पानी कर उपलब्धता भी बढ़िया से रहे। जल धारण क्षमता अच्छा करे बर उला लगातार साफ सफाई और अधिक गहरा भी उला करल जाता है। सरोवर कर चारों कती नीम पीपल बरगद और जामुन जैसा छायादार और स्थानीय पौधा लगाना अनिवार्य है। देखिए भैया बहनियों ये सब जो पौधा का नाम ले ना एकर अपन एक औषधि गुण भी है। एकर साथ साथ जो छायादार पेड़ है अगर तालाब कर किनारे लगी सह जो अमृत सरोवर योजना कर अंतर्गत जो तालाब विकसित करल जाता है तो कहीं ना कहीं ओकर आसपास चहल पहल ओकर आसपास चौपाल जरूर लगी। काहे कि देखिए इतना जो जेकर बैसाख जेठ कर महीना आते और कहीं पेड़ छाँव नहीं दिखे तो अगर बरखा कर स्थान कर किनारे जल कर स्थान कर किनारे पेड़ पौधा रही तो जरूर वहाँ जग भाई लोग मन आवा जाही करही। अच्छा प्रत्येक अमृत सरोवर कर जो स्थान है उनमें स्वतंत्रता दिवस माने 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी का दिन ध्वजारोहण कर जाना विशेष रूप से जरूरी है। देखिए तो इतना बढ़िया बगरा जानकारी देहन और अब मैं कहता हूँ कि चटिक बेरा हार के दिखाता है कि भाई हो गई सह समय तो तिजई ला विदा दई फिर भेट अब स्वच्छ रहा स्वस्थ रहा यही कामना कर साथ राम राम।

अभी ग्रामीण श्रोताओं के लिए चौपाल कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 8 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश कार्यक्रम। लेकर मैं हाजिर हूँ आपकी रेडियो साथी जयमाला। कार्यक्रम में हमें पहले गीत के लिए फरमाइश की है ग्राम रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदय भान पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल और दिव्यांश बघेल ने। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुनुटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, सहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान, अरजान और अबान अपासी ने। डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद मंदुरकर, कुमार गौरव, आरव और अर्पिता ने। तरेंगी के भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा ने। दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा ने। अमगासी नवापारा लखनपुर डिस्ट्रिक्ट सरगुजा छत्तीसगढ़ से मुनेश राम, शालिनी, रुचिका, अनिका, मनीष, सुचिता, चांदनी, दीपांशु ने। अनारकली वज्रां जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी और जयपाल यादव ने। अंदार नाटघर से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश और दीपेश वर्मा ने। ग्राम पड़ौली पोस्ट धौलपुर विकासखंड लुंड्रा जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ से प्रथम प्रफुल्ल खंडा, कैरव खंडा, गर्वी खंडा, अनुज, सुनैना और वेद कुमार ने। ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से सुरेंद्र राजवाड़े, जितेंद्र राजवाड़े, प्रयागराज, भीखम और खेलसाय मरकाम ने। अनुजनगर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से चंद्रभान राजवाड़े, बबीता, धिया, काव्या और मंजू राजवाड़े ने। सिंधमा बाजार पारा जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़ से धनेश्वर निषाद, दीपिका निषाद, शिवांश निषाद, राम भरोस पैकरा, नरेश सिंह ने। मुंडा टोला डोंडी लोहारा जिला बालोद छत्तीसगढ़ से डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी नेताम, चंचल नेताम, कामेश नेताम और माहिर नेताम ने। ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से खेलसाय मरकाम, नैन प्रकाश मरकाम, शारदा मरकाम, लक्की मरकाम, सीताराम मरकाम, सितंबर मरकाम, अमरनाथ, मंगलमूर्ति, रोशन राजवाड़े, राहुल राजवाड़े, हीरालाल प्रजापति, पांडेराम राजवाड़े, नूरसाय राजवाड़े, कविता आरती मरकाम ने। सुपरस्टार रेडियो श्रोता संघ सारसताल सोनगरा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेम साय राजवाड़े, सोमार साय, मेर साय, श्री भगत, हेमंत कुमार, राम खिलावन सिंह पैकरानी। रायगढ़ से रोहित और जयलक्ष्मी ने। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया और नमन ढींगिया ने। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवान, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवान, राजिंदर सिंह ओबराय ने। बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली और प्रियांशु साहू ने। ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेंजीर कौसर, मोहम्मद शाकिब पवार, अलमास बानो पवार, मोइन छोटू पवार, शंकरलाल गंगरांडे, वनीता गंगरांडे और मोहम्मद हसनैन पवार ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं जावेद अली की आवाज़ में फिल्म दबंग 3 का ये गीत। गीतकार हैं दानिश साबरी और संगीतकार हैं साजिद वाजिद अली।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं सोशल मीडिया की गूंज कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। कार्यक्रम में अगले गीत के लिए हमें फरमाइश की है राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिकराम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत प्रजापति, ग्राम कालापारा से रामचंद्र गुप्ता और पांडेराम राजवाड़े ने, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये ने, इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश साहू, शुभम, शिखा और शेफाली ने, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, सिद्धार्थ नगर, दरियापुर बाबली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, अशोक येले ने, छुरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, माला ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, मानू, शानू, बबन, मुन्नू, कान्हा ठाकुर और हरिप्रिया ठाकुर ने, संबलपुर कांकेर से फागूराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव ने, चरडोंगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी और माया

साहू ने, मेरा कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौण ने, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला विशाल नहावकर ने, और मलकापुर से नारायण इंगेले, राजकुमार खर्चे और आशीष ने, एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव खुराना और एसके पप्पी ने, मिट्ठूमुड़ा दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, कौशल श्रीवास, कृष्ण कुमार यादव, लक्ष्मण वांधवानी और गेंदू जी ने, कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल ने, मुजफ्फरपुर बिहार से राजकुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी, मुन्नी कुमारी ने, बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, काफिर भाई, श्रीमती सविता माखीजा, स्वाति माखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा माही, पूजा छुटकी, शरद कुमार डोंडवानी ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं फिल्म दिलवाले का ये गीत, कुमार सानू की आवाज़ में, और गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

कार्यक्रम का अगला भाग हम आपको रात्रि 8:20 पर सुनाएंगे और अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा।
1: मैं यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहाँ देख रहा हूँ भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता का अटूट संकल्प है। इसके सामने लहराता विशाल समुद्र अनंत काल की अनुभूति कराता है। इसकी लहरें हमें सिखाती हैं कि तूफान चाहे कितने भी विकराल क्यों न हो, मनुष्य का साहस और आत्मबल हर बार फिर से उठ खड़ा होने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि तट से टकराती लहरें सदियों से उद्घोष कर रही हैं कि मानवीय चेतना को लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के जरिए ये दिखाया कि भारत शान के साथ अपनी विरासत का संरक्षण करता है। 1940 के दशक में स्वतंत्रता की भावना पूरे भारत में फैल रही थी। सरदार पटेल जैसे महान नेताओं के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत की नींव रखी जा रही थी। ऐसे में एक बात जो उन्हें बहुत व्यथित करती थी वो थी सोमनाथ की दुर्दशा। 13 नवम्बर 1947 को सरदार पटेल ने सोमनाथ के जर्जर अवशेषों के सामने खड़े होकर ये निश्चय किया कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण होगा। उनके इस आह्वान ने सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष को नए उत्साह से भर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1000 वर्ष पहले सोमनाथ पर पहला हमला हुआ था। ऐसे हमलों को अंजाम देने वालों का मानना था कि वे देश की भूमि की आत्मा को चकनाचूर कर सकते हैं, लेकिन वे गलत थे। उन्होंने कहा कि तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में नवनिर्मित सोमनाथ मंदिर के द्वार खुले और उन्होंने विश्व को ये संदेश दिया कि हमलावर भले ही इतिहास की धूल में विलीन हो गए हों, लेकिन भारत की आत्मा अमर है। 11 मई 1951 को अपने भाषण में डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि सोमनाथ मंदिर दुनिया को ये संदेश देता है कि अद्वितीय श्रद्धा और विश्वास को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा था कि इस मंदिर के पुनर्निर्माण से सरदार पटेल का सपना साकार हुआ है। सोमनाथ मंदिर के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ के विभिन्न पुरातात्विक और ऐतिहासिक मंदिरों में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के महादेव घाट स्थित हटकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लिया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और श्रद्धालुओं के साथ गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर से वर्चुअली जुड़कर प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 75 वर्ष पूर्व आज ही के दिन सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ था और इसी ऐतिहासिक अवसर को देशभर में स्वाभिमान पर्व के रूप में मनाया जा रहा है।
2: पूरा देश सोमनाथ स्वाभिमान दिवस मना रहा है। 75 साल पहले सोमनाथ मंदिर का पुनरोद्धार हुआ था और आज 75 साल बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोमनाथ में बाबा सोमनाथ का पूजा अर्चना करके पूरे देश की खुशहाली की कामना की है।
0: श्रोताओं, इसी के साथ सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम सम्पन्न होता है। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
3: सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर विशेष कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एक

0: कांच रायपुर की थी। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।
1: अभी आप सुन रहे थे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर विशेष कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 8:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश का अगला भाग। कार्यक्रम में अगले गीत के लिए हमें फरमाइश की है मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाजनी, छत्तीसगढ़ सरगांव बाजार से नसीम मोहम्मद, हबीब मोहम्मद और इरफान मोहम्मद ने, चंपा छत्तीसगढ़ से दिनेश नामदेव और गीता नामदेव, रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालियानी, खगेश कुमार राजवाड़े, बोझा पोस्ट सोनगरा, तहसील प्रतापपुर, सूरजपुर छत्तीसगढ़ से, पल्लारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन ने, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से ने, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, अस्मा खातून, बक्सर नगर से राज एस टी अंसारी और फातमा नाज अंसारी ने, दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से विष्णु मस्किन, रितिका मस्किन, वानी आरव, चंद्रकला गणेश, काशीनाथ, संगीता मस्किन, आरोही और प्रियांशी सोनी ने, अन्नपूर्णा बड़ी, सावित्री, लक्ष्मी, चंद्रकला, काशीनाथ, श्वेता, तपस्या, माही, रेणुका, पल्लवी, चैत्र, आदर्श, तिपन्ना, राजू भाई, बाबू भाई, वीरनारायण मंदिर के पास, गदग बेटीकेरी कर्नाटक से, संगीता बाबू हर सिद्धि, लक्ष्मी जयश्री, हबीब शंकर, मंजू काशीनाथ, कृष्णा कॉलोनी गदग कर्नाटक से, पंचायत खोंदला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, धुरनी पैकरा, करिश्मा पैकरा, सोमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम पैकरा, हीरामणि पैकरा, ऐश्वर्या पैकरा ने, नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, प्रियंका ठाकुर, दीपक, खुशबू, ज्योति ठाकुर, चौरौदाबार नवापारा अभ्यारण्य जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से, सावित्री जोशी, बाबू जोशी, प्रिंस कृष्णा, आनंद, रेणुका, हिमेश, श्वेता, तपस्या और माहिनी, जामनगर गुजरात से। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्म मृत्युदंड का ये गीत। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार हैं आनंद मिलिंद।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश। कार्यक्रम में मैं आपके साथ हूं, आपकी रेडियो साथी जयमाला। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्म साजन का घर का ये गीत। गीतकार है समीर और संगीतकार है नदीम श्रवण। इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है बिरसिंहपुर पाली जिला उमरिया मध्य प्रदेश से संतोष कुमार राव, भारती राव, बेलाबाई सिंह, विकास सिंह, ओम प्रकाश सिंह, लक्ष्मी पवार, चैत्राली पवार, पल्लवी पवार, आदर्श कर्नाटक से। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा ने। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़।

से रिजवान खान, आयसा सबीहा, अनस और रेहान ने। मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी से जगदीश धाकड़ नायम, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़ ने। उत्तम कुमार बंघेल, रुक्मणी बंघेल, साहिल भारती बंघेल, लंघान पंडरिया छत्तीसगढ़ से। देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार ने भवानी, संगीता आकाश, आयुषी सागर, यसी हनी और पूजा साथी सीता ने। जय जिरेंद्र श्रोता संघ परमणि महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रीतेश संघई ने। जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवान, उमा राज, दिव्या भारती और बेताब रेडियो लिसनर क्लब बिहार से वसीम अक्रम और गुड़िया खातून ने। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये गीत।

कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में अगली फरमाइश हमें की है ग्राम पीपल रोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा ने। गांव टोरोवाला, जिला नवाशहर, पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमार थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, वामिका और वाणी थांदी ने। हिंगोली महाराष्ट्र से साजी बोड़के, श्रीमती नंदा बोड़के, हनुमान बोड़के और अम्बेडकर चौक वाकोड़ी से उत्तम जमदाड़े, स्वराज जमदाड़े। सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ ने। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्वनी शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह ने। ग्राम लोहिड़ी, जिला महोबा, बुंदेलखंड यूपी से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, रेनू, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव। अस्पताल रोड के लिए विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, वंदना मानवी, तन्वी गौहर ने। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेश पुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी ने। तामसा रोड हदगांव महाराष्ट्र से ओम गायकवाड़, आविष्कार गायकवाड़, प्रणीता गायकवाड़ और अनामिका गायकवाड़ ने। पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजीनगर से राजेश सामले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं कुमार सानू और अनुराधा पौड़वाल, साथ ही एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाज़ में फिल्म साजन का ये गीत।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश आज यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतरराज्यीय प्रतिबंध हटाए। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कर

0: करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी, इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। CBI ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। CBI इस मामले में शुरुआती जाँच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों, विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश

0: मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
1: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
2: People to people connect.
0: श्री जॉर्ज ने बताया कि चार यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
2: The visit to the four European countries.
1: चार यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
2: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
0: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से तीन भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था अब वापस लाई जा रही है।
3: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद ये घोषणा की। डॉ. शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
4: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है।
0: आउटसाइड द स्कोप ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पांचवी बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को 3 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान कर

0: अन्ना इंदिरा गांधी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और मॉडल विद्यालय स्थापित करना शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी से जारी की। उन्होंने 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत पर लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने भाजपा एनडीए सरकार की विकास और सुशासन नीतियों पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर स्थिर हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 95.70 रुपए पर बंद हुआ। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक ब्रेंट क्रूड $107.62 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
0: गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक कोलकाता ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। महाराष्ट्र में आज नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किया गया। इसमें त्रिशूल दर्शाया गया है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोगो भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet increases minimum support prices MSP of 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Cabinet also gives nod for promotion of surface coal and lignite gasification projects worth 37,500 crore rupees. CBI arrests 5 persons in connection with NEET UG 2026 paper leak case. Raids continue in several states. Prime Minister Narendra Modi reduces his convoy size, prompting BJP chief ministers and other leaders to adopt austerity measures. West Bengal government decides to hand over recruitment scam probes to CBI, lifts all interstate restrictions on the movement of essential products. And in weightlifting, India's Ganeshwari Yadav bags a silver and bronze at Asian Senior Championships in Gandhinagar. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support price, MSP, of 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the union.

0: फैल सकेगा आपका काम और होगा आपका नाम ही नाम।
1: दशकों से घर घर में गूंजती आवाज के साथ जुड़ेगा आपका भी नाम।
0: दीजिए आकाशवाणी अंबिकापुर पर विज्ञापन और बनाइए अपनी पहुंच लाखों करोड़ों दिलों तक।
1: चाहे

0: शुभकामना संदेश या हो आपके व्यापार का नाम।
1: उसे दें ऊंची उड़ान और बनाएं अपनी नई पहचान। करवाएं विज्ञापन मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी अंबिकापुर से। संपर्क करें 07774230600। नंबर एक बार फिर 07774230600।
0: कार्यक्रम चित्रपट संगीत में अब सुनिए फिल्म देवदास का ये गीत श्रेया घोषाल की आवाज में। गीतकार हैं नुसरत बद्र और संगीतकार हैं इस्माइल दरबार।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत आज यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 9:30 होने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय।
1: चर्चा का विषय है
2: दुनिया की नब्ज। पश्चिमी एशिया के तेल कुओं की धड़कनों से जुड़ी है। जब इन धड़कनों में युद्ध का शोर सुनाई देने लगे तो वैश्विक बाजार की सांसें फूलने लगती हैं। लाल सागर की लहरों से लेकर तेल के टैंकरों के बदलते रास्तों तक, आज एक बार फिर दुनिया ब्लैक गोल्ड यानी कच्चे तेल की अस्थिरता के मुहाने पर खड़ी है। जब हॉर्मूज की जलधारा में हलचल होती है तो दिल्ली, मुंबई और हर भारतीय शहर की सड़कों पर उसकी गूंज सुनाई देती है। लेकिन 2026 का भारत कल की तुलना में कहीं अधिक सजग है। आज हम केवल तेल के दाम गिरने का इंतजार नहीं करते, बल्कि ऊर्जा के नए विकल्पों और सामरिक भंडारों से अपनी सुरक्षा की दीवार ऊंची कर रहे हैं। नमस्कार, चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। आज हम चर्चा करेंगे पश्चिम एशिया संकट और ऊर्जा बाजार, उभरती चुनौतियों के बीच भारत की तैयारियों पर। आज के कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत पश्चिम एशिया के इस झटके को सहने के लिए तैयार है और कैसे हमारी एनर्जी डिप्लोमेसी वैश्विक राजनीति के नए समीकरण लिख रही है। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व CMD ONGC के सुभाष कुमार और ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत

0: स्वागत है।
1: थैंक यू।
2: थैंक्स आना।
0: सुभाष जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, और हम सब जानते हैं कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 85% आयात करता है। जो इस समय हॉर्मूज की मौजूदा स्थिति है, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि भारत की जो सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति है, जिसमें रूस, इराक और अमेरिका के बीच जो संतुलन भी है, कितना प्रभावी सिद्ध हो रही है?
2: सो आनंद जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। एक्चुअली आज के दिन में भारत जो है अपनी सप्लाई के लिए हॉर्मूज पे ओवरली डिपेंडेंट है। इनफैक्ट यदि हम तेल का देखें तो लगभग 80% से ऊपर वो हॉर्मूज से आता है, और 40-50% तो गल्फ स्टेट से आता है। एलपीजी का भी इसी हिसाब से देखें तो लगभग सारी एलपीजी इस प्रॉब्लम से पहले गल्फ स्टेट से ही आती थी। तो अब इस हालात में एक्चुअली जो एनर्जी का चीज है, एक और एक एस्पेक्ट है कि इस क्षेत्र में, खाड़ी क्षेत्र में, ना केवल एनर्जी के लिए इम्पोर्टेंट है, बट यहाँ पे लगभग 1 करोड़ इंडियंस भी रहते हैं, और जो कि इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज रिमिट करते थे। तो आज की डेट में गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिए हैं, उसमें उन्होंने जो क्रूड जो सोर्सिंग है वो डाइवर्सिफाई की है, और इस डिफिकल्ट सिचुएशन में किसी तरह मॉलिक्यूल्स पे की सप्लाई को कंटिन्यू करने के लिए अमेरिका, लैटिन अमेरिका, रशिया और अफ्रीका से भी तेल जो है इंपोर्ट किया है। तो ये जो सारा एक्शन है, ये अभी तक काफी सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि यदि पूरा इफेक्ट इस डिसरप्शन का पड़ता तो शायद सिर्फ इसके भरोसे एक्चुअली इंडिया में तेल और तेल के प्रोडक्ट्स की किल्लत हो सकती थी।
0: पश्चिमी एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि रोजमर्रा के जीवन में वो कैसे बदलाव लाकर इस संकट के समय देश और सरकार को बेहतर करने में मदद कर सकते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या अपील की है।
3: मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें, जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आए। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा।
0: नरेंद्र जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी बात ऊर्जा की होती है और भविष्य की तरफ हम देखते हैं, तो स्ट्रैटेजिक रिजर्व यानी SPR की भी चर्चा होती है, और कई सारे मंत्रालय की तरफ से ये बयान दिया गया कि भारत के पास 74 दिन, 80 दिन, 60 दिन के आसपास का रिजर्व है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा हम विश्लेषण के नजरिए से देखें, तो विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पादूर में भारत ने जो अपने नए रिजर्व की खोज की है, क्या आपको लगता है कि अगर युद्ध लंबा चला तो भारत के लिए ये 3 सेंटर्स या कुछ और सेंटर्स एनर्जी शॉक से बचाने के लिए पर्याप्त है?
1: देखिए, हमको देखना होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था का साइज क्या है। आज हम दुनिया की अगर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जो लार्ज इकोनॉमी, उनमें फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और किसी भी अर्थव्यवस्था का, खासतौर से अगर आप विकासशील अर्थव्यवस्था हैं जो भारत है, उसकी जो बैकबोन होती है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो ऊर्जा होती है। बिना ऊर्जा के अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ती है, और जब विकासशील अर्थव्यवस्था जैसी होगी, खासतौर से भारत जैसी, वहां ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा होती है। हमारे देश में तेल की खपत जो है वो लगभग 3.5% से 4% प्रतिवर्ष बढ़ रही है, क्योंकि देश का विकास हो रहा है, क्योंकि प्रगति हो रही है, क्योंकि ज्यादा लोग जो है वो जो गरीबी से बाहर आ रहे हैं, मिडिल क्लास के अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए उसकी खपत बढ़ रही है। हम आज की तारीख में लगभग 57 और 58 लाख बैरल तेल प्रतिदिन उसकी हमारे यहां खपत है, 5.8 मिलियन रफली बैरल्स पर डे, और उसका भारी मात्रा में लगभग 53 लाख बैरल हम आयात करते हैं लगभग 42 अलग अलग देशों से। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे सामने जो है दुविधा ये होती है, क्या हम जो विकास की गति है उसको रोकें, या वो लोग जिनको अभी भी और ऊर्जा की आवश्यकता है क्या उनको हम रोक सकते हैं, या किस हिसाब से हम ऊर्जा का इस तरह का

0: प्रयोग करें जिससे कि हमारे को दिक्कत ना हो। जहां तक अब युद्ध जो है ये भारत ने तो शुरू नहीं किया, जैसे जो कोविड था, कोविड की शुरुआत चाइना से हुई थी, ये युद्ध तो फारस की खाड़ी से शुरू हुआ है, खासतौर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो है सबसे बड़ी दिक्कत वहां से आ रही है। तो ऐसे में भारत जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का उपभोक्ता है, ऊर्जा का उपभोक्ता है, दूसरा सबसे बड़ा आयातक है और भारी तेजी से जो आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, तो हमारे सामने चुनौती ये हो जाती है हम इसको कैसे देखें। जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की आपकी बात करी गई, स्ट्रेटेजिक रिजर्व इसलिए बनाए जाते हैं कभी कोई ऐसे हालात पैदा हो जाए कि देश के अंदर जो तेल लाने में जो है डिस्ट्रप्शन हो जाए, मतलब विदेशों से तेल लाने में दिक्कत हो, तो हम उसका प्रयोग कर सकें। लेकिन हमारा इतना विशाल देश है और हम इतनी तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है कि हमारी जो जरूरत है वो बहुत ज्यादा है। हालांकि हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व जिनको SPRs बोलते हैं वो हैं, लगभग 25 से 28 दिन के रिजर्व हमारे पास वो हैं। इसके अलावा जो तमाम रिफाइनरीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके जो है ऑयल टैंक फार्म्स होते हैं, उनके अंदर भी हमेशा क्रूड ऑयल जो है और प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर हम उन दोनों को जोड़ लें तो हमारे पास 50 से लेकर के 55 दिन के रिजर्व तो होते हैं। और दूसरा ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी पूरी दुनिया के अंदर ऐसे अच्छे रिलेशंस हैं, खासतौर से जो तेल के निर्यातक हैं, ऊर्जा के निर्यातक हैं, कि हमने जो है कहीं ना कहीं से हम तेल का इंतजाम हो रहा है। और आज भी भारत उन गिने चुने देशों के अंदर है जहां पे पेट्रोल या डीजल की कहीं कोई किल्लत नहीं है, उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है।
1: जी
0: और दाम भी भारत में अगर आप देखें अन्य देशों के मुकाबले तो काफी हुए। तो चूंकि हमारे अच्छे रिलेशनशिप हैं, और दूसरी बात एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, चूंकि हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल के उपभोक्ता हैं
1: जी
0: और दूसरे सबसे बड़े आयातक, हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी होती है टू सिक्योर सप्लाई। लेकिन जो तेल के बड़े निर्यातक हैं, सऊदी अरब हो गया, अमेरिका हो गया, कुवैत हो गया, इराक, इनके लिए आवश्यक होता है भारत अच्छे संबंध रखें, क्योंकि उनकी एनर्जी सिक्योरिटी डिमांड से ताल्लुक रखती है। और डिमांड कहां सबसे ज्यादा पैदा हो रही है, वो भारत में। पूरी दुनिया में ऑयल की डिमांड का लीडर आज कौन है, वो भारत है। तो वो भी भारत से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, इसलिए ये भी हमको सिक्योरिटी देता है। आपने जिक्र किया एनर्जी डिप्लोमेसी का, साथ में मैंने आपको ये बताया कि हिसाब से उनके लिए भारत एक अहम बाजार है, इसलिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हमारा अभी तक जो देखा जाए, अब बहुत लंबा युद्ध चलता है, डिस्ट्रप्शन बहुत बड़ा हो जाता है, वो तो भविष्य के गर्भ में है, उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। लेकिन आज के धरातल पर जब मैं देखता हूं, ठीक है, तैयारी हमको चाहिए, कंजर्वेशन हमको करना है, तेल को हमको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन पैनिक बटन दबाने की कोई जरूरत नहीं है।
1: जी बिल्कुल, आपने जिस तरफ चर्चा को आगे बढ़ाया कि भारत के पास अभी पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि भारत के पास आने वाले कुछ महीनों के लिए रिजर्व मौजूद हैं। आइए सुनते उन्होंने क्या कहा।
2: Our LPG, the cylinder gas which you use in kitchens, about 60% used to come from the Strait of Hormuz. Now we had to make arrangements. I am amazed at what we were able to do. Our domestic production of LPG prior to the crisis was 35 or 36,000 metric tons per day. We ramped up our domestic production from 36 to 54,000 metric tons. This by itself is a mind-boggling thing.
1: सुभाष जी, भारत सरकार लगातार कुछ नए प्रयोग कर रही है और इसी दिशा में आज कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया कि जो कोल गैसीकरण परियोजना है उसको बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत स्वच्छ कोयला उपयोग, ऊर्जा सुरक्षा और आयात पर निर्भरता कम होगी। हम सब जानते हैं कि आज के समय में जब तेल बिल्कुल अस्थिर हो गया है, उसकी कीमतें और रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं, तो ऐसे में दूसरे विकल्पों पर हम ध्यान दे रहे हैं। कैसे देखते हैं इस पहल को जो आज कोल गैसीकरण योजना को मंजूरी दी गई है?
3: जैसे कि तनेजा जी ने पहले ही बताया था कि भारत एक तेजी से विकसित होती हुई इकोनॉमी है और लगभग थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑयल और गैस का, तो इंडिया का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो एक बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी का है। और इकोनॉमी को यदि ग्रो करना है तो उसके लिए एक असेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो है एनर्जी। और लकीली इंडिया में कोयले के काफी विशाल भंडार हैं, तो आई थिंक ये एक

0: बिकॉज कोल के साथ जनरली ये कहा जाता है कि उससे एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन जो है वो बहुत ज्यादा होती है, एमिशन रेट इज वेरी हाई। बट यदि कोल गैसिफिकेशन होता है इंस्टीट्यूट, तो आपको ना तो बड़ी बड़ी खदानें खोदनी पड़ेंगी और ना ही उसका जो एमिशन है वो एक पॉइंट के बियॉन्ड जाएगा। इनफैक्ट उससे ये होगा, आपको दोनों एक टाइमली एनर्जी भी मिल जाएगी और एमिशन लेवल जो है ग्रोथ के लिए, जो इंडिया अगेन हैज कमिटेड टू कंफॉर्म विद द ग्लोबल कमिटमेंट्स टू फॉर ए क्लीन एनवायरनमेंट, तो उसको भी अचीव करने में एक सहायता मिलेगी। तो इंडिया को एक्चुअली चाहे वो बायोफ्यूल हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो जो पोटेंशियल सीबीजी का हो, वो सब कुछ हार्नेस करना पड़ेगा, बिकॉज हमारी आवश्यकताएं आज ही बहुत बड़ी हैं और आगे आने वाले दिनों में, जबकि हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, 25 से 30 ट्रिलियन इकोनॉमी जो कि 6 गुना के बराबर होती है आज के स्तर से, तो उसके लिए ये सब तरह के साधन, और यदि डोमेस्टिक है तो ये सोने पे सुहागे की तरह है।
1: हम अपने श्रोताओं को बता दें कि कोयला गैसीकरण आपके लिए अगर नई चीज है तो ये होता क्या है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें कोयले को उच्च तापमान और दबाव पर ऑक्सीजन और पानी के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से युक्त सिनी गैस प्राप्त होती है जिसे औद्योगिक उपयोग के लिए संसाधित किया जा सकता है। ये पहल भारत की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत प्राकृतिक गैस, उर्वरक और रसायनों के आयात पर निर्भरता को कम कर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाना है। इस योजना के तहत प्रोजेक्ट का चयन एक पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना है। और इसी पर और जानकारी दी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: आज हम सब जानते हैं कि गैस का जितना रिक्वायरमेंट है और दुनिया भर में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उस हिसाब से हम आत्मनिर्भर कैसे बने। भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है, करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था, उसका आज फैसला लिया गया है और बहुत ही सामयिक फैसला है, बहुत ही टाइमली फैसला है, कोल गैसिफिकेशन की स्कीम। इस गैस से आगे उस गैस को जला के पावर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस गैस से एलपीजी का इक्विवेलेंट फॉर्म भी बना सकते हैं और उस गैस से हम फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग हो, कई सारे जो पेट्रोकेमिकल्स के माने जो एक रिफाइनरी में बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उसी तरह के बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी निकाले जा सकते हैं। तो एक तरीके से कोयले से गैस, गैस से फर्टिलाइजर, कोयले से गैस, गैस से पावर, कोयले से गैस, गैस से कई तरह के केमिकल्स, ये बनाने की ये प्रोसेस है और ये बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि इस युग में हमें जितना आत्मनिर्भर बने उतना अच्छा है और उतना ही देश के लिए भविष्य का बड़ा इंश्योरेंस बनता है।
1: नरेंद्र जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत सरकार ने हाल ही में इथेनॉल ब्लेंडिंग और ग्रीन हाइड्रोजन पर जोर दिया है। क्या ये ग्रीन फ्यूल्स आने वाले समय में, चाहे शॉर्ट टर्म की ही हम बात करें, कच्चे तेल की कीमतों के झटके को सहने में हमारी मदद कर सकते हैं?
3: हम बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है जैसे मैंने पहले कहा, और हमारी अर्थव्यवस्था जो है कुल मिलाकर के फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है। फॉसिल फ्यूल का मतलब हुआ तेल, गैस और कोयला, कोयला भी फॉसिल फ्यूल होता है। पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था 80% आज की तारीख में भी वो फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है, लेकिन क्योंकि हमारी निर्भरता तेल पे, गैस पे बहुत ज्यादा है अन्य देशों के मुकाबले अगर आप देखें तो, इसलिए हमारी कोशिश ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे रिसोर्सेज को ढूंढें जिससे हमारी आयात पर निर्भरता कम हो सके। हालांकि ये अलग बात है कि हमारी आयात पर निर्भरता एकदम कम होने वाली नहीं है, इसलिए क्योंकि हम बहुत तेजी से हमारा विकास हो रहा है, हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत तेजी से उसका विस्तार हो रहा है, इसलिए आने वाले समय में हमारे देश में तेल की जो जरूरत है वो भी बढ़ने वाली है, गैस की भी बढ़ने वाली है और कोयले की भी बढ़ने वाली है। लेकिन साथ में जो है हमने इथेनॉल जो ब्लेंडिंग करके उसमें जो लगभग 20% पेट्रोल में भी वो किया जाता है, डीजल में नहीं किया जाता, पर उससे हमने आयात में थोड़ी सी निर्भरता जो है कम करी है। ठीक उसी तरीके से जो देश होता है वो भविष्य की तरफ भी देखता है और जिसमें हाइड्रोजन को एक ऐसी ऊर्जा माना जाना है कि आने वाले समय के अंदर जो हमारा मिशन है कि एनर्जी इंडिपेंडेंस मतलब ऊर्जा की स्वतंत्रता हमको चाहिए 2047 तक, 2047 तक, उसमें हाइड्रोजन जो है एक फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है और उसमें बड़ी भूमिका वो निभाएगा। लेकिन ये दोनों चीजें जिसका भी मैंने जिक्र किया, इसका जो ये भविष्य के बारे में ज्यादा है, भविष्य का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 100 साल बाद, लेकिन अभी इनको थोड़ा समय लगने वाला है, हाइड्रोजन का को भी समय लगने वाला है, लेकिन ये है कि देश उस तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जो सबसे जरूरत चीज ये है वो है कि इस समय हमारी सरकार की कोशिश कि जो ऊर्जा की गरीबी के नीचे के लोग हैं उनको कैसे ऊर्जा उपलब्ध कराया जाए, उसके तहत LPG हर एक को दी जाए।

0: उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत। साथ में भी ये कोशिश है कि जो चाहे वो डोमेस्टिक कंज्यूमर हो या वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो या जो हमारी ऊर्जा एनर्जी की आवश्यकता है उसके लिए हमको क्या करना है, क्योंकि युद्ध जो है कब खत्म होगा ये कोई नहीं जानता, और खत्म भी हो जाएगा फिर भी उसका जो असर है हमारी अर्थव्यवस्था पर, विश्व की अर्थव्यवस्था पर, वो एक लंबे समय तक रह पाएगा। तो एक तरफ तो सरकार जो है इस बात की तैयारी कर रही है, फ्यूचर के लिए तैयारी हो रही है, भविष्य की तैयारी हो रही है, लेकिन साथ में जो वर्तमान है, वर्तमान में भी पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां से जो है तेल लेके आया जा सकता है, प्राकृतिक गैस लेके आया जा सकती है, उसको लाया जा रहा है। उसके लिए दो चीजों का प्रयोग करा जा रहा है। एक तो ये कि हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, जो हमारी गुडविल है, जो G20 में हमारा दबदबा है, और इसके अलावा विकसित देशों में भी जो हमारा अच्छे संबंध है, जैसे क्वाड के अंदर है उसको साथ में, इसके अलावा ब्रिक्स के अंदर है, आपको पता है ब्रिक्स की मीटिंग भी विदेश मंत्री की जा रही है, जहां भी एक विषय रही रहने वाला है, उस सबका यूज करा जा रहा है जिससे कि जो तेल की जो सप्लाई है उसमें किसी तरह की बाधा ना आए। जो इस समय सरकार का सबसे बड़ा फोकस है कि सप्लाई डिसरप्शन नहीं होना चाहिए, और भारत तो उन गिने चुने देशों में है, खासतौर से विकासशील दुनिया में या ग्लोबल साउथ में, जहां अभी तक सप्लाई का डिसरप्शन आपने नहीं देखा है, खासतौर से तेल को लेकर के। एलपीजी में थोड़ी चुनौतियां आई हैं लेकिन उसको भी काफी हद तक एड्रेस कर दिया गया है, काफी हद तक। तो मेरा ये मानना है कि हमको दो चीजें, एक तो प्रेजेंट और एक साथ में मीडियम टू लॉन्ग टर्म, और दूसरा फ्यूचर, ये तमाम चीजें जिसमें हमने जो कोल गैसिफिकेशन की बात करी, ये जो है मीडियम टारगेट्स में ज्यादा आती हैं और लॉन्ग टर्म की तैयारी में आती है कि आज से अगर 15 साल बाद, 10 साल बाद वो हालात पैदा जो आज हैं, तो हम जो है काफी हद तक उसमें बिना किसी घबराहट के उसका जो है जो सोल्यूशन है वो देश के अंदर ही ढूंढ पाए। देखिए, हमको ध्यान रखना पड़ेगा जो ऊर्जा सुरक्षा है, एनर्जी सिक्योरिटी, वो आर्थिक सुरक्षा या इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बुनियाद होती है, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी की बुनियाद होती है। अगर आप तीनों सिक्योरिटीज को देखते हैं, सबके बॉटम में या बुनियाद में वो एनर्जी सिक्योरिटी होती है। एनर्जी के बिना कुछ नहीं मूव करता, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वो परिवार हो या समाज हो, मोहल्ला हो, शहर हो, देश हो, बिना एनर्जी के कुछ नहीं चलता। और इसलिए सरकार की पूरी कोशिश है कि दुनिया में चुनौतियां आती रहती हैं, ये तो सुनामी जैसी चुनौती है, तमाम अर्थशास्त्री इसको जो है एनर्जी कोविड के नाम से बुला रहे हैं, यूरोप में कुछ अर्थशास्त्री इसको जो है इकोनॉमिक कोविड के नाम से बुला रहे हैं, लेकिन भारत ने जिस जिम्मेदारी और मुस्तैदी से इसका जवाब दिया है, देश को तैयार किया है। और अब अगर प्रधानमंत्री की स्पीच को देखें तो प्रधानमंत्री ने आम जनता से संवाद किया है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करी है खुले प्लेटफॉर्म पर, प्रधानमंत्री की ब्रेन स्टॉर्मिंग और संवाद यह है दुनिया में ऐसा ऐसा हो रहा है और हमको उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। हो सकता है इतनी जरूरत ना पड़े, लेकिन प्रधानमंत्री वो देश से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं खुल के, जैसे डेमोक्रेसी में होना चाहिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि दुनिया के हालात क्या है और हम जो है कैसे कैसे हमने जो है इसकी तैयारी करनी चाहिए, उनके विचार जो है वो आम आदमी से साझा कर रहे हैं, इसी को लोकतंत्र कहते हैं।
1: जी हाँ, बिल्कुल। और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत ने काफी प्रगति की है और आने वाले वर्षों में हमें इसमें और सफलता मिलने की उम्मीद है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। ग्रीन हाइड्रोजन विल अल्टीमेटली सक्सीड वेयर देयर इज लोकल डिमांड, देयर इज लोकल प्रोडक्शन एंड देयर इज लोकल कंजम्पशन, एंड देयर आर नॉट मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड एज यूनिकली क्वालिफाइड as India is to make that happen. We set ourselves a target of producing 5 million tons of green hydrogen annually by 2030, supported by strong policy frameworks and a significant financial outlay.
1: सुभाष जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, जब पश्चिम एशिया का संकट है और दुनिया के कई देश प्रभावित हो रहे हैं और भारत भी इससे अलग नहीं है, ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर आने वाले समय में आप और किस तरह की पहल की उम्मीद कर रहे हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या निजी कंपनियों की तरफ से?
3: ये आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया। एक्चुअली जहां तक ऊर्जा सुरक्षा की बात है और जिस तरह का ये क्राइसिस है, उसमें सबको आगे आना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो अपने स्तर पे इमीडिएट बेसिस पे कर सकती थी वो कर रही है और आगे भी करती रहेगी। अभी क्योंकि देश को आगे बढ़ना है और उसके लिए बड़ी क्लैरिटी है कि अगले 25 साल में कहाँ जाना है और 2070 तक कहाँ जाना है, वो क्लैरिटी है। तो इसके लिए मैं जो कुछ चीजें समझता हूँ कि बहुत जरूरी है, एक तो जो एनर्जी एफिशिएंसी है, टू बी एबल टू, जो एग्जिस्टिंग एनर्जी जितनी कंज्यूम हो रही है उससे जितना ज्यादा से ज्यादा वर्क या आउटपुट ली जा सके, दैट शुड बी आइटम ऑन प्रायोरिटी। जो दूसरा इशू है वो जो डोमेस्टिक एंडोमेंट्स है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, उनको किसी तरह यूज करके यदि हम अपनी जो ऊर्जा की सप्लाई है उसको बढ़ा पाए। और इसमें मिसाल जैसे आपने एथेनॉल की दी, मैं एक्चुअली उससे एक स्टेप और

0: आगे जाऊंगा। सीबीजी एक ऐसा पोटेंशियल है जो आइडेंटिफाइड है और 15 मिलियन टन का गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सतत प्रोग्राम एनविसेज किया था। टोटल पोटेंशियल जो है वो लगभग 62 मिलियन टन का है। तो अब क्योंकि इस तरह की स्थिति में वो एक एरिया होगा जहां हम ट्रिगर करें और जो सीबीजी का पूरा पोटेंशियल है उसके यूज करें, और ये सबसे लो कॉस्ट ऑप्शन होगा फॉर द रीजन के सारा कंट्री लकीली सीजीडी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तो आपको सेपरेट सप्लाई चेन्स नहीं बनानी है, सप्लाई चेन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। यदि आप डोमेस्टिक सप्लाई को बढ़ा सकते हैं तो देश को ही जो किसान है और जो गांव है हमारे, क्योंकि सीबीजी लार्जली उन एरियाज में प्रोड्यूस होगी, तो उसके लिए बहुत बड़ा एक साधन बनेगा। तीसरा जो है, जो देश में बाकी जितने साधन है, चाहे वो हाइड्रोजन की बात हो रही है, आपकी सोलर की बात है, या इवन थर्मल पावर की बात है, सब जो है वो इस टाइम ट्रिगर करने के लिए एक दीर्घकालीन प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि आगे कोई इस तरह का डिसरप्शन आता है। ऑफ कोर्स इस बार भी इंडिया ने उसको बड़ा बखूबी फेस किया है, पर क्योंकि आने वाले समय में 10 साल बाद लेट से यदि इकोनॉमी 2.5-3 गुना हो जाती है, तो उस स्थिति में आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम से कम दुगनी होगी, और यदि वो दुगनी होगी तो आप डोमेस्टिकली कितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं वो होना चाहिए। और एक जो बात है, जो पिछले कुछ सालों में अच्छा भला देश ने काफी ऑयल और गैस प्रॉपर्टीज भी काफी एक्वायर की थी दुनिया में, और वो एक बहुत बड़ा कुशन की तरह काम कर सकती हैं। तो हमें स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन ऑफ एसेट्स जो है वो कंटिन्यू करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मतलब यदि आप कोशिश करिए कि आपका अपने रिसोर्सेज हो, पर यदि वो बाई चांस आपके वो एडिक्वेट नहीं है तो कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट आपको ग्लोबली इतनी ओनरशिप है कि जब जरूरत पड़े तो आप इंडिया को भेज सकें।
1: जी
0: तो और कोल गैसिफिकेशन तो एक बहुत ही बढ़िया कदम है जो उठाया जा रहा है, और यदि इसका ही भी पोटेंशियल और कंट्रीब्यूशन काफी रहेगा,
1: जी
0: तो मैं
1: बिल्कुल
0: सोचता हूँ ये 4-5 चीजें डेफिनेटली गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में होंगी, और काम ऑलरेडी चल रहा है तो ये काफी कंट्रीब्यूट करेंगी एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ।
1: और हम बात कर रहे हैं ऊर्जा सुरक्षा की, और देशवासियों की चिंताओं को लेकर लगातार अंतर मंत्रालयीय संवाददाता सम्मेलन हो रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि भारत की क्या स्थिति है ऊर्जा को लेकर।
2: वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते, जैसा आप जानते हैं कि ऊर्जा आपूर्ति वर्ल्ड सप्लाई डिस्ट्रप्शंस हुए हैं ऊर्जा आपूर्ति में, और इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी प्राइस वॉलेटिलिटी देखी जा रही है, परंतु भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आम उपभोक्ता को कम से कम असुविधा के साथ फ्यूल सप्लाई की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। और इन सभी जो स्टेप्स लिए हैं उनके फलस्वरूप हमारी क्रूड इन्वेंट्री मेंटेन है, टाइड अप है, हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं, किसी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं, और घरेलू कुकिंग के लिए एलपीजी की आपूर्ति की जा रही है।
1: नरेंद्र जी, कार्यक्रम में समय बहुत ज्यादा नहीं है, आपसे एक सवाल पर संक्षिप्त टिप्पणी आपसे चाहेंगे कि तेल की कीमतों में जो अस्थिरता का असर हो रहा है भारतीय रुपए और करंट अकाउंट डेफिसिट पर, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि तेल व्यापार के लिए रुपया पेमेंट मैकेनिज्म, जिसकी चर्चा कुछ समय से चल रही है, इसको और प्रभावी बनाने से कुछ राहत मिल सकती है?
3: नहीं, अच्छा प्रश्न है और काफी इसकी चर्चा भी है, लेकिन ये जो हमारे जो कुल मिला के संबंध है पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों से, उस पर डिपेंड करेगा हम उसको कैसे बैलेंस करते हैं। अमेरिका से हमारे बड़े अच्छे संबंध है, सामरिक संबंध है और लॉन्ग टर्म संबंध है, हम क्वाड के मेंबर हैं और अमेरिका को हम चाहते हैं यहाँ ज्यादा और निवेश करे, और वो जो फ्री वर्ल्ड जिसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, उसका अमेरिका काफी उसमें दबदबा है, और अमेरिका जो है वो पेट्रो डॉलर को मजबूत रखना चाहता है, वो बड़ी आपत्ति करता है अगर कोई लोकल करेंसीज में तेल खरीदता है। लेकिन हमको अपने राष्ट्रीय हित देखने हैं, और पिछले दिनों को हमने रूस के साथ तमाम जो डील हुई है उसमें रुपए की बड़ी भूमिका रही है, और इस तरीके की बातचीत कुछ अन्य देशों से भी चल रही है, लेकिन कुल मिलाकर के हमको बैलेंस बना के चलना होता है राजनीति के अंदर, क्योंकि तेल के बारे में कहा जाता है तेल 90% जियोपॉलिटिक्स है, तो उसमें हमको उसको भी बैलेंस रख के चलना है। लेकिन साथ साथ मुझे लगता है आवश्यक हमारे लिए ये है कि हम एक लॉन्ग टर्म जो हमारा प्लान रहेगा उस पर और थोड़ा जोर डालें, देश के अंदर जो तेल का खनन है, उत्पादन है, उसको और इंसेंटिवाइज करें, विदेशों में जाकर

0: जहां भी तेल के भंडारों में हम हिस्सेदारी खरीद सकते हैं उसको थोड़ा और एग्रेसिवली खरीदें, और साथ में जो रिन्यूएबल एनर्जी को हम काफी जोर दे ही रहे हैं, लेकिन हमको ये भी साथ में समझना पड़ेगा कि हमारी देश का जो प्रगति है, जो हमारा विकास, उससे तो हम समझौता कर नहीं सकते। और आने वाले समय के अंदर हमें और तेल की जरूरत पड़ेगी हमारी अर्थव्यवस्था को, और गैस की भी जरूरत पड़ने वाली है, और ये सारा कुछ सौभाग्य से हमारे आसपास के देशों में उपलब्ध है, खासतौर से खाड़ी के देशों में। एक नया वेस्ट एशिया बनेगा ये जब भी युद्ध समाप्त होता है, ईरान की अर्थव्यवस्था शायद खुलेगी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से जो है वहां नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, सऊदी अरब का रवैया जो बड़ा कड़ा रहा है वो थोड़ा नरम पड़ेगा, तो मुझे लगता है हमारे देश के आसपास ही नई संभावनाएं जो है उनका शीघ्र जन्म होगा। और हमको देखना पड़ेगा क्या वहां से हम पाइपलाइन बना सकते हैं, या हम अपने एलएनजी टैंकर बना सकते हैं, अपने टैंकर्स बना सकते हैं, बहुत सारी इसमें चीजें हैं। तो मुझे लगता है युद्ध तो है, लेकिन युद्ध में हमको देखना है कि अवसर क्या है, और हमारे इतने अच्छे संबंध हैं तमाम देशों से जो तेल के बड़े निर्यातक हैं, और साथ में हमारी जो भारत की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, अपने विजन में बिल्कुल क्लियर है। तो मुझे लगता है कि हमको चिंता का विषय नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि समय के साथ साथ जरा थोड़ा हमको इस दिशा में खासतौर से एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ थोड़ा और स्मार्टली और तेजी से बढ़ना पड़ेगा।
1: जब हमारे आपके परिवार पर संकट आता है तो हम अपने अभिभावकों की तरफ देखते हैं और उनके दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी समझते हैं। जब पश्चिम एशिया में संकट है तो भारत के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों से अपील की है कि वो टीम इंडिया की तरह एकजुट होकर इसका सामना करें। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: देश का हित, देश के लोगों का हित, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। आप देख रहे हैं कि इस समय वैश्विक स्तर पर किस तरह की चुनौतियां हैं। वेस्ट एशिया में संकट की स्थितियां लगातार बनी हुई है। युद्ध के इस माहौल का बहुत नकारात्मक असर पूरे विश्व पर पड़ा है और भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है। देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य में हमें अपना संयम भी बढ़ाना होगा, हमें मिलकर संसाधनों को बचाना होगा, देश के हितों की रक्षा करनी होगी। जिस तरह कोरोना काल में हमने संकटों का मिलकर सामना किया था, वैसे ही देशभक्ति की भावना से हमें फिर एक बार भारत को इन वैश्विक संकटों से निकालने के लिए एक साथ खड़ा होना ही होगा।
1: कहते हैं संकट ही समाधान की जननी है। पश्चिम एशिया की ये चुनौतियां भारत को याद दिलाती हैं कि हमारा रास्ता आत्मनिर्भरता की ओर ही जाता है। चाहे वो हमारी सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों, रेलवे का सोलर विजन हो, या फिर रेगिस्तानों के नीचे छुपा हमारा सामरिक तेल भंडार, भारत अपनी सुरक्षा की कहानी खुद लिख रहा है। पश्चिम एशिया की रेत में भले ही हलचल हो, लेकिन भारत का संकल्प अडिग है। हम न केवल इस संकट से उभरेंगे बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया को एक नई राह भी दिखाएंगे। सुभाष जी आपका, नरेंद्र जी आपका आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: थैंक यू,
3: धन्यवाद।
1: आप ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 10 बज चुके हैं। प्रस्तुत है ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूँ आपकी रेडियो साथी जयमाला। कार्यक्रम में पहले गीत के लिए हमें फरमाइश की है नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश यादव, अनीता जाधव, आरती, पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव, जालाना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जाधव, एकनाथ जाधव और संगीता जाधव ने, सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, काव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, अनारकली, बजरा जगराव से, जेल रोड जालंधर से रोशन जहां, मन्नत जहां और इशरत जहां ने, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव ने,

पश्चिम बंगाल रानीगंज से रेहान शर्मा और करणदीप ने, सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके, श्राव्या रामटेके, बालाजी चौक से ओटी श्रीवास, शेख आजाद और पोपो रानी ने, इंदिरा विहार दिल्ली से बेबी अंसारी, निशा परवीन और डब्लू अंसारी ने, सैयद मसरूर, साइना हसन, नाजिया इब्राहिम गांव कुम्हार हिंडा सहारनपुर से, कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामोरिया, अजय देव तामोरिया, तुषार देव तामोरिया, डॉली बेबी पूजा तामोरिया, राधिका प्रभा देवी तामोरिया और मास्टर अल कबीर ने, आदर्श नगर मलोद पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और मेंडे शर्मा ने, सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और एस बी बालसुब्रमण्यम की आवाज़ में फिल्म एक दूजे के लिए का ये गीत। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कार्यक्रम ईमेल की गूंज में अगला मेल हमें किया है मामूलीवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तांडे, वसंतराव भोजनी, निवृत्ति आडुकारनी, दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल, बलौदा छत्तीसगढ़ से, जिला नांदेड़ इताला महाराष्ट्र से शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल ने, जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार तिवारी, बेबी जोई, यामिनी तिवारी और उमा तिवारी ने, रायगढ़ से रोहित और जयलक्ष्मी ने, जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून ने, फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाही, गोविंदपुरा अहमदानगर, जुनेद से जुनेद मुजावर, सबिया मुजावर, मिखाइल जैनब मुजावर ने, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा और रिमझिम गुप्ता ने, स्टेट बैंक नगर पश्चिम विहार नई दिल्ली से लव शर्मा और रोशनी शर्मा ने, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज ने, बटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग ने, फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हियांश कुमार चंदन, ग्राम सौंगा मंगरलोड से, बन्ने बुजुर्ग तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं फिल्म बाजीराव का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ईमेल की गूंज, आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। कार्यक्रम में आप सुनिए कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में फिल्म कांटे का ये गीत। गीतकार हैं देव कोहली और संगीतकार हैं आनंदराज आनंद। इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश ने। छतरी तालाब अमरावती से साधना रानी, किशोर गुप्ता ने। ताज मंजिल लक्कड़खंडवा मध्य प्रदेश से मोहम्मद रफीक पवार, बेंजोर कौसर, मोहम्मद शाकिब पवार, अलमास बानो पवार, मोइन छोटू पवार, शंकरलाल।

गंगरांडे, साफिया अरहान खोकर और मोहम्मद हसनैन पवार ने अनिल मानसी, गौरव, कविता अरोरा, मिनिस्ट्री वाली रोड, न्यू दिल्ली एरिया मोतीनगर से, कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगर जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहनी चौहान, कल्पित चौहान, गर्वी और हिमाक्ष ने, तिलक नगर नई दिल्ली से आरएस स्वीटी और आरके शुक्ला ने, उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत और बाबू भाई ने, बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, काफिर भाई, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही, पूजा छुटकी, शरद कुमार डोंडवानी, मिट्टीमुड़ा दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, कौशल श्रीवास, कृष्ण कुमार यादव, लक्ष्मण वाधवानी और गेंदू भाई ने, अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयसा सबीहा, आनस और रेहान ने, सहेली रेडियो श्रोता संघ बापू कॉलोनी अब्दुल्ला मस्जिद खंडवा मध्य प्रदेश से बेबी शालिया डावर, बेबी हलीमा डावर, बेबी जीकरा डावर, बेबी आयशा खत्री, घूंघट रेडियो श्रोता संघ जिला धार धर्मपुरी से मूषा जी खत्री, ईशा जी खत्री और जागीर खत्री ने, आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये गीत।

कार्यक्रम ईमेल की गूंज में अगली मेल हमें की है महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी नरगौड़ छत्तीसगढ़ से, कस्बा गुनौर से नशी मुल इस्लाम गुनौरी फरहीन अब्बासी और दानिश गुनौरी ने, धारणी नादुरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे संदीप बाठे ने, जशपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत मोहम्मद रिहान समरीन परवीन और माहिरा नूर ने, राजौरी गार्डन नई दिल्ली से ध्वनि और सानवी ने, हटरी चौक बिलाईगढ़ से खीख राम देवांगन रेणु देवांगन रजनी देवांगन और प्रियंका देवांगन ने, बेताब रेडियो लिसनर क्लब पटना बिहार से वशीम अकरम सालेहा खातून और गुड़िया खातून ने, इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार माहिरा अजीम और निशा अजीम ने, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा कोमल मेहरा किरण मेहरा कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये गीत।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म राजा का ये गीत। इसी गीत के लिए आप सभी श्रोताओं ने भी फरमाइश की है। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल और विशाल सपकाल ने, डेर पाटन गुजरात से धीरज वीर अब्बारी ने और चंद्रगर कॉलोनी से कौशल्या जोशी, शमसुल हक, अजीम, प्रमीला जॉनी और सोनाली जोशी ने, बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता साक्षी, जयश्री महेत्रे, अंजलि करवा और बाबा साहेब करवा ने, ऊपरकोट मोहल्ला चौकनोटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, सहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी और अरजान अब्बासी ने, साथ ही अबान अब्बासी ने, जयमंत्री केवट, अंजलि केवट, रुद्राणी केवट, कृष्णा केवट अनूपपुर मध्य प्रदेश से और चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर शना और डॉक्टर अदीबा ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आपने अभी सुना फिल्म राजा का ये गीत। इसी के साथ कार्यक्रम ईमेल की गूंज आज यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मनभावन। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में फिल्म विवाह के इस गीत के साथ। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन। इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है पीपरपारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन दिवाकर और वंशिका दिवाकर ने। साथ ही ग्राम बिलरगांव सिहावा से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन और हिमांशु और अंकित देवांगन ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये गीत।

कार्यक्रम मनभावन में अगले गीत के लिए हमें फरमाइश की है शिवाजी चौक राजिम से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और क्रिश श्रीवास्तव ने। अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लबी श्रीवास्तव ने। गांधी चौक रोपण पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जयतीक बीरक और मीका बीरक ने। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आइए सुनते हैं साधना सरगम की आवाज़ में फिल्म विश्व आत्मा का ये गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं यू शाह।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भावन आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। कार्यक्रम में आप सुनिए मोहम्मद अजीज, अनुराधा पौडवाल और नितिन मुकेश की आवाज में फिल्म राम लखन का ये गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गम्हाड़कर राही, श्रीमती सरिता गम्हाड़कर, सिद्धांत गम्हाड़कर, प्रिंस एकांश गम्हाड़कर, आकार राइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गम्हाड़कर, श्रीमती वैशाली गम्हाड़कर, श्वेता सुमित गम्हाड़कर, कुमारी ध्वनि गम्हाड़कर परी ने, औरंगाबाद से राजेश शाबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश ने, धरसीवा से छेंदूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना अरुणा यादव, अनुराधा और अल्पना यादव ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये गीत।

कार्यक्रम मन भावन में अब सुनिए सुनिधि चौहान, अरिजीत सिंह, नीति मोहन की आवाज में फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस का ये गीत। गीतकार है अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार है विशाल शेखर। इस गीत के लिए हमें फरमाइश

की है। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम ने, बरेड़ी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर और तानिया करमरकर ने, महाराजा रेडीशोतर सिंह जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, सीला धनजे, गायत्री धनजे ने, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये गीत।

कार्यक्रम मनभावन में इसी गीत को सुनना चाहा था। देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार नेभवानी, संगीता नेभवानी, आकाश नेभवानी, पप्पू जायसवाल, सुमैया राजवाड़े, पूजा, सीता, सागर, आयुषी, हनी और परिवार के सभी सदस्यों ने। कन्या परिसर रोड अंबिकापुर से राखी श्रीवास्तव, महिमा श्रीवास्तव, नितिन श्रीवास्तव, सोनू, वंदना श्रीवास्तव ने। चार मीनार चौक गंडई पंडरिया से दरिया नामल, अनिता मोटवानी, राजेश, रेशम, अनिल राज मोटवानी, कटोरा तालाब रायपुर से नीरज, अंजलि, कमल और माखी जाने। महादेव अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर और सूरज ठाकुर, साथ ही ज्योति ठाकुर ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर हमने आपको सुनवाया अभी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस का ये गीत। इसी के साथ कार्यक्रम मनभावन आज यहीं तक।

0: मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
2: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीस का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: श्री वैष्णव

0: ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धौलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धौलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज ये मंजूरी दी। प्रवीण सूद का वर्तमान कार्यकाल इस महीने की 24 तारीख को समाप्त हो रहा था। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 193 रन का लक्ष्य दिया है। ताज़ा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 66 रन बना लिए हैं। कोलकाता की ओर से अंग कृष्ण रघुवंशी ने 71 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support prices MSP for 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the government has increased the MSP of Kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce. Mr. Vaishnaw said, the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been recommended for sunflower seed, followed by 557 per quintal for cotton and 500 rupees per quintal for sesamum. He said, for grade A paddy, the MSP will be 2,461 rupees per quintal. For Jowar hybrid, it will be 4,023 rupees per quintal. For Bajra, the MSP will be 2,900 rupees. And for Tur, it will be 8,450 rupees per quintal. The Union Cabinet has also approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved Ahmedabad Sarkhej Dholera Semi-High-Speed Double Line Project with a total cost of nearly 20,667 crore rupees. The Union Cabinet has also approved upgradation and modernization of Nagpur International Airport through long-term license involving private partner under public-private partnership. Prime Minister Narendra Modi has said that the Union Cabinet's decision of approving an increase in the minimum support price MSP for Kharif crops for the marketing season 2026-27 will ensure that crores of food providers in the country receive fair and profitable prices for their produce.